там друма дала шобіні. Сухасіні, сумадура бхашіні.

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 31 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है कि कल जो अधूरा रह गया उसे आज पूरा कर लिया जाए, जो अच्छा मिला उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कर लिया जाए और आने वाले दिन को विश्वास और सकारात्मकता के साथ फिर शुरू किया जाए। तो चलिए हम भी आगाज करते हैं अपने आज के सफर का। अपने रोज के सफर के बीच रेडियो को अपना साथी बनाए रखिए और हमारे साथ इस सुबह का आनंद लीजिए। श्रोताओं, दिन की शुरुआत करते हैं ताजगी और हर जरूरी जानकारी के साथ। सुबह के 6 बजने को है और अब समय है रुख करने का देश और दुनिया की खबरों की ओर। आइए आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र और सुनवाते हैं सुबह के समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शीर्ष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की।

0: इसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुस्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। एफआईएच महिला हॉकी विश्वकप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्ते लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। श्रोताओं आज इस कार्यक्रम में सुनिए भेंट वार्ता, सहजन उत्पादन की उन्नत तकनीक। वार्ताकार है रविंद्र कुमार पांडे और भेंटकर्ता डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां सहजन उत्पादन करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं IFFDC लखनऊ से उप परियोजना प्रबंधक RK द्विवेदी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। द्विवेदी साहब, ये बताएं कि जहां सहजन उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। सहजन भारतीय मूल का पौधा है जो पोषण युक्त आहार के लिए बेहतरीन माना गया है। इसमें पोषक तत्व और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और एक अध्ययन के मुताबिक इसमें दूध की तुलना में 4 गुना पोटेशियम और संतरे की तुलना में इसमें 7 गुना विटामिन सी पाया जाता है और अन्य पोषक तत्व तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से इसको एक पोषण ट्री नाम से जाना जाता है।

0: यानी चमत्कारी पौधा।
1: चमत्कारी पौधा बिल्कुल कह सकते हैं, और ये 300 से अधिक बीमारियों में इसका प्रयोग भी होता है, इसलिए इसकी खेती करना किसान भाइयों के लिए, खासतौर से पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: और फायदेमंद भी?
1: बिल्कुल, बहुत ही फायदेमंद है, खेती से एक अच्छी खासी आमदनी भी हो सकती है, पोषण भी हो सकता है।
0: तो इसके लिए मिट्टी कैसी हो, खेत कैसा हो?
1: जैसा किसान भाइयों, इसके नाम में सहज शब्द जुड़ा है, तो इसकी खेती करना बहुत ही सहज है। आमतौर पर अगर बलुई दोमट मिट्टी हो तो इसकी खेती और अच्छी तरीके से की जा सकती है। सामान्य तौर पर यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में हो सकता है, और यहां तक कि ये क्षारीय मृदा में भी इसकी खेती हो सकती है। जहां पे 6 से 8 तक का पीएच होता है, तो वहां पर भी इसकी खेती बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है,
0: बस जल निकास का प्रबंध अच्छा हो।
1: बिल्कुल, इसकी जो जड़ें हैं वो थोड़ा सा जलगड़न नामक बीमारी से प्रभावित होती हैं, इसलिए जल निकास का उचित प्रबंध होना आवश्यक है।
0: अब ये बताएं कि प्रजातियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि जो पारंपरिक प्रजातियां हैं उनसे हट के आजकल व्यावसायिक खेती के लिए कुछ अच्छी प्रजातियां भी आ गई हैं।
1: भारतीय मूल का पौधा है, तो ये बहुतायत में एक जंगली रूप में भी बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है, लेकिन उन्नत खेती के लिए इसकी बहुत सारी प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिनमें PKM1, PKM2 और ODC नाम से जो है 2-3 वैरायटी हैं। ODC 1, ODC 2, ODC 3, कोयम्बटूर नाम से भी वैरायटी है, यूपी में ज्योति 1 भी काफी प्रचलित है। लेकिन इन सब वैरायटी में अगर सबसे बेहतर विकल्प चुनना हो किसान भाइयों को, तो PKM1 नाम की वैरायटी को आप चुन सकते हैं।
0: और ये 12 मासी भी है?
1: बिल्कुल, ये साल के अंदर ही फल देना शुरू कर देती है और 2 बार जो है फल देती है।
0: तो इसकी पहले नर्सरी करनी होगी द्विवेदी जी?
1: बिल्कुल, इसकी नर्सरी करनी होगी। गड्ढे में हम इसकी नर्सरी कर सकते हैं, या पॉलीथीन में भी हम इसकी नर्सरी कर सकते हैं
0: जी।
1: और प्रति थैली कोशिश करें कि हम 2 बीज डालें, इसलिए 2 बीज की अगर 1 बीज कहीं ना जमा तो दूसरा बीज तो जमेगा ही, इसलिए हम इसकी नर्सरी करने की सलाह देते हैं। दूसरा, गड्ढे में अगर हम करते हैं तो 3x3 मीटर की दूरी पर
0: गड्ढे में सीधी बुआई,
1: गड्ढे में भी सीधी बुआई कर देते हैं। और जब पौधा करीब 1.5 फीट 2 फीट का हो जाता है, तो एक बार उसकी हम छटाई कर देते हैं, जिससे उसमें और शाखाएं निकल जाती हैं, और फिर उसको हम जो कहते हैं उसमें तैयार कर देते हैं।
0: तो बीज की मात्रा एकड़ पीछे कितना लगेगी? तो
1: एकड़ के पीछे 200 से 250 ग्राम बीज लगेगा। ये पौधे जब 1.5 से 2 फीट के हो जाएं, तो इसको हम निकाल करके और उस गड्ढे में, जो जैसा पहले विधि हमने बताई, उस गड्ढे में सीधे भी इसको रोपित किया जा सकता है।
0: द्विवेदी साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सहजन उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके IFFDC राज्य कार्यालय आना चाहें, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: बहुत ही आवश्यक आपने सलाह दिया है, हमारी संस्था तो किसानों के लिए ही है, तो पर लिखें, नोट करें, 9555667789 555 666 778 9555 666 778।
0: R.K. द्विवेदी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और सहजन उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सहजन उत्पादन की उन्नत तकनीक, अभी आपने इस विषय पर रविंद्र कुमार पांडे से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता सुनी। इसी के साथ अब आज का कृषि चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन की शुरुआत अगर अच्छे विचार के साथ हो तो दिन सफल होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो आइए सुने आज का सुविचार क्या कहता है। आज का सुविचार है संकल्प।
3: संकल्प का मुख्य अर्थ किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा अथवा इरादा है। यह मन की वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य या नियम को पूरा करने के लिए पूर्ण निष्ठा एवं

0: मनोयोग से स्वयं को समर्पित करता है। दृढ़ विचार जब मन में उदय होते हैं तो संकल्प का भाव प्रकट होता है। संकल्प का अर्थ उत्तम विचार या शुभ विचार भी होता है। शुक्ल यजुर्वेद में ऋषि ने इसका वर्णन करते हुए लिखा, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्प शक्ति सभी मनुष्यों में होनी चाहिए। बिना संकल्प के कोई भी कार्य अपनी चरम परिणति को नहीं प्राप्त होता है। कुछ लोगों में किसी कार्य के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव होता है। कुछ लोग कार्य करने से घबराते हैं। कुछ कार्य प्रारंभ तो करते हैं किंतु उसे बिना पूरा किए हुए ही बीच में छोड़ देते हैं। किंतु जिनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है ऐसे लोग प्रारंभ किए हुए कार्य को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता। इस प्रकार दृढ़ता उत्तमता की परिचायक है। दृढ़ विचारों वाला व्यक्ति विश्वसनीय होता है। जो कार्य को बिना पूर्ण किए हुए ही बीच में छोड़ देता है वह लोगों का विश्वास पात्र नहीं बन पाता है। भर्तृहरि के शब्दों में, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नैर् पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जनान परित्यजन्ती। दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति का विशिष्ट गुण है लोभ राहित्य। दृढ़ विचारों वाला व्यक्ति कितनी ही परेशानी से व्यथित क्यों न हो, कितने ही प्रलोभन उसे क्यों न दिए जाएं, किंतु वह अपने पथ से कदापि डगमगाता नहीं है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। इस प्रकार उत्तम कार्यों के लिए जो उत्तम सोच होती है वो है संकल्प शक्ति। संकल्प का तात्पर्य सुंदर विचार, दृढ़ता युक्त विचार, जिससे सकारात्मक विचारों का संपोषण होता हो, जिसमें नकारात्मकता का रंच मात्र भी स्थान न हो, जो समाज के उन्नयन का द्योतक हो, वह शिव संकल्प विश्व कल्याणकारी होता है। धैर्यशाली व्यक्ति ही दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। साहस, उदारता, धैर्य, क्षमा, दम इत्यादि गुणों के अधिष्ठान से दृढ़ संकल्प शक्ति की वृद्धि होती है। मनुस्मृतिकार ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा, धृतिः क्षमा दमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहः, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम् धर्म लक्षणम्। यहाँ पर धर्म से अभिप्राय किसी संप्रदाय विशेष से नहीं है, अपितु जो धारण किया जाए वह धर्म है। इस प्रकार दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति सहजतया इन गुणों को धारण कर लेता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ही, केवल मनोरथ से ही कर्म सिद्धि नहीं होती है, उसके लिए उद्योग करना पड़ता है। उद्यम के लिए संकल्प करना पड़ता है। जब संकल्प के साथ उद्यम किया जाता है तो सहजतया कार्य सिद्धि हो जाती है और उस कार्य सिद्धि से समाज का सर्वविध उन्नयन हो जाता है। दृढ़ संकल्प और अध्यवसाय का मणिकांचन संयोग ही सफलता के चरम तक पहुंचाता है।
1: अभी आपने सुना आज का सुविचार संकल्प। आलेख एवं वाचन था डॉक्टर सूर्य प्रकाश शुक्ल का। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से समय आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। संकटों को हरने वाले और प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण मन को असीम शक्ति और साहस से भर देता है। तो आज मंगलवार की इस सुबह में हम भी चलते हैं हनुमान जी की शरण में और सुनते हैं ये पावन भजन। उनसे करते हैं प्रार्थना कि आप तो सभी संकटों को हर लेते हैं, हमारे जीवन के भी सभी संकट हर लें।

जय श्री हनुमान। जी हाँ श्रोताओं, हनुमान जी की भक्ति, उनका पराक्रम और उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्रोताओं, जब मन बेचैन हो और जीवन की राहें कठिन लगे, तब एक ही नाम है जो भीतर से शक्ति भर देता है, और वो नाम है महादेव का नाम, भोलेनाथ का नाम। उनके स्मरण से ही लगता है जैसे जीवन का सारा बोझ ही उतर गया हो। और सावन के इस पावन महीने में तो हर ओर बस हर हर महादेव की ही गूंज है। तो आइए इस भजन के साथ हम सब भी मिलकर उनकी भक्ति में खो जाएं।

भगवान भोलेनाथ के चरणों में शत शत प्रणाम है। श्रोताओं, भोलेनाथ की कृपा से मन को शांति और हृदय को शक्ति मिलती है। आइए शिव भक्ति की इस पावन घड़ी में अपने मन की सारी चिंताएं शिव चरणों में अर्पित करें और डूब जाएं एक बार फिर शिव की आराधना में।

जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। श्रोताओं, कई बार हमारा अपना ही मन हमें समझाने की कोशिश करता है कि अब भटकाव की राह छोड़ दो और ईश्वर की शरण में आ जाओ। और यकीन मानिए, जब दिल स्वयं से संवाद करता है तो वह सबसे सच्ची भक्ति होती है, भक्ति की सच्ची आवाज होती है।

श्रोताओं, कर्म ही जीवन की दिशा तय करते हैं और कर्म का अपना फल होता है। आइए इसी बात के साथ सुने ये पावन भजन।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 266।

वल तथा रूप के पुंज श्री राम और लक्ष्मण को तपस्वी वेश में वन में भटकते देख सुग्रीव को एक अव्यक्त भय हुआ। उन्होंने हनुमान को ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे मिलकर इस प्रकार वन में भटकने का कारण पूछने के लिए भेजा। श्री राम ने

ब्राह्मण वेशधारी हनुमान को अपना परिचय देकर जानकी हरण की बात कही और फिर प्रश्नकर्ता का परिचय पूछा। प्रभु को पहचान कर हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे श्रीकांत परगांवकर और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: परीक्षा अथ च TDPL संस्थया आयोज्यमानाः सर्वाः प्रतियोगी परीक्षाः निरस्ताः। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ह्यः सायं विशेष मंत्रिमंडलोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृत्वा एतत् निर्णयं उद्घोषितवान्। राज्य प्रशासनेन 14-2017 वर्षादारभ्य झारखंड लोक सेवायोगेन अथ झारखंड कर्मचारी चयनायोगेन च आयोजितानां नियुक्ति परीक्षाणां व्यापक परीक्षणस्य अपि आदेशः प्रदत्तः। किन्तु छात्रनेता पीयूष कुमारः उक्तवान् यत् 11-तः 13 पर्यन्तानां JPSC परीक्षाणां तथा केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणस्य अन्वेषणात् सम्बद्ध प्रदर्शनकारिणां याचनाः अद्यापि विचाराधीनाः सन्ति। प्रदर्शनकारिणः छात्राः उक्तवन्तः यत् ते स्वीया अवशिष्ट याचना विषये चर्चां करिष्यन्ति तथा अग्रिम कार्याचरण विषये अपि निर्णयं करिष्यन्ति। दिल्ली प्रशासनेन चरणबद्धरीत्या स्नातक स्नातकोत्तर अतिविशेषज्ञता स्तरीय चिकित्सकीय शिक्षा संस्थानानां संख्यां वर्धयित्वा राष्ट्रिय राजधान्यां चिकित्सा शिक्षायाः क्षमतां वर्धयितुं सज्जः अस्ति। अस्य योजनायाः अन्तर्गतं प्रशासनेन त्रिमुखी कार्यनीति स्वीकृता अस्ति। अस्यां नवसंस्थानां संस्थापना, विद्यमान संस्थानां विस्तारः तथा स्नातकोत्तर उन्नत चिकित्सकीय कार्यक्रमाणां विस्तारश्च सम्मिलिताः सन्ति। केरले विजिंजम समुद्रपत्तनात् प्रत्यक्ष निर्यातः आयातश्च अद्य आरभ्यते। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन प्रातः पादोन 11 सेवायाः उद्घाटनं करिष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य झारखण्डे अतिवृष्टिमालक्ष्य रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता। ऋतु विभागेन अद्य बिहार छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा पश्चिमोत्तर प्रदेशानां च विभिन्नेषु भागेषु अतिवृष्टेः संभावना पूर्वानुमानिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य आयुष शेट्टी नवदिल्ल्यां आयोजितायां BWF बैडमिंटन विश्व स्पर्धायां पुरुषाणां एकल वर्गस्य प्रथम चरणे विश्वस्य प्रथम क्रमांकितं वर्तमान विजेतारं च चीन देशीयं शी यू क्यूई इत्येनं पराजित्य विजयम् अवाप्तवान्। तत्रैव पीवी सिंधुः तथा महिलानां युगलवर्गस्य भारतीय युगलं त्रिसा जौली गायत्री गोपीचन्दः अपि द्वितीय चरणे प्रविष्टे। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं एक बार फिर हमारे मॉर्निंग शो नमस्ते लखनऊ में। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आज नीना सोनकर से जानकारी सुनिए, तनाव प्रबंधन है जरूरी, इस विषय पर।
2: श्रोताओं मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव एक आम समस्या बन गई है। हम बात करेंगे तनाव के प्रबंधन की और इसमें योग और ध्यान का क्या महत्व है। तनाव चाहे काम का हो, परिवार का हो या फिर निजी जीवन से जुड़ा हुआ, इससे बचना मुश्किल है लेकिन इसे सही तरीके से प्रबंधित करना संभव है। योग और ध्यान जैसी प्राचीन तकनीकें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि तनाव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है लेकिन इसे कैसे संभाला जाए ये हमारे हाथ में है। जब हम तनाव को समझदारी से प्रबंधित करते हैं तो ये हमें मजबूत और अधिक सक्षम बनाता है। योग इस दिशा में एक अद्भुत साधन है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि ये हमारे मन और शरीर को जोड़ता है। योग के आसन हमें न केवल शारीरिक रूप से फिट रखते हैं बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। नियमित रूप से योग करने से शरीर में लचीलापन और शक्ति आती है जिससे तनाव से निपटना आसान हो जाता है। अब बात करेंगे ध्यान की। ध्यान एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है जो हमारे दिमाग को शांति और

0: संतुलन प्रदान करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान वर्तमान में रहता है और हम अनावश्यक चिंताओं और विचारों से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान हमारी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और भावनाओं को संतुलित करता है। रोजाना केवल 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके तनाव को कम करने और मानसिक शांति को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। सांस लेने की तकनीकें भी तनाव प्रबंधन में अत्यंत प्रभावी होती हैं। गहरी सांस लेना और छोड़ना हमारी नसों को शांत करता है और हमें तुरंत राहत देता है। जब भी आप तनाव महसूस करें, कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लें। ये एक ऐसा सरल उपाय है जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं और ये तुरंत प्रभावी होता है। योग में प्राणायाम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से न केवल श्वसन तंत्र में सुधार होता है बल्कि इससे मन की शांति भी बनी रहती है। ध्यान और योग का नियमित अभ्यास न केवल हमें मानसिक तनाव से बचाता है बल्कि हमारे शरीर को भी मजबूती देता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और हमारे शरीर में थकान और असहजता महसूस होने लगती है। योग के माध्यम से हम इन शारीरिक समस्याओं को हल कर सकते हैं क्योंकि ये शरीर को आराम देती हैं। तनाव प्रबंधन के लिए जीवन शैली में बदलाव भी बेहद जरूरी है। योग और ध्यान के साथ साथ एक सकारात्मक और संतुलित जीवन शैली अपनाना भी आवश्यक है। रोजाना व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना और पर्याप्त नींद लेना तनाव को कम करने में मदद करता है। जब हम अपनी दिनचर्या को स्वस्थ आदतों से भरते हैं तो हमारा मन भी शांत और सकारात्मक बना रहता है। ध्यान का एक और फायदा ये भी है कि ये हमें आत्म जागरूक बनाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने शरीर की आवाज को सुन पाते हैं, अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये आत्म जागरूकता हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार बनाती है। अंत में ये कहना सही होगा कि योग और ध्यान न केवल तनाव को कम करते हैं बल्कि हमारे जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाते हैं। इनका नियमित अभ्यास हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार भी करता है। तो श्रोताओं, अगर आप भी तनाव से बचना चाहते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन लाना चाहते हैं तो योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ये आपके मन और शरीर को नई ऊर्जा और शांति प्रदान करेगा।
1: तनाव प्रबंधन है जरूरी, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। तो रखिए अपनी सेहत का खूब ख्याल और अब स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में सुनिएगा कानपुर नगर और झांसी जिलों की खबरें। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समात फरमाइएगा सावन पर खुसूसी प्रोग्राम उर्दू शायरी में सावन। तहरूर व आवाज होगी रबाब अंजुम की और तरतीब व पेशकश होगी विक्रांत चौधरी की। आज ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश होगा। लोकरंग और लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे रामरथ पांडे व साथियों का आल्हा गायन। लोकरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:50 और लोकमाधुरी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा दिन में 2:45 से। बहने सुनेंगी अपना मन पसंद कार्यक्रम अपराजिता दिन में 1:15 से। कार्यक्रम में आज बहने सुन सकेंगी गीतांजलि। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता परवल उत्पादन की उन्नत तकनीक। वार्ताकार होंगे राम कुमार वर्मा और भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। आज इस कार्यक्रम में आधुनिक दंत चिकित्सा

और ओरल हाइजीन विषय पर जानकारी प्राप्त कीजिएगा। जानकारी देंगे डॉक्टर उमेश अवस्थी। शाम 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर सुरेश सिंह से वार्ता, ग्रामीण उद्यम से सशक्त होते गांव। शाम 6:50 का समय है कार्यक्रम खेती किसानी का। आज इस कार्यक्रम में गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन, इस विषय पर डॉक्टर दिनेश सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता आप सुन सकेंगे। आज रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता सुनिएगा, दुख निवारक है योग। डॉक्टर ओम नारायण अवस्थी से इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। रात्रि 8:10 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे डॉक्टर मोनिका सिंह के गाए गीत व भजन। रात्रि 9:30 से श्रोता सुन सकेंगे अपनी पसंद के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम होगा हेलो मेरी पसंद। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत आकाशवाणी आगरा की प्रस्तुति में सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 10 बजे। 10:30 से सुनिएगा शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा शुभम वर्मा के तबला वादन का। और श्रोताओं, आज है मंगलवार तो प्रातः 7:31 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम आज सुबह। और अब से थोड़ी ही देर में यानी प्रातः 7:10 से सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। इसके साथ ही श्रोता समय समय पर फिल्म संगीत और प्रायोजित कार्यक्रम भी सुन सकेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विविधा में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस दुनिया की, जहां कुछ सेकंड की एक वीडियो हमें हंसा सकती है, चौंका सकती है, कुछ सिखा सकती है और कभी कभी बिना बताए हमारे मन में एक सवाल भी छोड़ सकती है कि आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, बात हो रही है रील्स की। दोस्तों मोबाइल खेलते ही एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पता नहीं चलता कि 2 मिनट के लिए उठाया गया मोबाइल कब आधे घंटे का हमारा साथी बन जाता है। लेकिन आज जरा रील को सिर्फ रील की तरह नहीं बल्कि उसकी रियलिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है, जो हमें रील में दिखाई देता है क्या वो पूरी सच्चाई है? दोस्तों आपने कभी गौर किया होगा कि किसी की सुबह कितनी परफेक्ट दिखाई देती है। सुबह जल्दी उठना, योग करना, साफ सुथरा कमरा, खूब हेल्दी नाश्ता, खूबसूरत कपड़े और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। देखकर लगता है कि वाह भाई, इनकी जिंदगी में तो कोई परेशानी है ही नहीं। और फिर हम अपनी सुबह देखते हैं, कभी अलार्म बंद करके दोबारा सोना, कभी चाय की जल्दी, कभी कमरे में बिखरी चीजें और कभी काम की भाग दौड़। तब मन क्या कहता है कि भाई मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं।

लेकिन दोस्तों यहाँ जरा रुकना जरूरी है, यहाँ जरा समझना जरूरी है। हमें उस रील में सिर्फ वही दिखाई देता है जिसे दिखाने के लिए चुना गया है। जी हाँ, कैमरा बंद होने के बाद क्या हुआ वो तो हमें पता ही नहीं होता। हो सकता है उस छोटी सी रील को बनाने में कई बार रिकॉर्डिंग की गई हो, कई चीजें बदल गई हो और बहुत कुछ काट या फिर छांट दिया गया हो। यानी 30 सेकंड की रील किसी की पूरी जिंदगी नहीं होती। कहने का मतलब है कि रील्स हर बार रियलिटी नहीं होती। दोस्तों, रील्स की दुनिया का एक और पहलू है, इनका हमारा ध्यान खींचना। रील देखना मनोरंजन है, लेकिन अगर हम बिना सोचे लगातार स्क्रॉल करते रहें और समय का पता ही ना चले तो हमें थोड़ा ठहर कर सोचना चाहिए कि आखिर हमारा समय भी तो हमारी जिंदगी का ही हिस्सा है ना। एक और दिलचस्प बात आपसे कहना चाहूंगी कि हमें किसी की सफलता तो दिखाई देती है, उसके पीछे की मेहनत अक्सर हम नहीं देख पाते हैं। किसी की खूबसूरत यात्रा तो हमें दिखाई देती है, उस यात्रा के लिए की गई तैयारी और साथ ही साथ कितना खर्च किया गया है ये भी हमें नहीं समझ आता। किसी का मुस्कुराता चेहरा तो हमें दिखाई देता है, लेकिन उसकी परेशानियां हम नहीं भाप पाते हैं। एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि रील्स अक्सर हमें तुरंत परिणाम वाली दुनिया दिखाती है। कुछ दिनों में फिटनेस, कुछ कदमों में सफलता, कुछ मिनटों में खाना तैयार और कुछ आसान से उपायों से जिंदगी बदलने के दावे। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली जिंदगी इससे अलग होती है, क्योंकि यहाँ सफलता के लिए समय लगता है, खूब मेहनत करनी पड़ती है, गलतियां भी होती हैं, असफलताएं भी आती हैं और फिर हम उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। किसी भी खूबसूरत नतीजे के पीछे की पूरी कहानी कुछ सेकंड की रील में समा जाए ये तो जरूरी नहीं है ना। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि रील्स बुरी है। रील्स ने बहुत से लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है, इसलिए सवाल ये नहीं कि रील्स देखें या नहीं, सवाल ये है कि रील्स हमें चलाएं, हम रील्स को ना चलाएं। क्योंकि जो बात आप में हम में होती है वो हमारी तस्वीर या थोड़ी देर के लिए बनाई गई रील्स में तो नहीं हो सकती।

दोस्तों, कभी कभी मोबाइल को एक तरफ रखकर अपनी असली दुनिया को भी देखना चाहिए। घर में किसी अपने से 2-4 मिनट बात कीजिए, बालकनी में खड़े होकर आसमान की ओर निहारिए, किसी पुराने दोस्त को फोन कर लीजिए, अपना पसंदीदा कोई गीत सुन लीजिए, परिवार के साथ बैठकर हंसिए, किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है उसे महसूस कीजिए। इन पलों पर शायद आपको कोई लाइक ना मिले, कोई कमेंट ना मिले, लेकिन यही वो पल है जो जिंदगी को सचमुच खूबसूरत बनाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई शानदार रील देखें और आपको लगे कि सामने वाले की जिंदगी कितनी परफेक्ट है, तो एक बार मुस्कुराइए और याद रखिए, रील जिंदगी का एक फ्रेम है, पूरी तस्वीर नहीं। किसी और की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चमक आपकी जिंदगी की रोशनी को कम नहीं करती। आपकी कहानी की अपनी गति है, अपने मोड है और अपनी खूबसूरती है। तो रील्स देखिए, हंसिए, सीखिए, प्रेरित होइए, लेकिन कभी कभी स्क्रॉल करना रोककर अपनी जिंदगी को भी एक बार निहार लीजिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें हमेशा कैमरे के सामने नहीं होती। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। याद रखिए, रील कुछ सेकंड की हो सकती है, लेकिन जिंदगी बहुत लंबी और खूबसूरत कहानी है, इसलिए उसे किसी और की रील से तुलना करके खराब मत कीजिए। इसे अपने अनुभवों से जिए, इसे खूबसूरत विचार के साथ। अब अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को दीजिए आज की विविधा से अनुमति। फिर होगी किसी रोज मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, निजी खेल अकादमियों और अखाड़ों को भी सहायता प्रदान करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में नई ई पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का किया शुभारम्भ। उचित दर विक्रेताओं को अब 90 रुपए की बजाय 125 रुपए प्रति कुंतल मिलेगा लाभांश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की नए पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारी राष्ट्रीय टीम में शामिल। और प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी विभिन्न जिलों में मध्यम से भारी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले वर्षों में प्रदेश में खेल संस्कृति में व्यापक बदलाव आया है और सरकार ने खेलों के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित किया है। हर गांव में खेल मैदान, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिलों में स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि माफिया प्रवृत्ति युवा शक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन है। शिक्षा, नकल, नशा, खेल या किसी भी क्षेत्र में सक्रिय माफिया युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। सरकार ऐसे माफियाओं की पूरी संपत्ति जब्त कर कड़ी कार्रवाई कर रही है।

0: योगी ने कहा कि अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और अगले एक महीने में 500 और पदक विजेताओं को नौकरी देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही नई युवा नीति लाएगी और हर जिले में रोजगार जोन विकसित किए जाएंगे। श्री योगी ने निजी खेल अकादमियों और अखाड़ों को भी सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया।
1: ओलंपिक में मेडल देश के लिए प्राप्त करने वाले दो खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल, ये गाजीपुर के ही एक निजी स्टेडियम से पनपे हैं, आगे बढ़े हैं। खेल इको सिस्टम जब विकसित होगा, उसको विकसित करने के लिए सरकार ने ही उसको आज तय किया है, निजी एकेडमी कोई चलाएगा तो निजी एकेडमी के लिए हम सरकार से भी उसको सहायता प्रदान कर।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से उचित दर विक्रेताओं के लिए नई ई पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति कुंतल कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने प्रदेश खाद्य वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर उचित मूल्य विक्रेताओं से जुड़ी दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में निर्मित किया जा रहा है, जहां दुकान और वेयर हाउस की सुविधा दी जाएगी।
1: आप सभी अपने यहाँ अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़वाई, धनराशि का आवंटन सरकार आपको करेगी। राशन वितरण का काम तो आप एक सप्ताह 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन आप उस वेयर हाउस का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं, अतिरिक्त इनकम उससे भी कमा सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद भी अगर हम वहां रखेंगे, उस पर्व और त्योहार में अगर हम स्थानीय उत्पाद को भी प्रायोरिटी देते हैं, हमारा जो स्थानीय कारीगर स्थानीय हस्तशिल्पी उससे प्रोत्साहित होगा, उसके माध्यम से हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे।
0: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कन्नौज, बलरामपुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, कानपुर देहात और बदायूं सहित विभिन्न जिलों में सीधा प्रसारण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, वैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। राष्ट्रीय टीम में प्रदेश के 8 चेहरे शामिल किए गए हैं। बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को महासचिव और गोरखपुर से संगीता यादव को मंत्री बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कल लखनऊ में योजनाओं के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए नव विकसित ऑनलाइन पोर्टल potato.uphorticulture.in का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आलू उत्पादक किसानों के लाभ के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 1,000 करोड़ रुपए का भामाशाह भाव स्थिरता कोष, भंडारण शुल्क में छूट और आलू के बीज पर छूट शामिल है।
3: राज्य में भामाशाह भावांतर योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें 1,000 करोड़ का प्राविधान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। निर्धारित लागत मूल्य का जो अंतर होगा उसका 25% अनुदान राज्य के किसानों के खाते

0: में डीबीटी के माध्यम से अंतरित हो जाएगी। जो आलू किसानों के द्वारा अपना आलू शीत गृहों में भंडारित किया गया है उसके किराए में 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब के दर से राज्य सरकार उन्हें अनुदान डीबीटी के माध्यम से देगी।
1: सहारनपुर में कल से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुई भर्ती रैली में पहले दिन हापुड़ जिले की 3 तहसीलों के 899 युवाओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। भर्ती रैली 4 सितंबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से प्रदेश भर के पीआरडी जवानों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ करेंगे। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित पीआरडी जवान सम्मेलन में मुख्यमंत्री 3,000 रुपए वर्दी भत्ता की धनराशि पीआरडी जवानों के बैंक खाते में भेजेंगे। इसके साथ ही पीआरडी स्वयं सेवकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड वितरित कर मुख्यमंत्री पीआरडी परिवार कल्याण योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान श्री योगी लखनऊ में बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास भी करेंगे। नागपंचमी का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रावण मास के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं बाराबंकी, अमेठी और जौनपुर के मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे शिव भक्तों तथा कांवड़ियों पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश जिलों में आज भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि विभाग द्वारा इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। उधर लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जनपदों में बाढ़ के हालात हैं। वाराणसी में गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर घाटों के ऊपरी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रामघाट की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, निजी खेल अकादमियों और अखाड़ों को भी सहायता प्रदान करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में नई ई पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का किया शुभारंभ। उचित दर विक्रेताओं को अब 90 रुपए की बजाय 125 रुपए प्रति कुंतल मिलेगा लाभांश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की पार्टी के नए पदाधिकारियों की घोषणा। प्रदेश से 8 पदाधिकारी राष्ट्रीय टीम में शामिल। और प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी विभिन्न जिलों में मध्यम से भारी बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह

0: दोस्तों, रात की खामोशी अब धीरे धीरे रोशनी में बदल रही है और हल्की हल्की बूंदें भी बरस रही हैं। और इसी बदलते पल के साथ हम लेकर आए हैं एक नई सुबह की ताज़ा कहानी। जी हाँ, आपका अपना कार्यक्रम आज सुबह। आज के इस सफर में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा, और मेरे साथ हैं आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा। कीजिए स्वीकार हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, ये वही समय है जब सपने धीरे धीरे आंखों से उतरकर हकीकत की राह पकड़ते हैं और हर दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागती है कि आज का दिन कुछ अच्छा जरूर लेकर आएगा। क्यों रिंकी
1: जी? श्रद्धा, और देखिए, हम हमेशा यही बात अपने दोस्तों से कहते हैं कि हर दिन जो है वो एक नई शुरुआत है। जो बीत गया उसे भूल जाइए, कहते हैं ना, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले।
0: बिल्कुल।
1: तो आज की जो ये नई सुबह है, ये नया रास्ता खोलती है नई मंजिलों की ओर आपको ले जाने के लिए।
0: बिल्कुल। तो सुबह की किरण कहती है, मुस्कुरा कर चलो, जो भी मिले रास्ते में उसे अपना कर चलो।
1: जी हाँ, तो आइए इस सुबह को बस यूं ही गुजरने ना दें, इसे अपने दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत बनाएं। तो भाई, जब इतनी अच्छी बातें हो ही रही हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो फिर एक सुविचार भी अपने दोस्तों से साझा कर लेते हैं कि आज का सुविचार क्या कहता है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या कहता है श्रद्धा आज का सुविचार?
0: भाई, जब इरादे मजबूत हों तो छोटी सी कोशिश में भी बड़ा असर छोड़ जाती है, यानी छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं।
1: सच बात है, हम अक्सर बड़े काम करने के बारे में सोचते हैं लेकिन शुरुआत करने से हिचक जाते हैं, है ना?
0: जबकि सच्चाई ये है कि हर बड़ी सफलता के पीछे ना एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है।
1: जी सही कह रही हैं आप, अगर छोटे छोटे कदम हम ना उठाएं तो फिर हम आगे की जो लंबी दूरी है जो हमें मंजिल तक पहुंचा सकती है, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो क्यों ना आज हम एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वो अपने काम को समय पर पूरा करना हो या फिर किसी की मदद करना हो। श्रद्धा, ये चीज बहुत देखी जाती है ना कि अब हम अपने आप में इतना व्यस्त हो गए हैं कि खुद के लिए तो समय निकाल नहीं पाते हैं, दूसरों के लिए भी समय नहीं निकाल पाते, और जो वो मदद करके जो खुशी मिलती है उससे हम कहीं ना कहीं
0: वंचित रह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो समय होता है ना, हम लोग फोन में या अपने अपने में ही समय बिता रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों से मिले जुले, जो भी आपसे संभव हो दूसरों की मदद करें, अच्छी बात करके हौसला बढ़ाकर, या कहते हैं ऐसे ही मिले जुले तो भी बहुत अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, ये दुनिया जो है भले ही बहुत बड़ी हो लेकिन इसे नापने के लिए जो रास्ते बने हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं जरूर पहुंचा देंगे। तो इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है ना कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं।
0: बिल्कुल, है ना?
1: और कभी कहीं मिलोगे तो जब आप सफर पर निकलेंगे ना, तो बहुत सारे लोग आपको मिलते जाएंगे जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देंगे, कभी हम सफर बनके, कभी दोस्त बनके, कभी आपका प्यार बनके।
0: और क्यों ना इसी बात पर सुनवा दिया जाए श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत।
1: जी बिल्कुल। और शुरुआत में यह खूबसूरत सा नगमा आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा नए एहसासों के साथ।
0: जी आपको सुनवा रहे हैं रंगोली फिल्म का ये प्यारा सा गीत।
2: छोटी सी ये दुनिया।

0: जी हाँ दोस्तों, लोग कहीं भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, हाल चाल जरूर पूछ लेना चाहिए, जैसे किशोर साहब पूछ रहे थे। फिल्म थी रंगोली और इस गीत का संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने, बोल लिखे थे शैलेंद्र ने। और श्रद्धा, आप भी इत्तेफाक रखती होंगी इस बात से कि हाल चाल आप अगर लोगों से पूछते रहें, है ना, तो आपका दिन तो खुशनुमा होगा ही होगा। आपको लोगों के बारे में जानकारियां मिलेंगी और जिससे हाल चाल पूछेंगे
1: वो भी
0: खुश हो जाते हैं कि भाई कोई तो है, क्योंकि आज की दुनिया में ना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोगों का वाकई हाल चाल दिल से पूछते हैं। और जब कोई ऐसा मिल जाता है कि हाँ, जो आपके फिक्रमंद हो आपके बारे में, आपके बारे में पूछे,
1: जैसे आपको अगर किसी से काम नहीं भी है फिर भी आप उससे बात कर लेते हैं तो और भी अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, तो इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि अपने श्रोताओं से कि भाई जब भी समय मिले थोड़ा सा समय फोन स्क्रॉलिंग से हटाइए, रील्स से निकल करके रियलिटी की दुनिया में आइए और यहाँ पर अपनों का हालचाल, अपने दोस्तों का हालचाल, उनके समाचार, जो भी समय आपको मिल रहा है उनके साथ बिताइए, उनसे पूछिए, उनसे जानिए और हाँ अपने हालचाल भी बताइए। ये जिम्मेदारी थोड़ी है कि सिर्फ आप पूछते रहे
1: नहीं,
0: और
1: बताए नहीं, लोग भी आपसे पूछेंगे रिंकी।
0: हाँ तो देखिए कितना अच्छा होता है ना ये गिव एंड टेक की पॉलिसी, कि आप जो है किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो सामने से भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना, और आपको भी अच्छा लगेगा। कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आप किसी को अच्छा फील करवाते हैं तो बदले में आपको भी अच्छा महसूस होता है।
1: इनकी भाई बातें तो हम लोगों ने बहुत सारी कर ली हैं, क्यों ना अपने श्रोताओं को आज के दिवस और इतिहास के बारे में भी जानकारी दे दें।
0: जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, आपने कहा ना बातें हम लोगों ने बहुत कर ली, अब हम अपने दोस्तों से सिर्फ दो ही दिन मिल पाते हैं, है ना, मंगलवार और शनिवार,
1: तो लगते हैं
0: सारी बातें इकट्ठा हो जाती है ना।
1: हाँ ये बात तो है,
0: इसलिए भाई हम आते ही है इसलिए कि अपने दोस्तों से खूब सारी बातें कर सके, जानकारियां दे सके और गीत संगीत सुनवा सके। तो चलिए जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल, तो रिंकी पता है आज कौन सा दिवस मनाया जाता है?
0: जी बताए,
1: कभी हार मत मानो दिवस, यानी नेवर गिव अप डे। ये दिन लोगों को जीवन की कठिनाइयों में हार ना मानने और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के भीतर कठिन समय में भी हिम्मत ना हारने और आगे बढ़ते रहने की भावना को जागृत करना है।
0: बिल्कुल सही कहा, देखिए नेवर गिव अप डे, कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार ना मानना, अपने पर विश्वास रखना, दृढ़ संकल्प बनाए

0: रखना अटूट साहस, सहन शक्ति और संघर्ष के बीच आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है आज का दिन। तो हम भी आज अपने आप से एक वादा करें कि कभी हार नहीं मानेंगे,
1: बिल्कुल, और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे
0: जी।
1: और आज के दिन दुनिया के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है राष्ट्रीय युगल दिवस, यानी आपके आपसी बंधन जो है उन्हें सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है।
0: वाह वाह वाह, कितना खूबसूरत दिन है ना
1: जी। हाँ,
0: राष्ट्रीय युगल दिवस। देखिए, हम बात भी भाईचारे की कर रहे हैं कि अपनों का हाथ पकड़ के चलिए, अपनों के साथ चलिए, और आज दिवस भी है राष्ट्रीय युगल दिवस। तो देखिए भाई, हम और श्रद्धा तो साथ में है, हमारे श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए, और आप भी ये देखे कि आज का दिन आप किसके साथ कैसे बिताने वाले हैं, क्योंकि भाई आज राष्ट्रीय युगल दिवस जो है,
1: और पता है रिंकी, आज मनाया जाता है बैड पोएट्री डे, यानी अजीब या अटपटी कविताएं लिखकर उनका आनंद लेने का दिन।
0: बाबा,
1: ये एक बेहद मजेदार और अनोखा दिन है। लोग जानबूझकर अजीब गरीब या हल्की फुल्की कविताएं लिखकर उसका आनंद लेते हैं।
0: वाह, देखिए ना, दुनिया में कितनी अच्छी चीजें हैं।
1: हाँ।
0: अगर आप खुशी ढूंढे, मनोरंजन ढूंढे, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। देखिए, हम हमेशा कोशिश करते हैं बहुत अच्छा लिखा जाए, लेकिन अच्छा तो लिखने के दिवस खूब सारे हैं, लेकिन
1: अगर आप अच्छी कविताएं नहीं लिख पाते, कोई बात नहीं, आप जैसा लिखते हैं उसे पढ़कर मुस्कुराइए। तो देखिए, ये भी दिवस मनाया जाता है,
0: और अपने लिखने के शौक को भी पूरा कीजिए।
1: हाँ, और इसी के साथ आज मनाया जाता है हीलियम डिस्कवरी डे, यानी हीलियम गैस की खोज की याद में ये दिन मनाया जाता है।
0: बहुत बहुत खूबसूरत दिन, बहुत बहुत अच्छे दिन, और इतिहास जो है हमें ले जाता है इस ओर कि हम उनसे बहुत कुछ सीखे जाने। और देखिए, आज हमने यही जाना कि आज का दिन कहता है कि आप में जो भी गुण है, जो भी क्वालिटीज है, उनको कभी नजरअंदाज मत कीजिए, बस उन्हें अपनाइए और उनके साथ अपना जीवन जिए। और अब एक खूबसूरत सा नगमा हमारे श्रोताओं का कर रहा है इंतजार,
1: बिल्कुल,
0: बड़ा खोज के निकाला है, तो पहुंचाते हैं अपने दोस्तों।
1: हमारा तो ये प्रयास रहता है ना कि भाई आप चाय तो पी रहे हैं, हल्का हल्का पानी बरसा, तो गीत भी खूबसूरत होने चाहिए।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना एक खूबसूरत सा नगमा, फिल्म थी भरोसा। इस गीत का संगीत दिया था रवि ने और बोल लिखे थे राजेंद्र किशन ने।
1: तो भाई रिंकी, इतने खूबसूरत गाने हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं, और लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि मौसम देखिए ना कैसा बदल रहा है ना। सुबह पानी बरस रहा है, दिन में धूप निकल रही है, शाम को उमस हो रही है और सुबह फिर सुहावना मौसम हो रहा है।
0: मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही थी कि इतने खूबसूरत गीत तो भाई बनते ही हैं क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, लेकिन ये मौसम कैसा रहने

0: तो भाई बनते ही हैं क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, लेकिन ये मौसम कैसा रहने वाला है श्रद्धा, ये भी तो हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: तो भाई आइए मौसम की जानकारी ले लेते हैं, और मौसम की जानकारी देने के लिए हर रोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ते हैं IMD के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश जी। आइए उनसे जान लेते हैं मौसम का हाल।
2: हेलो,
3: नमस्ते सर।
2: नमस्ते
3: सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आज सुबह में।
2: जी गुड मॉर्निंग।
3: जी गुड मॉर्निंग सर। सर देखिए अभी तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है कि पानी बरस रहा है, हवा भी चल रही, तो आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा जानना चाहेंगे हमारे सभी श्रोता।
2: जी मौसम की बात करें तो जैसा कि एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा कोस्ट पे मौजूद है, और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे अपने नीचे बिहार और झारखंड के ऊपर आज पहुंचेगा।
3: जी सर।
2: और कहीं ना कहीं बिहार झारखंड पहुंचेगा, तो जिससे कि आज भी जो सदर्न पार्ट है वहां पे भारी वर्षा की संभावना है।
3: जी सर।
2: बाकी अगर हम बात करें तो कल थोड़ा सा हल्की बारिश रहेगा और साउथ में ही भारी वर्षा, लेकिन परसों नरसों दो दिन अच्छी वर्षा का संभावना है।
3: यानी मौसम सर अभी थोड़ा ठंडा रहेगा।
2: बिल्कुल ठंडा रहेगा और बारिश का भी सिलसिला बना रहेगा अगले हफ्ते।
3: जी सर। सर आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ओके धन्यवाद सर।
0: तो भाई दानिश जी ने बताया है कि मौसम आने वाले समय में थोड़ा सा बदला जरूर होगा, बारिश होती रहेगी, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस मौसम में रखिए अपना खूब ख्याल। सावन तो बरस ही रहा है, लेकिन इस बरसात के मौसम का आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे।
1: बिल्कुल, जब आप निकलते तो थोड़ा बहुत तो भीगी जाते हैं, तो लेकिन अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि भाई जब आप स्वस्थ रहेंगे ना तभी तो हर चीज आपको खुशी दे पाएगी।
0: और देखिए जब सावन आता है तो अपने साथ बहुत सारे सवाल लेकर के आता है, बहुत सारे जवाब ले करके आता है।
1: हाँ।
0: और कुछ शिकायतें भी लेकर के आता है। एक ऐसी ही शिकायत का खूबसूरत सा नगमा आपको सुनवा रहे हैं।

0: जी हाँ साथियों, अभी आपने सुना लता मंगेशकर के सुर में फिल्म चुपके चुपके का ये गीत। संगीत SD वर्मन का था और शब्द रचना आनंद बख्शी की थी। श्रद्धा, खूबसूरत से सावन के इस गीत के बाद, शिकायती गीत के बाद, अब हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है, क्योंकि 18 अगस्त के इतिहास पर एक नजर डालें क्योंकि बहुत खास है।
1: जी हाँ, आज ही के दिन सन 1911 में ब्रिटिश भारत में पहली बार आधिकारिक रूप से जनगणना के आंकड़े प्रकाशित किए गए थे।
0: अपने श्रोताओं को बता दें कि 1951 में 18 अगस्त के ही दिन पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में देश के पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT खड़गपुर की स्थापना हुई थी।
1: और सन 1800 में लॉर्ड विलेजली ने कलकत्ता यानी अब कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी।
0: 1868 की बात करें तो फ्रांस के खगोलविद पियरे जेनसीन ने हीलियम की खोज की थी। बहुत महत्वपूर्ण दिन 18 अगस्त का था वो।
1: जी हाँ,
0: इसके साथ ही 1877 में अमेरिकी खगोलविद आसाफ हॉल ने मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस की खोज की थी। दिन कौन सा था? जी हाँ, 18 अगस्त।
1: जी
0: तो भाई देखिए श्रद्धा, जो ये इतिहास के पन्ने होते हैं ना, इन्हें जब पलटिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है ना।
1: जी हाँ।
0: अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग परंपराएं मिलकर दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं।
1: क्यों? बिल्कुल। और जैसे कि ये सावन का महीना भी ना हमें बड़ा खूबसूरत बना देता है। देख रही ना इस समय कि सभी महिलाएं हरी हरी साड़ियां श्रृंगार में कितनी खूबसूरत लगती है। और पता है तैयारी चल रही होती मायके जाने की, तो भाई कुछ लोग पहुंच पाते हैं कुछ नहीं, लेकिन हम तो चाहेंगे सभी लोग पहुंचे और खूब प्यार से त्योहार मनाए।
0: जी श्रद्धा, आपने बात की कि महिलाएं श्रृंगार करती हैं, लेकिन देखिए ध्यान से इस समय प्रकृति ने भी श्रृंगार किया हुआ होता है।
1: चारों ओर हरियाली
0: छाई है। जी, और अपने आप में इतनी सुंदरता बिखरी हुई है धरा पर कि आप उन्हें समेट ले और फिर पूरे साल आप इसी खुशी में रहे कि हाँ, हमारी वसुंधरा वाकई बहुत खूबसूरत है।
1: जी हाँ, और बस हम अपनी प्रकृति का सहयोग करें, उसकी रक्षा करें, है ना।
0: जी, और देखिए फिर सावन के मजे ही मजे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और फिर जितना मर्जी आए उतना इतराकर चलिए, और धरती आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है, आपको कोई रोकने वाला नहीं, आपको कोई टोकने वाला नहीं, क्योंकि आपने अपनी प्रकृति का सम्मान किया है, उसे सहेजा है, उसे संवारा है।

0: स्वर में। मैं रिंकी इतराकर तो नहीं, लेकिन चलने का समय तो आ ही गया है।
1: देखिए, मैं ये जरूर कहूंगी कि आप चाहे जैसे भी चले, लेकिन संभल कर जरूर चले, क्योंकि बारिश का मौसम है, रास्ते में कीचड़ बहुत है, और अगर ऐसे में कहीं फिसल गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, गीत संगीत बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन आप अपना बहुत ध्यान रखें, खास ख्याल रखें, और मौसम का आनंद लीजिए। चाय और पकौड़ों के साथ में आकाशवाणी लखनऊ के साथ बने रहिए, कार्यक्रम यहाँ सुनते रहिए, मनोरंजन करते रहिए, आनंद लेते रहिए, और जानकारियां तो यहाँ पर आपके लिए आती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपना खूब ख्याल रखिए। जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि एक दिन हमें और मिला है, हमारी जिंदगी में एक दिन और जुड़ा है, और ये ईश्वर का वरदान है, इसे संभालिए, सहजिए।
0: हाँ, ये हमें एक नया मौका देता है खुद को बेहतर बनाने का और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का।
1: क्या बात कही है श्रद्धा, और वाकई अगर हम सब ये समझ लें कि हमारा एक काम जो है वो ये भी है कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, या हम ये भी कोशिश कर लें कि कोई हमारी वजह से दुखी ना हो कम से कम, तो दिन बहुत अच्छा है, जिंदगी बहुत अच्छी है। इन्हीं बातों के साथ अब घड़ी की सुई कर रही है इशारा कि मैं रिंकी
0: और मैं श्रद्धा
1: लेते हैं आपसे अनुमति।
0: नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इसी के साथ अब नमस्ते लखनऊ का सफर भी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
4: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
3: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में

0: समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्रनाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्रनाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससीसी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमरीका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमरीका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की ये परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश

0: भी हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
2: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
3: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी यूकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम, 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बना

0: है। कई फजीहतों के बाद एनटीए ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्य ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू की को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: 7.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और समय है नमस्ते बरेली का। तो चलिए सुनते हैं नमस्ते बरेली।

बरेली। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और आज जैसा कि हम जानते हैं कि 18 अगस्त है और सुबह के 8:15 हो चुके हैं। इसी तरह आज के इस सफर को हम पूरा करेंगे और बात करेंगे बरेली की महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबरों की, साथ ही शहर में चल रहे विकास कार्यों की, सावन के पावन कांवड़ यात्रा की धूम शहर में जो है उसकी भी, और मौसम के मिजाज के बारे में भी जानेंगे कि आज मौसम में क्या कुछ बदलाव होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और सबसे पहले शुरुआत इस गाने के साथ।

जैसा कि हम जानते हैं कि सावन का माह चल रहा है और पूरा शहर शिवमय हो चुका है। अगर बात करें कांवड़ियों की तो कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था भी मुस्तैद की गई है। पुलिस कमिश्नर और अधिकारियों ने पूरे शहर के कांवड़ मार्गों का निरीक्षण भी किया और इसके अलावा शहर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए चप्पे चप्पे पर भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर भी रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को भी किसी तरह की असुविधा न हो। नगर निगम बरेली ने शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों और कांवड़ मार्गों पर विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी कर दी है, साथ ही सभी टीमें भी तैनात की गई हैं।

बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। बात कर रहे हैं हम कांवड़ियों की, तो शहर में अलग अलग तरीके से उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कांवड़ मार्गों और जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पर 24 घंटे चलने वाले मुफ्त चिकित्सा और प्राथमिक उपचार शिविर भी लगाए गए हैं। साथ ही ORS और कुछ जरूरी दवाएं भी फ्री में दी जा रही हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो BDA ने भी शहर के चारों प्रमुख प्रवेश द्वार जिनमें शाहजहांपुर रोड, बदायूं रोड, रामपुर रोड और बीसलपुर रोड को इस बार बेहद खूबसूरत फूलों और लाइट्स से भी सजाया है। पूरी तरह से कहा जाए तो हमारा जो शहर है ना, वो सावन के माह में

और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं शहर के बदले मिजाज की, यानी कि मौसम की। तो बरेली में जो मौसम है वो काफी बदल चुका है, यूं कहें ऐसे बरेली में नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तो मॉनसून ने एक बार फिर अपनी सक्रियता को दिखाया और बीते 24 घंटे में आसमान में बादल छाए रहे, कई हिस्सों में काफी बारिश हुई और साथ ही जो मौसम है वो काफी बदला हुआ नजर आया। और ऐसे में जो शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी मुश्किलें भी लोगों को आई, बात करें तो हजियापुर, मलूकपुर के अलावा आला हजरत मोड़, सौदागरन, वमनपुरी, मलूकपुर, संजय नगर जैसे कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह से जलमग्न होती हुई नजर आई और लोगों को काफी दिक्कतें भी हुई हैं। तो ऐसे में अपना ख्याल रखना हम सभी के लिए काफी जरूरी भी हो जाता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि जो मौसम बदल रहा है उसमें अपना और अपनों का ख्याल भी रखें, बीमारियों से भी और साथ ही बारिश से भी।

समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है नमस्ते बरेली। 8:36 और 42 सेकंड हो चुके हैं। और बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस की। बिल्कुल, परिवहन विभाग के मोटरयान अधिनियम 1988 में कई बड़े संशोधन किए गए हैं और 29 नियम बदले गए हैं जो 15 अगस्त से प्रभावी भी हो गए हैं। आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस की जो अवधि समाप्ति के 30 दिन बाद तक उसकी वैधता तक बनी रहेगी। तो नियमों में हुए बदलाव की बात करें तो अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होते ही वो निष्प्रभावी हो जाता था और अब अवधि समाप्ति के बाद 30 दिन तक के लिए प्रभावी बना रहेगा।

और बात करें हम बरेली एयरपोर्ट की, तो बरेली एयरपोर्ट से अब बोइंग विमान भी उड़ान भर सकेंगे। बिल्कुल, बरेली एयरपोर्ट से भविष्य में 197 सीटर बोइंग विमान भी अपनी उड़ान के लिए तैयार रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि अकासा एयर ने सर्दी के मौसम में फ्लाइट संचालन का जो प्रस्ताव है वो दिया है और जल्दी एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से DGCA को ये प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। और अब बात करते हैं आज के मौसम की, मौसम का क्या कुछ मिजाज रहेगा। तो बरेली का अधिकतम तापमान लगभग 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तो आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और शहर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। तो सलाह यही है कि जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें। अगर निकल रहे हैं तो अपने साथ अम्ब्रेला या फिर रेनकोट रखना बिल्कुल न भूलें और सड़कों पर बारिश के पानी को देखते हुए अपने वाहनों की रफ्तार भी धीमी रखें। सुरक्षित चलें।

अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली। ये आकाशवाणी बरेली है 100.4 MHz पर, और अब समय है लोकगीत का। सबसे पहले सुनते हैं इंदु शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

और किरण लता के गाए इस लोकगीत के साथ ही ये प्रोग्राम यहीं तक। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: उदित नारायण महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में टशन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पीयूष मिश्रा ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

सलाम नमस्ते यथा फिल्म का नाम शान और गायत्री अय्यर की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जयदीप सानी ने इसे लिखा और विशाल शेखर का संगीत।

नमस्ते लंदन, ये था फिल्म का नाम। हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। नाम सोचा ही ना था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अबे ओ यार लोग कहते हैं, जब भी यूं जिस किसी के जी आया उसने वैसे ही बस पुकार लिया, तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीपी से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए जैसे, आह ये नाम खूबसूरत है, फिर मुझे नाम से बुलाओ तो सही।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम नाम लेकर पुकार रहे हैं गुलजार को, जो विविध रंगी प्रतिभा के धनी हैं। एक संवाद लेखक, एक गीतकार, एक फिल्मकार, एक कहानीकार, एक उपन्यासकार,

एक अनुवादक, एक लेखक, कितने पहलू हैं गुलजार साहब की इस पूरी यात्रा में उनकी शख्सियत के। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में गागर में सागर भरना भी मुमकिन नहीं, गुलजार के सारे पहलुओं पर चर्चा करना भी मुमकिन नहीं, तो फिर कहां से शुरू की जाए।

0: क्या 1963 से शुरू की जाए, जहां बंदिनी फिल्म के एक गाने के लिए उन्हें बुलाया गया और उन्होंने लिखा, मेरा गोरा अंग ले ले।
1: कुछ

या फिर ये कहानी शुरू करें वहां से जहां दीना में गुलजार का जन्म हुआ, देश का बंटवारा हुआ और जिंदगी में उथल पुथल आई और जिंदगी उन्हें ले आई मुंबई के बेलसिस रोड जहां एक गैराज में वो काम करते रहे, या फिर वहां से शुरू करें कि बिमल रॉय का साथ मिला और फिल्मों की राहों पर गुलजार हौले हौले कदम बढ़ाने लगे, या फिर वहां से शुरू करें जहां सन 1971 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म निर्देशित की, मेरे अपने।

गाने में एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सी बेकली, एक अजीब सी तकलीफ छिपी है, और इस तकलीफ को वही समझ सकता है जिसने बंटवारे का दर्द झेला हो। इस पीड़ा को वो समझ सकता है जिसे अपनी जड़ों को छोड़कर बहुत दूर आ जाना पड़ा हो और जिसके लिए जिंदगी में पीछे लौटना मुमकिन नहीं रहा हो।

संपूर्ण सिंह गुलजार के दिल में अपनी जड़ों से दूर चले जाने की पीड़ा बहुत गहरी रही है और ये बार बार उभर कर आती भी है। अपनी एक रचना में वो लिखते हैं, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। गुलजार साहब की रचनाओं में कहीं एक उदासी भी है तो कहीं एक उम्मीद भी है। कहीं वो लिखते हैं, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, तेरी राहों पे रुक रुक कर हमने अपना ही इंतजार किया। क्यों ना आज के फनकार कार्यक्रम में हम गुलजार के उन गानों की चर्चा खास तौर पर करें जो आपको ज्यादा सुनाई नहीं देते। तो फिर 1969 की तरफ अपनी इस गाड़ी को घुमा लेते हैं। एक फिल्म आई तरुण मजूमदार के निर्देशन में जिसका नाम था राहगीर। राहगीर में गुलजार साहब ने कुछ बेमिसाल गाने लिखे और उनमें से एक गाना हेमंत कुमार ने गाया जो कहता है, तुम्हारे नैन देख के सुना है लोग जोगी हो गए हैं। सुनिए।

0: इसी फिल्म के एक गाने को और सुनाने का जी चाहता है, इसलिए क्योंकि हम बन जा रहे हैं गुलजार साहब की राहों के।
1: जन्म से बन

गुलजार साहब के थोड़े से कम चर्चित गानों की होती है तो हमें याद आती है एक और फिल्म जिसका नाम है बीवी और मकान। सन 1966 में आई इस फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे। भले इस फिल्म का बहुत ज्यादा जिक्र ना हुआ हो, लेकिन जब आप इस फिल्म के गानों को सुनेंगे तो आपको लगेगा इतने प्यारे गाने पर ये कहां छिपे रह गए थे।

0: जब दोस्त।
1: पर ऐसा नहीं कि इस कार्यक्रम में हम सिर्फ वही गाने सुनाएंगे जो कम चर्चित हैं। चलिए हवाओं पर सवार होकर 1968 की तरफ चलते हैं। देबू सेन की एक फिल्म आई दो दूनी चार। ये फिल्म क्या थी? ये एक बड़ा गड़बड़ झाला थी, इसलिए क्योंकि ये फिल्म ईश्वर चंद विद्यासागर के नाटक भ्रांति बिलास पर आधारित थी, जो शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ इरर्स पर आधारित था। लेकिन इस फिल्म के गाने लिखने के बाद गुलजार साहब को लगा इस फिल्म को दोबारा बनाया जाए। उन्होंने फिर क्या चमत्कार किया वो बाद में, पहले हवाओं पे कुछ नाम लिख दिए जाए।
0: हवा

फिल्म दो दुनी चार के गीतकार ही नहीं थे गुलजार, बल्कि ये फिल्म भी उन्होंने लिखी थी। फिर आगे एक चमत्कार हुआ जिसे हम अंगूर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, दो दुनी चार को आगे चलकर गुलजार ने बनाया अंगूर। और अंगूर याद आती है तो क्या याद आता है?

चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुलजार साहब के निर्देशन की दुनिया का थोड़ा सा और कराते हैं परिचय। सन 1972। आप समझ गए कि बात जीतेंद्र, जया भादुड़ी, प्राण और संजीव कुमार के परिचय की हो रही है। आप समझ गए कि बात इस गाने की हो

0: भाई ये जो परिचय है इसके बारे में थोड़ा सा और बताना जरूरी है। सन 1972 की ये वो फिल्म थी जहां से हाथ पकड़कर आगे बढ़े गुलजार और राहुल देव बर्मन। गुलजार और आरडी बर्मन का साथ इसके बाद रहा बहुत लंबा और आए एक से बढ़कर एक नगी ने लंबी छलांग लगाकर फिल्म मासूम पर पहुंचते हैं और लकड़ी की काठी पर सवार होकर दौड़ते हैं।
1: घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। टक बक टक बक टक बक टक बक।

कहीं से भी यकीन नहीं होता कि ये फिल्मी गाना है, बल्कि ये एक नर्सरी राइम का रूप ले चुका है। न जाने कितनी पीढ़ियां दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा गाते हुए बड़ी हो गईं, और फिर पिताओं ने अपने बच्चों को भी यही गीत सिखाया और फिर ये बच्चे भी इसे गाते हुए बड़े हो गए। इस बीच में कुछ और पीढ़ियां आईं जो जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है जैसे गाने गाते हुए बड़े हुए। गुलजार साहब को बच्चों से बड़ा लगाव रहा और उन्होंने बच्चों के लिए न केवल फिल्में बनाई बल्कि बच्चों के मुद्दों पर फिल्में बनाने से इतर कुछ किताबें भी लिखी, जैसे बोस्की का पंचतंत्र और दूसरी कुछ किताबें। तो ये तो हुई गुलजार और बच्चों की बातें। अब जरा गुलजार साहब के फिल्म निर्देशन की खुशबू को दूर तक फैलाया जाए। जी हाँ, सन 1975 में आई फिल्म खुशबू, राहुल देव बर्मन का संगीत।

राहुल देव बर्मन, गुलजार और आशा भोसले की तिकड़ी का कमाल था, दो नैनों में आंसू भरे हैं, निंदिया कैसे समाए। लेकिन बीच में आए मदन मोहन, जब गुलजार ने फिल्म मौसम के संगीत की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। यहाँ एक और मजेदार बात बताते चलें कि फिल्म मौसम का बैकग्राउंड म्यूजिक सलील चौधरी ने तैयार किया था, जबकि फिल्म मौसम के गाने मदन मोहन ने तैयार किए थे। और इस गाने के बिना कहाँ बीतते हैं हमारे फुर्सत के रात दिन।

गुलजार की इस गीत यात्रा में कुछ ऐसी कहानी जो कम सुनी गई हैं और एक ऐसा वर्ग है या एक ऐसी पीढ़ी है जो इन गानों से परिचित नहीं है। आइए फिल्म शक का गाना सुनते हैं कुमारी फैयाज की आवाज में। आपको बता दें सन 1976 में ये फिल्म आई थी।

0: हमारे जहन में कौंध रहा है मुंबई शहर, समंदर का किनारा, ऊंची ऊंची इमारतें और उनके बीच दो दीवाने जो आशियाना खोज रहे हैं। न जाने कितने लोगों के लिए बड़े शहरों में आशियाना खोजने की तलाश और उससे जुड़ी हुई मुहिम और जद्दोजहद का ये नगमा है जो हर दिल में धड़कता है। आवाज भूपिंदर सिंह और रूना लैला की, फिल्म का नाम घरौंदा, साल 1977।
1: दो दीवाने शहर में

जिक्र गुलजार के कुछ सुने और कुछ अनसुने गानों का हो रहा है तो क्यों ना यहाँ एक एल्बम का जिक्र कर लिया जाए। गुलजार, आशा भोसले और आरडी बर्मन ने एक दिन अचानक ये योजना बनाई कि रिश्तों पर आधारित एक नॉन फिल्म एल्बम किया जाए। आखिरकार 1987 में ये नायाब एल्बम आया जिसका नाम रखा गया था दिल पड़ोसी है। इससे ये रचना सुनिए।

जब भी बारिश का मौसम घिरता है, जब आसमान से झमाझम बरसता है पानी, तो कितने कितने गुलजार साहब के गाने हैं जो हमारे जहन में कौंधते हैं। कितनी पीढ़ियों तक गुलजार का सफर रहा है, इसकी एक मिसाल पहले सुनिए थोड़ी सी बेवफाई फिल्म के इस बारिश के गाने की एक झलक।

जरा सोचिए कि सन 1980 में गुलजार साहब कहते हैं बरसे फुहार, और फिर 21वीं सदी में फिल्म गुरु के एक गाने में वो क्या लिखते हैं, सुनिए।

नहीं सोचा था कि इस कार्यक्रम में गुलजार साहब के इतने सारे गाने सुनवाएंगे कि आपको लगेगा एक पूरा इंद्रधनुष खिल गया है, और कोशिश भी तो यही है। तो अब आशा भोसले की आवाज में फिल्म सितारा का एक गाना आ रहा है जो जिंदगी की संगीन हकीकत को आपके सामने रखता है।

ऐसी जादुई रही है गुलजार की पूरी सिने यात्रा। इस सिने यात्रा में कभी गोलमाल भी हुआ। जी हाँ, फिल्म गोलमाल, जिसके संवाद डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे थे। लेकिन इस फिल्म के गानों ने जो धमाल किया कि इस गोलमाल को हम हमेशा याद रखते हैं। देखिए ना, इस कार्यक्रम का वक्त भी किस तरह से बीता।

गुलजार साहब की इस स्नेह यात्रा का जिक्र करते हुए, उनके गानों की यात्रा का जिक्र करते हुए अब हम सन 1985 की तरफ आ गए हैं। कमाल की बात यह है कि अमीर खुसरो की एक रचना के साथ गुलजार साहब ने प्रयोग किया और फिर बना फिल्म गुलामी का ये गीत।

गुलजार साहब ने एक नायाब फिल्म बनाई लिबास। भले ये फिल्म ना आ सकी हो, लेकिन इस फिल्म का संगीत रिलीज हुआ और ये लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ है। सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना।

सबसे बड़ी बात ये कि गुलजार साहब खुद को हर थोड़े दिन में रीइन्वेंट कर लेते हैं, एक नए रूप में सामने आ जाते हैं। फिल्म पटाखा का ये गाना सुनिए, आपको यूं लगेगा जैसे बिल्कुल किसी युवा गीतकार की देन है ये। ये गाना कहता है, आजा नेटवर्क के भीतर कहकर हेलो हेलो हेलो, मेरे व्हाट्सएप के तीतर कहके हेलो हेलो हेलो।

यहीं गुलजार साहब नए जमाने की फिल्मों में ये भी कहते हैं।

जाहिर है कि इस रचनाकार के भीतर इतनी रचनात्मक गहराई है कि हम चाहे जितनी बार गहरा गोता लगा लें, हर बार कुछ नया मिलता है, हैरानी में डाल देता है। ये धूमधड़ाक गाना फिल्म सत्या से।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गुलजार साहब पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति तेजश्री कामले।
1: आज के फनकार।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पसंद ये कार्यक्रम और सुनते हैं सबसे पहला ये गाना। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी, जिसमें आवाज है कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की।

0: कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम 1942 अ लव स्टोरी। ये गाना आपने सुना और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते थे। ये हैं जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु और इनके परिवार के सदस्य कमलेश खोरवाल। और ये है हमारे श्रोता अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धूलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी, उद्यन और अर्पिता, गांव बांडीवाला फाजल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश और योगेश, रजत और गरिमा, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका और भानु प्रकाश, पद्मा टॉकिश नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, नीति कुशल, सुरभि अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, जिला नादेड़ ये ताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम अर्णव, दुर्गेश्वरी राखी और तृप्ति, वीरपुर पोस्ट विलसर तहसील अलीगंज एटा से हैं विपिन कुमार शाक्य, सपना, रविंद्र, राजेश, रमेश चंद्र, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, सुजाता, संगमित्या, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा और उनके परिवार के सभी सदस्य, शेरवानी स्कूल गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया भी इस गाने को सुनना चाहते थे। मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका, पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से राहुल, ज्योति, अंजना पाल, हरिमोहन पाल और लक्ष्य, तहसील भांडेर दतिया एमपी से, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, अर्णम, सत्यमानंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, कृष्णा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से हैं प्रवीण हागोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ और इनका पूरा हागोड़े परिवार, कस्बा उघैती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज, पंकज, प्रिंस, प्रशांत, कार्तिक और पावी, गंज ढुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान, उस्मान यासीन और शमसुल कमर राही, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो भी इस गाने को सुनना चाहते थे।
1: आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में। और अब सुनेंगे आप सभी की पसंद का अगला गाना और इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। परिमहल कासगंज से आबाक खान, नबील खान,

आरफा, इमला, असलम, शेफी भी, और ये हैं ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता सत्यम, सुंदरम राजनगर गांधी चौक मधुबनी से हैं अरुण गुप्ता, मौसम और शिवम, सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरण हुजरे, रेहान खान, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी, हिना कौसर, मोहल्ला हलवाइयान, शेरकोट जिला बिजनौर से इस गाने को सुना चाहते हैं। दुर्गा कॉलोनी हासी से हैं राजू मिगलानी, बबीता सुभाष, योगी, डब्बू और बब्बू, ये हैं संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी, आदर्श दिवाकर, लव, ओमेंद्रपुरी, कल्लू, कजमामीरगंज बिजलीघर से हैं, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हैं रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से ही हैं वेद मिड्ढा और अलका, चंदौसी रोड चमनपुरा यूपी से हैं मुकेश गौतम, सुनील अमन, बुद्धनगर खंडवा से नदीम और राजू, गांव वाराणसी जिला हिसार हरियाणा से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र, बहेड़ी से अंजुम खान, जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोही और बलवीर सिंह, ये हैं प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से हैं, नाज रेडियो क्लब करेली से हैं निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, नुजहत अबरार अहमद अंसारी, इसरार इकबाल, वसीम और पप्पू भाई, सिंधौली मीरगंज से हैं वारसी क्लब से जेशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम और शुएब और गुड़िया भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। साथ ही ये हैं सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज यूपी से पवन गौर, सुयश, आशीष, तन्मय और अपूर्वा, माया देवी, ऋतिक, अजीत कसाना, आदित्य लदावली मुरादाबाद से, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, बीजना मुरादाबाद से राजवीर, कुणाल हर्ष, मनीष, अंशिका, यूसुफ और सोफिया, गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल, शमशाद मंसूरी, परवेज, आसिफ मंसूरी, दानिश मंसूरी, ग्राम एचोरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से मंसूरी क्लब, ग्राम एचोरा, तहसील मिलक, रामपुर से हैं सकावत हुसैन मंसूरी, तालिब सलीम, तौफीक, मोहम्मद नवी, सुनील रस्तोगी, राहुल और इनके बहुत सारे दोस्त, कोड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी और हिमांश, साथ ही उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, भारती बघेल, लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से हैं, गांव जाखोल से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, योगेश, दीपक कुमार और पूजा खटक, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष चैतन्य, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशव और रिधान खुराना, विकास श्रीवास्तव, सौरभ चंद्रपाल, ग्राम एचोरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से हैं, ग्राम पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु और हिमांशी गोदारा, सुनते हैं आप सभी के लिए ये गाना आप सभी की पसंद पर, फिल्म का नाम डंकी जिसमें आवाज है अरिजीत सिंह की।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद, और ये गाना आप सुनेंगे शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज में। फिल्म का नाम है रफू चक्कर, और इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। सुभाष कुदारा, विमला इंदु, पार्वती और हिमांशु, गांव हीरावाली फाजिल का पंजाब से, जिला खरगोन सनावद एमपी से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार बुराना। रावर करनाल से विनोद लखनपाल, और गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर राजस्थान से विनोद बरासा, विशाल विकास रोशनी और शगुन, फारूक अली खान, फैजी फिराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा कस्बा गुन्नौर यूपी से, ग्रामर पोस्ट गोठा खंडुआ से राम बाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी, प्रदीप मिश्रा, सविता, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी, शिवम और इनका पूरा परिवार, कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषामित।

अपी दुबिहा निवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक रोशनी और प्रांजल, मोहम्मद फैज, मोहम्मद अर्श, मोहम्मद अरशान, अलविशा वी, शुएब और आमिर ग्राम एचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से हैं, राजेश कुमार वर्मा और इनके परिवार प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश प्रग्रेश और इनका पूरा संगई परिवार, नई मस्जिद करेली से भाई इंतजार, हिबजानूरी, हिना नत्तू, नन्हे ठेकेदार, सूरज मौर्य, जाहिद मुर्गिया, दिलशाद और मुशर्रफ भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ग्राम सेवड़ी जिला छतरपुर से हैं बारीलाल प्रजापति, धनीराम, नरेश, कलू, रविन्द्र, वृंदावन प्रजापति, छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से रामप्रसाद शर्मा, जयश्री, वंदना, मनोरमा, अजय, खेमकरण और लक्ष्मी, बाकरगंज तहसील फरीदपुर से हैं मास्टर सुनील बाबू, शिवम, सर्वेश, अभयमीत, भगवान देव, स्वाति, तान्या और इनके पूरे मित्रगण, ख्याल बाजार पानीपत हरियाणा से हैं नरेश मल्होत्रा, लक्ष मल्होत्रा, कोयल, पापाजी, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगू, भाविक सिक्का, शिरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरूर निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुनाल और इनका पूरा परिवार, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, किशोर नगर अमरावती से हीरामर शेंडे सिद्धार्थ, शनि बाजार कस्बा उघैती बदायूं से प्रभाकर, अवधेश, सचिन देव, पिरियल, कार्य और गौरी गुप्ता। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना जो कि है फिल्म रफू चक्कर से, जिसमें आवाज शैलेंद्र सिंह और कंचन की।

शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज, फिल्म का नाम रफू चक्कर। ये गाना आपने सुना। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। और इस समय 10:25 और 43 सेकंड हुए हैं, तो देरी न करते हुए जल्दी से आपके पसंदीदा गानों को और आपके नामों को भी शामिल करते हैं। ये हमारी श्रोता अकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय, पवन जरिए और संजीव, मोहल्ला बरादरी से हैं महमूद खान, रामपुर से रफत साहेब सईद भाई, मंसूरी राशिद मंसूरी, और ये हैं फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी, जो इस गाने को सुनना चाहते हैं, जो अब आपको सुनाएंगे। डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना, दानिश और आसिफ, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, प्रहलाद, उमेश और मिथिलेश वर्मा, नागचंद रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। राजनगर मधुबनी से हैं कुशेश्वर कांति, रुद्र भाई, रुद्धि सिद्धि, कोमल गुप्ता, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक, नई बस्ती गंज डंडवारा से मोहम्मद यासी, नाजमा बेगम, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी। हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र नोखेलाल, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह ज्योति, रोहतास बिहार से सोनम और अनामिका, सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे जो कि हैं कोपरा गांव से हैं, और साथ ही ये हैं शिवगांव से श्रीराम और उषा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम अदीब, गांव बंडवाला हनवंता फाजिल का पंजाब से, विनोद मायल, सीमा लक्षिता, यसिका विधा और इनका पूरा परिवार, गैबी चुराहा वाराणसी से अरुण कुमार, सरिता मालवीय भागलपुर उस्तु बिहार से, प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन, करीना, पूजा, आरती और सुनीता, बुलंदशहर से हैं उमेश कुमार गौड़ और रानी गौड़, कटरा चांद खां, पुराना शहर बरेली मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा गौरव, चंद्र प्रकाश मौर्य और मनु भाई। साथ ही ये हैं डायमंड रोडियो श्रोता संघ महबूबपुरा सनावद एमपी से मोहम्मद जावेद खत्री, बेगम सबीना, मोहम्मद जैद मुनिरा, मोहम्मद इकबाल खत्री, तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत तंगोरी, जसबीत कौर, महकप्रीत और सहजप्रीत। साथ ही दत्ता ढोंड के आष्टी जालना महाराष्ट्र से हैं, और ये हैं सिवहारा जिला बिजनौर से आसिफ, अराफात, अदीप और कादिर, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी, लसूडिया नरसिंहगढ़ राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव।

दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु रंधान और तुलसी मस्कीन। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना जो कि है फिल्म धुरंधर से, और इस गाने को आप सभी की पसंद पर हम आपको सुना रहे हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज है। सारेगामा कारवां द परफेक्ट।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद और लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम हाथी मेरे साथी। इस फिल्म से आप गाना सुनेंगे और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। सनावत से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुराना, कटरा चांद खाम, पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवीय, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री, मोहम्मद मुनाजिर, अब्रार हुसैन, अल्ताफ, मुन्ना भाई। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना बानी, हरमिंदर चावला, पायल लोकेश, अंकिता लक्ष्मी, ध्रुव वैदही, हंसिका। जगदलपुर छत्तीसगढ़ से पूनम नायडू, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया की है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निमान, मैंडी, सौरभ और शाइना। भोला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल हरियाणा से ब्रजेंद्र कुमार, जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल वाणी और इनका पूरा परिवार। उदयपुर से नजीब खान, साहिबा, फरीदा बानो, जब्बार मोहम्मद और अशरफ खान। पंचकुला सेक्टर 9 से आशुतोष, अश्विनी, गोविंद, टोनी, लवदीवान, भाविक। पंचकुला 11 से अतुल शर्मा और इनका पूरा परिवार। ये हैं दीपांशु खुरवाल नई दिल्ली से, छिंदवाड़ा एमपी से हैं, नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस, जय, हर्षिता, नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बालासाहेब, रामनिवास, धनंजय, पीबी कुलते, बीड शहर महाराष्ट्र से हैं। साथ ही विष्णु मिस्कीन, रितिका वाणी, मिस्कीन आरव, मिस्कीन परिवार, दयानंद कॉलेज, भवानीपीठ, सोलापुर महाराष्ट्र से, नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला, खुशबू, ज्योति, चरौदाबाद, नवापारा अभ्यारण्य, बलौदा छत्तीसगढ़ से हैं। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी। सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर नई दिल्ली से हैं। ग्राम टोडरपुर भूड़ बिसौली बनायू यूपी से हैं। पीएस यादव, अजय पाल, पवन कुमार, मयंक प्रभात, मुन्नी देवी, नीतू सिंह यादव, प्रतिभा यादव और प्रतिज्ञा। सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा और अभिषेक, मोहम्मद हफिजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान जो कि हैं। ईदगाह जिला बकार पंजाब से हैं और ये हैं बनवारी लाल, कुशवाह, मंजुलता, राम और श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत, रमानंद, कुशवाह और इनके साथी। चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबालो, तहसील आलोट, जिला रतलाम एमपी से विक्रम मालवी, रचना, कमलाबाई, वनदेवी, आकाश और विनायक, इनका पूरा मालवीय परिवार। आकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से रामराव नितोने, शारदा नितोने, सानिका और रिया। ग्राम लोहडी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक। और साथ ही ये हैं प्रदीप सलूजा जो कि हैं जनकपुर नई दिल्ली से, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, कटरा चंदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनुखिलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति। साथ ही ये हैं हमारे बहुत सारे दोस्त, इनके परिवार के सभी सदस्य, इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ बेगम खान, साबरीन बेगम, शहबाज सैफ, ईशान आजम और अरहान। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा, सोनाली, सोनम और आश।

आशीष गांव टोरेवाल नवाशहर पंजाब से, गगनदीप थांदी, प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका और वाणी। और ये हैं हमारे श्रोता कटरा चांद खां, पुराना शहर बरेली से झमरा प्रसाद, किरण, दृष्टि और मानवी, बरकत, जमील, बलोच, जफराबाद, बलूचिस्तान पाकिस्तान से हैं, कस्बा उघेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज, पंकज, प्रिंस प्रशांत, कार्तिक और निर्भय गुप्ता, साथ ही खैल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल मल्होत्रा, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगू और भाविक सिक्का। आप सभी के पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम हाथी मेरे साथी, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में।

हाले हाले।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम आपकी पसंद। और अब बारी अगले गाने की, जिसको आप सभी सुनना चाहते हैं। जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार बुनाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप, सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। तो आप सभी श्रोता इस गाने को सुनना चाहते हैं, और वो गाना है जो कि फिल्म है अफसाना प्यार का, अमित कुमार, आशा भोसले की आवाज़। तो सुनते हैं ये गाना।

ये विकास श्रीवास्तव, सौरभ चंद्रपाल, रामेछोरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से, सिंधुवाला, सूरतगढ़ राजस्थान से, इंदिराज जियाड़ी, अंकुश और इनका पूरा परिवार, परीमहल कासगंज से, आबा खान, नबील, आरफा, इल्मा, असलम सैफी, और ये हैं उगैती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज पंकज बजाज, प्रिंस प्रशांत, कार्तिक और पावी, शेरवानी स्कूल गंज टंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना और आलिया अंसारी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई भारती, रमेश नाचानी, विनीत मिथिल और तिलक तंबोली, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कली मली, मजीम अदीम, अब्दुल गनी अलमीर और जन्नत भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये हैं नक्षत्रपाल यादव, आयुष, मयंक, शुभी, इनका पूरा परिवार सवाईजपुर हरदोई उत्तर प्रदेश से हैं। डाबकी रोड अकोला से सुशीला मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव और इनका पूरा परिवार, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति रोहतास बिहार से सोनम और अनामिका, ये हैं डायमंड रेडियो श्रोता संघ महबूबपुरा सनावद एमपी से मोहम्मद जावेद खत्री, बेगम सबीना, मोहम्मद जैद और मुनरा इकबाल खत्री भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। सनावत से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुराना, कटरा चंद खां, पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई, हिब्जा नूरी, हिना नथु मिस्त्री, नन्हे ठेकेदार, सूरज, जाहिद मुर्गिया, दिलशाद भाई अंसारी और मुशर्रफ भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये हैं हमारे श्रोता जो कि ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष टिक्का, कोयल और डुग्गू और भाविक भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका, आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम अफसाना प्यार का, अमित कुमार, आशा भोसले की आवाज में।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से, प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। 10:55 और 26 सेकंड हुए हैं और जल्दी से आपके नामों को भी शामिल करते हैं। तो ये है पूजा, रेडियो श्रोता संघ पलेरा टीकमगढ़ एमपी से हैं, राजेश कुमार रखेला, राजीव और संजीव, पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी मनीष, खलीफो के बावड़ी से खुदा बख्श, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल।

शाहजी नगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता। ये है एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या आराव और एसके पप्पी, साथ ही इनके परिवार के सभी सदस्य शमशाद मंसूरी, परवेज मंसूरी, आसिफ दानिश, एचोरा, तिलक मिलक जिला रामपुर से हैं। और ये है हीरा वाली फाजिलका पंजाब से सुभाष कुदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु और इनका पूरा परिवार भी इस गाने को सुनना चाहता है। अलकनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैगलाइन बरेली से बेचूलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत, ज्ञानेंद्र, इला देवी, संजय, अश्विनी, सुनील, बर्फा देवी, रमेश चंद्र सैनी, गौतम राम और राम राठौर बाबू भाई भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये है किशोर नगर अमरावती से हीरामर शेंडे, सिद्धार्थ गुनांडे, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से हैं। डाबकी रोड अकोला से सुशीला मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदुरकर, तेलंगाना निजामाबाद से हैं श्वेक बख्श, बेगम राबिया, श्वेक रहीमुन्ना और दानिश आरिफ भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। मोहाली पंजाब तंगोरी से हैं गुरप्रीत तंगोरी, जसबीर, महकप्रीत और सहजप्रीत भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से ब्रजेंद्र कुमार, जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल, वाणी और इनका पूरा परिवार। और ये हैं विष्णु मस्कीन, ऋतिका, वाणी, आरव मस्कीन परिवार, दयानंद कॉलेज, भवानीपेट, सोलापुर महाराष्ट्र से, तहसील भांडेर, दतिया एमपी से राहुल, ज्योति, अंजना, हरिमोहन और लक्ष्य। आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम शादी में जरूर आना, यासीर देसाई और आकांक्षा शर्मा की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर, और अब समय है सब रंग का। तो चलिए, आज का दिन है मंगलवार, और सबसे पहले हम सभी मिलकर करते हैं भगवान हनुमान की स्तुति।

अभी आप सुन रहे थे सबरंग। इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। और अब समय हुआ है 11:15 और 11 सेकंड। सुनते हैं प्रोग्राम झुमका गिरा।

0: हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी बरेली के प्रोग्राम झुमका किरारे में और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त नीतू। दोस्तों, हमारा शहर झुमके वाला शहर सिर्फ झुमके के लिए नहीं बल्कि अपनी एक बेहद खूबसूरत पहचान के लिए सजधज कर तैयार है। जी हां, बात कर रहे हैं हमारी पावन अलौकिक नगरी नाथ नगरी बरेली की।
1: काशी विश्वनाथ की।
0: और चारों तरफ बरेली के वातावरण में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। शायद यही वजह है कि बरेली को सात नाथ मंदिरों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसी वजह से इसे नाथ नगरी कहते हैं। और सावन के इस पवित्र माह में मैं खड़ी हूँ बरेली के ऐतिहासिक और पौराणिक बाबा अलकनाथ मंदिर के प्रांगण में। यहाँ की मान्यता इतनी अटूट है कि कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर बाबा के दर्शन करता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। आनंद का ये आलम है कि आज मंदिर का कोना कोना सिर्फ और सिर्फ शिव भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। पैरों में छाले हैं, सफर लंबा है, लेकिन भक्तों के चेहरों की चमक और उनका उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि मानो साक्षात शिव ही उनके भीतर समाये हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सावन के पवित्र मास में हर ओर बाबा की गूंज सुनाई दे रही है। कचला घाट और हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल आ रहे कांवड़ियों की टोलियां जब नाथ नगरी की सीमा में प्रवेश करती हैं, तो पूरा बरेली उनके स्वागत में पलके बिछाए खड़ा हो जाता है। चलिए, आपको सीधा लेकर आई हूँ मैं भोले बाबा के भक्तों के बीच और सुनते हैं कि इस कठिन मगर आनंदमयी यात्रा को लेकर इनका क्या कुछ कहना है। सुनिए हमारे साथ मौजूद इन कांवड़ियों का ये अद्भुत जोश। मौजूद है अलकनाथ मंदिर में, जहां पर चारों ओर शिव भक्ति के रंग में ये पूरा वातावरण दिखाई और सुनाई भी दे रहा है। तो चलिए, यहां पर बहुत सारे कांवड़िये मौजूद हैं जो कि बाबा की भक्ति में लीन हैं, उनसे जानते हैं। हर हर महादेव।
2: हर हर महादेव
0: जी, आपका नाम?
2: मेरा नाम पवन कुमार है
0: जी। आप कब से सेवा कर रहे हैं?
2: मुझे कई साल हो चुके हैं सेवा करते हुए। मैं हरिद्वार से जल भरता हूँ और अलकनाथ बाबा को चढ़ाता हूँ वहाँ से।
0: मतलब हरिद्वार जाते हैं और सीधे जल लेकर बाबा अलकनाथ मंदिर में चढ़ाते हैं, तो काफी लंबा टाइम लगता होगा आपको सफर?
2: 7-8 दिन का समय लगता है
0: जी। किस तरीके से पूरा कांवड़ यात्रा के जरिए जाते हैं?
2: कांवड़ यात्रा ये हमारी वैसी है, ये जत्था रहता है हमारा जिसमें हम आकर भोले होते हैं। कलश यात्रा होती है, कलश में अभी हम जो लाए हैं आज हमने 17 तारीख को चढ़ाया है। एक कांवड़ हमारी 11 लीटर जल की थी और दूसरी कांवड़ 25 लीटर जल की थी
0: जी। तो इतना लंबा समय लगता है, आपको थकान नहीं महसूस होता, पैरों में छाले पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि सफर पूरा हो पाएगा कि नहीं? ऐसा
2: कभी कभी हिम्मत टूटती है, लेकिन अगर बात हो ही गए तो ये ऊपर वाले की कृपा है कि कहीं ना कहीं हमें शक्ति देता और हमें अपने मार्ग पर पहुंचाता है। बिल्कुल ठीक है और हम यहाँ आके जल अभिषेक करते हैं। बस ये है, कभी सुबह की दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन हमें सही समय तक हमारी मंजिल तक पहुँचा दिया जाता
0: है। हर साल सेवा कर रहे हैं?
2: हाँ, कई साल हो गए, 9-10 साल हो गए अलकनाथ बाबा की सेवा करते हैं।
0: तो क्या कोई खास ऐसी मन्नत होती है उसे पूरा करने के लिए?
2: आप मन्नत नहीं है, सिर्फ एक श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है
0: बाबा के प्रति।
2: दुनिया को दिखाना है, उन्हें उजागर करना है कि दिखावे के लिए नहीं है, भाव भक्ति के लिए आप सेवा करें,
0: ये संदेश देना चाहेंगे आप?
2: सभी
0: शुक्रिया।

0: चैत्र माह चल रहा है और इसमें मौजूद है अलकनाथ मंदिर के परिसर में, बाबा की गूंज सुनाई दे रही है, हर हर महादेव।
1: हर हर महादेव
0: जी। आपका नाम?
1: विरद
0: जी। विरद, कब से कांवड़ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं?
1: हमारे यहाँ ये तो हम लोग ब्राह्मण घराने से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ बचपन से ही
0: आप इसी में रचे बसे हैं।
1: हमारे पूरे दादा परदादा सही
0: से। तो अभी बाबा की भक्ति के लिए आप गंगा जल लेकर आते हैं, काफी लंबा वक्त लग जाता है, किस तरीके से श्रद्धा आपकी है?
1: सावन के महीने में जल का सबसे बड़ा महत्व है, कहते हैं जो जिसने अपने जीवन में जल का दान नहीं किया वो हमेशा आजीवन जो है दुखी भी रहता है, और सबसे कहते जल जीवन है
0: जी।
1: उस हिसाब से जल का दान सबसे बड़ा दान माना गया है, तो वो हम लोग

0: करते
1: और
0: करते।
1: सावन मास में इसका जो पुण्य है वो और मिलता है।
0: हाँ, सावन के महीने में भगवान शंकर को जल चढ़ाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, कभी उसको प्यासा नहीं रहना पड़ता है जीवन भर। मरने के बाद भी जो है जीवात्मा को कभी प्यास की वजह से उसकी जान नहीं जाती है।
1: जी, जल ही जीवन
0: जो
1: है।
0: सावन में शंकर जी को जल चढ़ा देता है।
1: जी, आपने ये बताया। और ये जानना चाहेंगे कि आप प्रशासन की ओर से क्या कुछ सुविधाएं मिली आपको रास्ते भर में?
0: प्रशासन निगरानी कर रहे हैं लगातार, और अपने बढ़ चढ़ के प्रशासनिक लोग भी, प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो और उनकी फैमिलीज और उनके जो वर्कर हैं वो भी सब बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। सब लोग लगातार सहयोग,
1: लगातार सेवा दे रहे हैं
0: शासन प्रशासन।
1: आप लोगों के खाने पीने की सुविधा या रहने की
0: जो बन पा रहा है सब लोग कर रहे हैं अपने अपने पास से। इनके भी सब यहाँ से ले आ रहे हैं, उनके भी ले आ रहे हैं, बन पा रहा है जो कर रहे हैं।
1: तो इस तरीके से क्या श्रोताओं जो भी आपको सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, उनसे क्या कहना चाहेंगे जल को लेकर?
0: आकाशवाणी बरेली एक ऐसा विषय है कि आप लोग अपडेट भी रहे और हम लोग लगातार आप लोगों को सुनते रहे। आपके द्वारा जो एक कहते ना ट्रेडिशनल गाइडेंस जो है वो हम आकाशवाणी बरेली से ही लेंगे।
1: बिल्कुल जी,
0: और हर कदम पर आपके साथ भी हैं और आप दिनों दुनी तरक्की करें। और बहुत शुभकामनाएं श्रावण मास की, अभी उसमें जो त्योहार आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे त्योहार, रक्षाबंधन आदि, सबकी शुभकामनाएं और आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जयकारा लगा देते हैं।
0: जयकारा महादेव,
1: हर हर महादेव,
2: जयकारा जी।
1: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। श्रोताओं, कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये इंसानियत और सेवा भाव का भी सबसे बड़ा उत्सव है। बरेली के चौपला चौराहे से लेकर डेला पीर और अलकनाथ मंदिर की ओर आने वाले हर रास्ते पर कदम कदम पर सेवा शिविर लगे हैं। कोई भाई कांवड़ियों के थके पैरों को दबाता नजर आ रहा है तो कोई गर्मा गर्म हलवा पूरी और चाय का प्रसाद बांट रहा है। यहाँ न कोई छोटा है न कोई बड़ा, बस सब एक नाम में ही मगन है। बोलबम, हर हर महादेव।

0: तो सावन का पवित्र मास चल रहा है और हम मौजूद हैं अलकनाथ मंदिर में, जो कि सावन के लिए खास तौर पर जाना जाता है। भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर कांवड़ियों की भी धूम देखने को मिल रही है। चलिए उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं। जी, आपका नाम?
1: मेरा नाम समीर यादव है, मैं सिवीगंज से बोल रहा हूँ।
0: जी, क्या कुछ सुविधाएं आपको मिली रास्ते में?
1: मुझे पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी सुविधा मिली है, मेरा रोड एकदम क्लियर मिला है, तो जिसकी वजह से मेरी डाक कावर सफल हुई है।
0: जी, कभी पैरों में थकान नहीं हुई, छाले नहीं पड़े?
1: वो तो पड़ते हैं, पर महाकाल की कृपा है तो हम लोग को इतना असर नहीं होता हम लोगों को।
0: जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
2: हम ये कहना चाहते हैं कि सफल बहुत बढ़िया रही, बहुत ही अच्छे कावर यात्रा बढ़िया रही और

शहर भक्ति के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है। चारों ओर शिव के जयकारे हैं। आस्था और विश्वास की एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके इंसानों के पैरों के छाले भी थकावट नहीं बल्कि बाबा की कृपा का आशीर्वाद बन जाते हैं। बस दिल में इसी श्रद्धा को बनाए रखें, जीवन का हर सफर आसान हो जाएगा। श्रोताओं, कांवड़ियों की इन कहानियों और बाबा अलकनाथ के दर्शन के साथ ही आज के सफर को यहीं थामने का वक्त आ गया है। तो इसी तरह आकाशवाणी बरेली सुनते रहिए, आपकी अपनी दोस्त नीतू को दीजिए इजाजत।

0: और दुआओं में कहते रहिए हर हर महादेव।
1: अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरा रे, ये आकाशवाणी बरेली है 100.4 एफएम पर। और अब लीजिए सुनिए एफएम रेनबो आकाशवाणी लखनऊ से।
2: तो हमने आपका पढ़ी दिया, आपकी बात तो हम तक पहुंच ही गई, तो बस गाना भी पहुंच जाएगा। अब सुनिए।
3: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: 20 अगस्त जब साथ होगा रेनबो का पूरा परिवार और होगी पार्टी धमाकेदार।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
2: होगा लाइव म्यूजिक, फन, मस्ती बेशुमार, रहेगा आपका इंतजार।
3: Start the carnival, rock the carnival.

अंग्रेजी में अक्षर कितने? 26। ताश की गड्डी में लाल कितने, काले कितने? 26। मैराथन की

0: कितने मील की लंबाई? 26। एक इंसान के हर पैर में हड्डियां कितनी? 26। तो है ना कमाल का ये 26 अंक, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस बार कमाल का धमाल होगा रेनबो के 26वें बर्थडे पर। अगस्त 2026। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल। तो सुनते रहिए, जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो से। कीप सेलिब्रेटिंग।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
7: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097

11:40 भी हो चुके और आपके बहुत सारे मेल और भी आ चुके, इसीलिए मैंने अपना जो है माइक सरका लिया थोड़ा सा और भी आपके करीब आने के लिए, आपके मतलब आपके जहां पर मेल हैं हमारे कंप्यूटर के पास। आहिल खान जी आपका मेल है और आपने उर्फी खान भी आपको कहते हैं ये भी बता दिया, बुलंदशहर से आपने लिखा है। और आपने क्या लिखा है, उर्फी खान लिख रही हैं कि सर आप खैरियत से हैं? बिल्कुल हैं खैरियत से, आप लोगों के साथ जब हो जाते हैं तो खैरियत बिल्कुल बनी रहती है। आपके सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और सुपर हिट सॉन्ग में आपको गाने बहुत अच्छे लगे। चलिए मुझे भी आज मौका मिला कि वो गाने जो अक्सर बहुत सुबह नहीं बज पाते हैं या जब मैं रात में आता हूँ वहाँ तो बिल्कुल नहीं बज पाते, तो बड़ा मौका मिल गया मुझे उन गानों को बजाने का, तो मुझे भी अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया कि आपका मेल शामिल किया। अरे आपने लिखा इसलिए, और मुझे पता है कि फरमाइश का प्रोग्राम नहीं है लेकिन आपसे पहली दफा रिक्वेस्ट का मौका मिला है। मैंने देख लिया है आंखों आंखों में आपने क्या लिखा है, कोशिश करेंगे। रोशनी रावत आपका मेल भी आ चुका है। संदेश आपके गीत हमारे में आपने लिखा है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड अनवारुल सर जी, आप कैसे हैं? और आपको इससे पहले जो मैंने प्रोग्राम किया वो बहुत बिंदास लग रहा था, और चलिए इसके लिए भी शुक्रिया, गाने आपको अच्छे लगे और अभी भी आपको लाजवाब लग रहा है। और मेरा नाम रोशनी रावत है, ग्राम गांव बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव। संदेश आपने लिखा है कि मेरा संदेश बहुत स्पेशल है, और संदेश ये है कि खुद भी खुश रखिए रहिए और सबको खुश रखिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। वही वाह क्या बात है, तो आपने बिल्कुल हम लोगों वाली बात कह दी, और ये बिल्कुल अच्छी बात भी है कि जब आसपास के लोग खुश रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप भी खुश रहेंगे और एक माहौल अच्छा बंदा रहेगा। तो बस सुबह सुबह जो भी पहली बार आपको मिले ना तो बस उनकी तारीफ कर दीजिए कि आप आज अच्छे लग रहे हैं, आज आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आज आपकी मुस्कुराहट अच्छी लग रही है ना, तो वो भी दिन भर खुश रहेंगे, और जब वो थोड़ा सा मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराहट बढ़ जाएगी। अनिल कुमार जी आपका मेल तो हम पढ़ चुके थे, देखिए आपने फिर से मेल कर दिया है। अब खुल भी गया है मेरे सामने। उत्तराखंड से आपने लिखा है, बड़ी दूर से आपने लिखा है, तो चलिए पढ़ देते हैं। लिख रहे हैं कि क्योंकि आपने कहा कि ये संदेश है भाई, मतलब आपके पास भी वजह है कि क्यों शामिल किया जाए आपका मेल, तो आप लिखते हैं कि सर जी मानसून सीजन में पहाड़ों में जो घूमने जाते हैं ना वो सावधानी के साथ अपना वाहन चलाएं और नदी नालों में जाकर सेल्फी खींचते हैं, पहाड़ों से कब पानी का बहाव तेज हो जाता है पता नहीं चलता, तो कृपया सावधानी के साथ आएं। भाई वाह आएं, आपने यानी निमंत्रण भी दे दिया है, बल्कि आपकी तरफ से आमंत्रण है, ये बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आपने ये ध्यान बिल्कुल सही तरफ दिलवाया है कि जब घूमने फिरने जाते हैं तो और भी ज़्यादा वो हिंदी में जैसे कहते हैं उच्च श्रृंखल हो जाते हैं हम, यानी कुछ भी ध्यान नहीं देते कहाँ क्या हो रहा है, तो इसका ध्यान रखना है, जिम्मेदारी का भी एहसास रखना है, अपने परिवार में लौट के जाना है और जो लोग नहीं आए वो आपका इंतजार कर रहे हैं, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और बिल्कुल ये सही बात है कि जो वाहन चलाने की बात की, क्योंकि पहाड़ों में वाहन उस तरह से नहीं चलते हैं जिस तरह से हमारे यहाँ पर प्लेन में हम लोग जो है चला लेते हैं, और वहाँ पर भी गति निर्धारित

हर तरफ लिखा भी रहता है, आप पढ़ लीजिए कि कितनी चलाना कितनी नहीं चलाना, बहुत ही जिकजैग जो बिल्कुल चला भी नहीं सकते हैं और बहुत पतली रास्ते भी होते हैं। तो चलिए ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने ध्यान दिला दिया है, बाबू अंसारी आपका मेल भी पढ़ देते हैं और प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, चलिए इसके लिए शुक्रिया। बारिश का मौसम चल रहा है तो हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक की जो उपकरण है उसको साफ रखें, छुएं तो बड़ी सावधानी से छुएं, और आपने खाली लिखा है छुएं और चप्पल उसके बाद आपने लिखा ही नहीं, यानी हमारे पास पहुंचा देखी नहीं है, चप्पल तक एक पहुंची, पता नहीं एक चप्पल आई कि दो चप्पल आई हमारे पास तक। चलिए कोई बात नहीं, आप कहना ये चाह रहे थे कि अगर छुएं तो नंगे पैर न छुएं, और वैसे तो छुए ही नहीं, खुला तार है तो बिल्कुल ना छुए, और जो लापरवाही में चली मैं भी जोड़ देता हूँ। अक्सर हम लोग घर में क्या करते हैं कि कई जगह मैंने देखा है कि अगर जो स्विच है थोड़ा सा जल गया या कुछ हो गया तो

और झमाझम साथ में गाने और हमेशा की तरह प्रोग्राम आपको कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा संयोग है कि आज गाने बहुत उम्दा हमेशा की तरह ये संदेश आप दे रहे हैं कि पर्यावरण बचाएं, मौसम बहुत अच्छा है, पेड़ लगाना है तो लगवा दीजिए। ये अच्छी बात है, जबरदस्ती ना करिए भाई, लगाना हो तो लगा दी और लगा देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब मुझे कुछ खड़खड़ की आवाज़ सुनाई पड़ रही, तो मैं गाना बजाने के बाद जरा इस खड़खड़ को ठीक करूँ, मुझे लगता है मेरा भी ये तार ढीला हो गया है, वो कान में ही लगे हैं, हालांकि नंगे पैर नहीं बैठे हम लिख रहे हैं कि आज सुबह ही 3 पेड़ जो है आम के लगाए हैं। अजय कुमार सिंह ने सीतापुर से हमें मेल किया है, एक मेल और है उसको ही पढ़ देते हैं। और ये शादाब जी ने हमें मेल किया है, विलेज ये बेलई संडीला डिस्ट्रिक्ट से, और खैरियत बस आपने लिया और आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, बस ऐसे ही सब कुछ अच्छा लगता रहे हम तो कहेंगे यही। और देखिए एक गाना भी, वो भी अच्छा लगेगा आपको, आप तक आ गया।

चलिए, कोई पगला वगला वैसे नहीं है और हम भी अनजाने नहीं है, आपके अच्छे से, आप हमें अच्छे से जानते हैं। तो बस 11:55 भी हो चुके हैं और मैं इजाजत ले लूं शिखा, ताकि आपके साथ रहें और फिर आगे का कार्यक्रम ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। और बस बर्थडे का, जन्मदिन का याद रखिएगा, रेनबो की टीम जो मेहनत कर रही है तो आप तक पहुंचे और आपको भी मजा आए। तो फिलहाल अनवारुल को इजाजत दीजिए, देखिए फिर कब मुलाकात होती है, सुबह होती है या शाम होती है या इस वक्त वाले में हो जाती है। आएंगे जरूर एक बार, उम्मीद तो है। नमस्कार।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूक भूमि संबंधी प्रकरणों में उदासीनता या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। जनता दर्शन के दौरान एक महिला ने जब यह पीड़ा सुनाई कि दबंग या धमकी देते हुए रास्ता नहीं दे रहे हैं कि चाहे जहां शिकायत कर लो, तो मुख्यमंत्री की भ्रकुटी तन गई। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला को रास्ता दिलवाया जाए। यदि रास्ता दिलवाने में लेखपाल कानूनगो

तहसीलदार खुद को लाचार मानते हों तो उन सबको सस्पेंड किया जाए। सीएम ने कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही कतई क्षम्य नहीं है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन 18 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किया जाएगा। 5 दिवसीय निवेश सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। इस सम्मेलन में 280 अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। यह उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर के बाढ़ सागर परियोजना एवं सिरसी डैम से निकली नहर प्रणाली का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा कि सिरसी नहर प्रणाली की एक नहर को पिछले 20 वर्षों से वन विभाग द्वारा उत्पन्न अवरोध के कारण इस नहर का कार्य बाधित था। उन्होंने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं। बाढ़ सागर का पानी समयबद्ध तरीके से सिरसी नहर तक पहुंचे, यह हमारी प्राथमिकता है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जनपद में विधिक जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। आमजन को सुलभ, त्वरित और सौहार्दपूर्ण न्याय की जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ का प्रचार वाहन आज मिर्जापुर पहुंचा। प्रचार वाहन जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक करेगा। इसके जरिए लोगों को बताया जाएगा कि लोक अदालत में आपसी सहमति से विवादों का सरल और त्वरित समाधान कराया जा सकता है। इससे वाद कार्यों का समय और धन दोनों बचते हैं तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत उद्यमी मित्र परीक्षा 2026 की अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए 29 अभ्यर्थियों का चयन किया है। इन चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट सूची के आधार पर नियुक्त आदेश जारी किए गए हैं। इन्वेस्ट यूपी ने 14 अगस्त 2026 को परीक्षा का अंतिम परिणाम एवं चयन सूची जारी की। योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवेश सुविधा और औद्योगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर संस्थागत सहयोग को मजबूत करना है। इसी के साथ यह बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून आप सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स को। वही दोपहर के 12:60 हो चुके हैं और प्रोग्राम शत्रुपाश शुरू हो चुका है, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा रहेगी आपके साथ। और जब शिखा रहेगी साथ आपके तो बातें तो होनी है। और आज है भाई ट्यूसडे, और ट्यूसडे के दिन क्या बातें होती हैं, थोड़ा सा गेस करेंगे आप? जी भाई, आपके दिल की जो आवाज है ना, वो पहुंच गई है शिखा तक। और आप कह रहे हैं कि शिखा आज हम सब बातें करते हैं फैशन डिजाइनिंग की। जी बिल्कुल सही गेस किया आपने कि आज हम बात करते हैं, यानी ट्यूसडे के दिन हम बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग की। तो आज फैशन डिजाइनिंग में क्या खास होने वाला है आपके लिए? तो दोस्तों आज बातें बहुत खास होने वाली हैं। जी हाँ, आपके बिल्कुल काम की बातें होने वाली हैं। और उन काम की बातों को जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बने रहना होगा 100.7 FM रेनबो से, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जी तुम्हें देखकर आज कल लिख रहा हूँ, एक गजल लिख रहा हूँ, इतना प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना। और देखा, ये जो आज फैशन डिजाइनिंग की हम बात करने वाले हैं ना, इस फैशन डिजाइनिंग में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो सच में आपको देखकर ना लोग गजल लिखने लगेंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो फैशन है ना वो चेंज होता रहता है, और उसी के साथ खुद को स्टाइलिश रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो फैशन है ना ये आपको बदलने नहीं आता, ये आपको निखारने के लिए आता है। जी हाँ, आपको सुंदर बनाने के लिए आता है। और जैसे जैसे फैशन चेंज होता है, हम भी उसको अपने अकॉर्डिंग, उसको अपने में ग्रास्प करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ढलने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, हर तरह की ड्रेसेस ट्राई करते हैं। लेकिन एक ऐसा परिधान है, जी हाँ, एक ऐसी ड्रेस है, परिधान ही बोलेंगे उसको, ड्रेस नहीं बोलेंगे, जो कभी आउटडेटेड नहीं होती है। भाई गेस करिए, कहेंगे शिखा गेस बहुत करवाती है। तो जब परिधान की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक बहुत सुंदर सी, मतलब परिधान हमारे नजर

के सामने कौंधने लगता है। जी क्या कहा आपने? अच्छा हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, साड़ी। जी हाँ साड़ी, हमें हम जो पहनते ना हमारी महिलाओं की खूबसूरती में चांद चार चांद लगा देती है। और ये साड़ी हमारी संस्कृति की पहचान है और ये हर उम्र हर बॉडी टाइप पर जचती है। इसकी एक खासियत यही है कि ये हर उम्र और हर बॉडी साइज को जचती है। लेकिन साड़ी की खूबसूरती को निखारने में एक चीज है जो बहुत अहम भूमिका निभाती है। जी हाँ, और वो अहम भूमिका निभाती है उसका परफेक्ट ब्लाउज। तो इतना मतलब इन जो परफेक्ट ब्लाउज मैंने नाम लिया है ना, उससे आप बिल्कुल 100% गैस कर लिए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके के ब्लाउज को हम साड़ी से मैच कर सकते हैं, कैसे साड़ी को सुंदर दिखा सकते हैं। तो अभी बातें तो हम आपसे और भी करेंगे, लेकिन एक गाना लगा के रखा है आपके लिए, तो चलिए इंजॉय करते हैं ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक।

अंग्रेजी में अक्षर कितने? 26। ताश की गड्डी में लाल कितने, काले कितने? 26। मैराथन की कितने मील की लंबाई? 26। एक इंसान के हर पैर में हड्डियां कितनी? 26। तो है ना कमाल का ये 26 अंक, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस बार कमाल का धमाल होगा रेनबो के 26वें बर्थडे पर। अगस्त 2026 ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के डम डम बाजे ढोल। तो सुनते रहिए, जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो से। कीप सेलिब्रेटिंग।

0: इससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी दोस्तों, 12:30 और बातें हो रही हैं प्रोग्राम शत्रुपा में कि किन तरीके के किस किस तरीके के ब्लाउज को आप ट्राई कर सकती हैं अपनी सिंपल सी साड़ी को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए। दोस्तों, हम अक्सर साड़ी जब लेने जाते हैं तो पसंद करने में घंटों लगा देते हैं, लेकिन जब ब्लाउज की बात आती है तो वही पुराने डिजाइन प्रेफर करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप सिंपल सी साड़ी भी ट्रेंडी दिखना चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप सिंपल सी साड़ी में भी ट्रेंडी दिखना चाहते हैं, यूनिक दिखना चाहते हैं और फैशनेबल दिखना चाहते हैं, तो आपको करने होंगे ट्राई डिफरेंट ब्लाउज। और जब आप वो ब्लाउज

करेंगी ना? जी हाँ, जिन ब्लाउज की आज हम बात करने वाले हैं, जो वो ब्लाउज आप ट्राई करेंगी ना, तो क्या लोग कहेंगे आपसे? जी हाँ, आपसे लोग कहेंगे, क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो अगर आप ये सुनना चाहती हैं, जी हाँ, अगर आप ये लाइन सुनना चाहती हैं, प्रशंसा के शब्द सुनना चाहती हैं, और अपने वॉर्ड्रोब में नए नए तरीके के ब्लाउज को शामिल करके, साड़ी से मैच करते हुए ब्लाउज को शामिल करके दिखना चाहती हैं स्टाइलिश, स्टनिंग, गॉर्जियस, तो बस जुड़ी रहिए, क्योंकि अभी बातें होने वाली हैं आज आपके बिल्कुल काम की। तो बिल्कुल आपको हटना नहीं है और बिल्कुल जुड़े रहना है 100.7 FM रेनबो से, क्योंकि वो है धड़कन लखनऊ की। तो चलिए, एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप तक, तो इंजॉय करते हैं हम और आप दोनों।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जी 12:38 का वक्त और शिखा है आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा लेकर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जी हाँ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमने फैशन डिजाइनिंग में एक टॉपिक लिया है कि किन किन तरीके के ब्लाउज को पहनकर। जी हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें खुद भी नहीं पता होता है कि कितनी वैरायटी में ब्लाउज आते हैं, कुछ चीजें हमें खुद भी नहीं पता होती। तो आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे आप अपनी सिंपल सी साड़ी को एक ब्यूटिफुल लुक दे सकते हैं। तो कोर्सेट स्टाइल डिजाइन ब्लाउज की बात करते हैं। जी हाँ, कोर्सेट स्टाइल डिजाइन ब्लाउज की। ये ब्लाउज खास तौर पर अपनी फिटिंग और स्टाइलिश लुक के लिए जाना जाता है। तो अगर याद ना रहे आपको तो आप बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कोर्सेट स्टाइल ब्लाउज की बात हम करने जा रहे हैं और ये ब्लाउज अपनी फिटिंग और स्टाइलिश लुक के लिए जाना जाता है और देता है आपको एक ग्लैमरस अपियरेंस। कॉर्सेट ब्लाउज जो है ना, साटन साड़ी, सिल्क साड़ी या जॉर्जेट साड़ी के साथ लगता है बहुत बेहतरीन। तो अगर अभी तक आपने ये नहीं सुना था, नाम नहीं सुना था, या अगर आपने अभी तक नाम सुना था और ट्राई नहीं करा था, तो अब बारी है ट्राई करने की। और एक खास बात ये भी है कि ये जो है ना भारी, जैसे भारी एम्ब्रॉयडरी वाले या प्लेन, दोनों तरीके की साड़ियों के साथ आपको इजिली मैच करते हुए मिल जाएंगे। और अगर आप पार्टी, वेडिंग या किसी खास इवेंट पर लगना चाहती हैं सबसे शानदार और ट्रेंडी, तो कॉर्सेट ब्लाउज को ट्राई करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो बातें तो अभी और भी हैं करने के लिए आपसे, लेकिन एक गाना जो है ना वो मुझे कह रहे हैं, शिखा मैं जाना चाहता हूँ कि भाई अपने लिसनर्स के पास मुझे भेज दो ये प्यारा सा ट्रैक। इतना प्यारा सा ट्रैक है कि मुझे तो पसंद है ही, और मुझे लगता है जितने भी हमारे लिसनर्स इस ट्रैक को सुनेंगे ना, इंजॉय जरूर करेंगे। तो चलिए इंजॉय करते हैं ये बेहतरीन सा ट्रैक।

0: मिलती है
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
4: RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी 12:50 हो रहे हैं, जी हाँ हो रहे हैं। और आज हम प्रोग्राम शत्रुपा में बातें कर रहे हैं कि किन किन तरीके के स्टाइलिश ब्लाउज को आप ट्राई कर सकते हैं अपनी सिंपल सी साड़ी को स्टनिंग दिखाने के लिए या खुद स्टनिंग दिखने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं भाई, साड़ी की जो जान होता है ना वो ब्लाउज होता है। तो जब बातें हो ब्लाउज की तो हाई नेक ब्लाउज को कैसे भूल सकते हैं। इसका सिंपल लेकिन एलिगेंट डिजाइन आपके साड़ी लुक को परफेक्ट टच देता है। हाई नेक

इस स्टेटमेंट को नया आयाम। जी अक्सर हम देखते हैं कि हाई नेक ब्लाउज लोग जो ट्राई करते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारे ऊपर नहीं जचेगा, है ना, इन्होंने पहना इनके ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यही हमारी गलत फहमी होती है। आपको एटलीस्ट ट्राई तो करना बनता है, तो वही अब आपको ट्राई करना है ये ब्लाउज। जी हाँ, हाई नेक ब्लाउज आपको जरूर से ट्राई करना है।

आप इसको ट्राई करने के बारे में सोचिए और साथ ही ये प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करिए, क्योंकि ये जो प्यारा सा ट्रैक है ना, ये अपनी सहेलियों से गुफ्तगू करते समय भी आप बातें करेंगे ना, दिल दिया गल्ला करेंगे नाल नाल बैठ के। जी हाँ, जब आप अपनी सहेलियों को भी ये बात बताएंगे कि भाई आज शत्रुरा प्रोग्राम में ये चीजें बताई गई, तो क्या होता है ना, डिस्कशन जब होता है किसी अपने से तो बहुत खास होता है।

तो आजकल डोरी के साथ बैकलेस ब्लाउज डिजाइन काफी ट्रेंड में है। ये ब्लाउज डिजाइन काफी स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लुक देता है। ब्लाउज के पीछे पतली डोरी लगाई जाती है जिससे ये आसानी से फिट हो सके। पार्टी वेयर साड़ियों के साथ ये डिजाइन खूब जचता है, जिसे आपको एक बार ट्राई करना तो बनता है। क्योंकि क्या अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं जो डोरी के साथ ब्लाउज पहने हैं, हम थोड़ा सा ना उसको कहते हैं अरे मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा, मतलब हम मन में ही काफी अपने ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। तो भाई आप देखिए, आपको ये ट्राई करना बनता है ये वाला ब्लाउज। और अब बात करते हैं एक और यूनिक ब्लाउज की, मिरर वर्क बेस्ड ब्लाउज। तो अगर आप साड़ी के साथ दिखना चाहती हैं ग्लैमरस, तो आप ट्राई कर सकती हैं मिरर वर्क वाला ब्लाउज, तो आपकी खूबसूरती को एनहांस करेगा। तो अभी और भी बातें करने के लिए नहीं बची हैं, जी हाँ, क्योंकि समय इशारा कर रहा है कि भाई बातों का सिलसिला यहीं पे खत्म करना होगा, क्योंकि अगला प्रोग्राम होठों पे तेरी बात भी आप एंजॉय करेंगे मेरे साथ। तो चलिए वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इसी गाने के साथ। टाटा बाय बाय।

जी दिल दिया गल्ला करेंगे नाल नाल बैठकर। जी हाँ, आपने अपनी दोस्तों से ये बातें करनी कि आज क्या क्या खास होने वाला है, या उनको बताना है कि आज भाई प्रोग्राम शत्रुपा में इतनी खास बातें हुई। तो दोस्तों, हम बातें कर रहे थे ब्लाउज की।

104.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और दोपहर के 1 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए अनुरोध गीत।

और अनिरुद्ध गीत का जो पहला गाना है वो है अरिजीत सिंह की आवाज में, सचिन टिकर ने भी इसमें आवाज दी है। फिल्म का नाम है भेड़िया और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश वनेजा, विमला अनेजा, यादव मोहल्ला, सनावद एमपी से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान, जितेंद्र, धर्मेंद्र मालाकार। मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई अफजाल, गैगटा और रामप्रसाद शर्मा। गैगटा काशी धर्मपुर बरेली से फहीम खां, सदीक अली साबिया, रामप्रसाद धुने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, फजलुद्दीन, अबरार और अफजाल। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नासमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। सुनते हैं अनुरोध गीत का ये गाना।

और अब रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार 19 अगस्त 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, हार्ट अटैक के मरीज में एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी कब और क्यों, शंकाएं एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार 18 अगस्त 2026 यानी कि आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो

में गंगाशील अस्पताल बरेली के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष शंकधार उपस्थित रहेंगे। विषय है हार्ट अटैक के मरीज में एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी कब और क्यों, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार यानी आज 18 अगस्त शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर है 0581251720। सूचना समाप्त हुई।

और ये गाना आप सभी की अनुरोध का, उषा खन्ना किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। अनुरोध गीत के लिए आप सभी ने खत लिखा है। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से प्रकाश राय, उषा अमित और हैप्पी, दुबिया निवाता गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश प्रीति और नवनीत, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारिणी सूरज, सुजला ज्योति और रेयांश, और करनाल से है सुधीर, नूतन, संदीप, सुनीता और सुनीता जैन, जगमोहन प्रजापति। आप सभी के अनुरोध का ये गाना, फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम, किशोर कुमार उषा खन्ना की

शान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये फिल्म वांटेड से आपने एक गाना सुना और इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली प्रोग्राम का नाम अनुरोध गीत। और बारी अगले गाने की और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह चिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत गगन, दीप कौर, सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, शुएब खान, मुस्तफा खान, राव भाई, श्वेत भाई, गांधीबाग कोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार, मोहम्मद आसिफ, परी महल कासगंज से हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा, इल्मा, शमसुल कमर राही और मीरा सयाए, बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। आप सभी के अनुरोध का ये गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम जोश, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज में।

आकाशवाणी बरेली से इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत, और अब आप सुनेंगे जो गाना वो है फिल्म टू स्टेट से अरिजीत सिंह और चिन्मयी की आवाज में। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से प्रकाश राय उषामित हैप्पी दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांचल शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश प्रीति और नवनीत कालका से हैं शुभचंद्र बजाज साहिल और बिट्टा बजाज सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा ऋतिक और प्रतीक रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा पंचकुला सेक्टर 9 से आशुचुक अश्विनी गोविंद टोनी दीवान लव राधे भाविक और कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य सुंदर देवी प्रकाश रिंकी कपिल वेदराम कैलाश सुनील खुशबू एरोही और स्वाति। सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज का ये गाना जो कि है फिल्म टू स्टेट्स से।

और इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली। अभी आपने सुना राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म का नाम पाप, और इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते थे। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा, मोहम्मद अल्तमश, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप, राशि और शीतल। और ये हैं हमारे श्रोता भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर एमपी से स्वाति प्रयाग, मालती भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक परी संजना और ललिता नारायण खर्चे। आप सभी के अनुरोध का ये गाना सुनते हैं, फिल्म का नाम और प्यार हो गया, उदित नारायण की आवाज में।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली। प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत और अब आप सुनेंगे अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज का ये गाना। फिल्म का नाम है भारत और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। आप सभी ने अनुरोध गीत के लिए खत लिखा है और अब हम आपको ये गाना सुनाते हैं। गांव कड़ी कुटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से हैं सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अकरम अंसारी, शानिया, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा, आयशा, उमर और समीना।

राजकुमार श्रीवास्तव रागिनी मुस्कान बैंक सेंटर चुनेटी बरेली कैंट से हैं, नितेश कुमार दिवांगन दुर्गा प्रसाद पराग टेलर पुनाराम दिवांगन और कृष्णा मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज रोहित और पीयूष कुमार, ये हैं दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी जुबैन निशा कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल और बिट्टा बजाज सेक्टर 67 मोहाली से हैं टी डी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी इकबार फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजदरानी और हिना कौसर जीशान वारसी और इमरान शेख रेहान शेख सिंधौली मीरगंज बरेली से करुला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया और ये हैं मोहम्मद अकरम अंसारी नगरिया कला बरेली से जिला उज्जैन एमपी से हैं भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ भोला वाकतरिया प्रवीण रियांश और प्रतीक चंदोसी रोड चमनपुरा यूपी से मुकेश गौतम सुनील अमन बुद्धनगर खंडवा से नदीम और राजू ग्राम और पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शारुनूर अंसारी फरियाद हुसैन शकील अहमद मोइन अंसारी तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा सुनते हैं आप सभी की पसंद का गाना फिल्म का नाम भारत अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में

और आप सुनेंगे फिल्म कहो ना प्यार है से गाना उदित नारायण की आवाज में, और इस गाने को आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। कृष्ण पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी देवाना, जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर यूपी से हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू राजपाल, काजल, सीमा मानवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह, कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर लव, उमेंद्र पुरी और कल्लू भाई मिस्त्री, कस्बा उघैती बदायूं से धीरज गुप्ता, पंकज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, डी के हिटलर और इनके परिवार के सदस्य, बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल, हर्ष, मनीष, अंशिका, यूनुस और सोफिया खान, पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा टीकमगढ़ से है राजेश कुमार अकेला, यशोदा, संजीव और राजीव। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष, लाल कुर्ते रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युमान और आर के राजा, गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल, गोविंदपुरा सेकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता, तुषार और रिंकी शेखावत, बेड़ी एमपी से है हुकुम करकर और सुनीता करमकर। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्डाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश, छत्तीसगढ़ दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास, लच्छनपुर से विश्वनाथ, चटडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा, साईमा, मुस्ताबा, आफिया, राव भाई, शायद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजौरिया। साथ ही ये है कृष्णानगर टीवी टावर नागपुर से है नाना डोंगर दिवे, रमा सीमा ताई डोंगर दिवे, रीमा दीक्षा ताई और राहुल डोंगर दिवे। कटियार पेट्रोल पंप के कंट्रोल के सामने बरेली यूपी से हमारे श्रोता कनिष्क, अन्ना और घर के सभी लोग, विनोद, रीता, नीलम और सोनू, और सुनते हैं ये गाना उदित नारायण की आवाज, फिल्म का नाम कहो ना प्यार है।

अभी आप सुन रहे थे अनिरोध गीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम रस रंग। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं ये गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आपने ये जो नज्म, ये गजल सुनी थी, ये थी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की मधुर स्वर में। और अब आपको सुनवा रहे हैं हम पंकज उधास के स्वर में ये मधुर नज्म।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। और श्रोताओं, आपको बताते चलें, आज 2:30 पर जिस कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का हम रिकॉर्डिंग करेंगे, उसमें आज का विषय है कि मुसीबत चिल्लाकर नहीं आती। और क्या आपके साथ भी अचानक कोई दुर्घटना हुई है? तो इन सारी विषयों पर हम बात करेंगे। अपने जीवन के अनुभव, अपनी बातें हमसे साझा कीजिएगा। दोपहर 2:30 पर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करेंगे, जो कि प्रसारित होगा शाम को 4 बजे से। और हमारा जो फ़ोन नंबर है, आप सभी को ज़रूर पता होगा, लेकिन रिपीट कर देते हैं, 0581-251-7200। प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं आपके लिए जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग। प्रोग्राम के अंत में आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये लोकगीत प्रकाश रूठा की आवाज में।

0: प्रकाश रूठा के गाए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हो रहे हैं और अब आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: सन्नाटा फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में था।
1: राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ, राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।
0: लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में प्रेम पत्र फिल्म का गाना।

0: अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और ममता जी देखिए बस मेरा मन कर रहा है कि आपसे कुछ सवाल कर लिए जाएं।
1: अच्छा कीजिए सवाल से वैसे डर लगता है कि पता नहीं क्या कौन सा सवाल आप पूछ बैठेंगे।
2: पिछली बार आप मुझे चौंका रही थी तो मैंने कहा हम भी चौंका देते
1: लेकिन हम डरने वाले थोड़ी ना हैं। बताइए
2: वो तो मुझे पता है। ये बताइए कि आपने गाड़ी चलाई वाहन चलाया दो पहिया चार पहिया कुछ चलाया आपने?
1: क्यों बताया नहीं बताएंगे
2: बताना तो पड़ेगा
1: क्योंकि हम जानते हैं अगला सवाल क्या होगा कि आपको डर लगता है कि नहीं
2: वो तो नहीं है बिल्कुल।

0: देखिए हम सच बताएं तो साइकिल चलाना बचपन में शुरू किया और गिर गए, चोट लगी, सिर से खून बहने लगा और खूब खून की धारा बही। तब से साइकिल चलाने से बड़ा डर लगता था और साइकिल चलाना छोड़ ही दिया। फिर घर में किसी ने कहा ही नहीं कि साइकिल चलाना सीखो, जबकि जरूरी था। और लेकिन हाँ, लड़कियों को हम साइकिल चलाना देखते थे तो मन बहुत करता था कि हम भी चलाएं, लेकिन वो जो डर है ना,
1: डर बैठ गया,
0: वो डर निकला नहीं। तो बस यही कहना है श्रोताओं से कि अगर कोई बात मन में डर के रूप में घर करती है तो घर वालों का ये कर्तव्य होता है कि उस डर को निकालें।
1: बिल्कुल सही।
0: और अगर डर नहीं निकालेंगी तो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, सपने नहीं देख पाएंगी। सपने देखने के लिए डर निकालना और आत्मविश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है।
1: और उनकी जो सीखने की ललक होती है उसमें रंग में भंग भी नहीं डालना चाहिए, है ना?
0: तो बस जी, तो आज तो सारे विषय एक साथ समेट लिए गए हैं एक ही बात में।
1: और
0: एक ही बात
1: जी, और सखी विशेष में हम बात करेंगे नीरू शर्मा जो इंफीबीम की सह संस्थापक है, इनके बारे में बात करेंगे।
0: और मुहावरों की जो दुनिया है ना, रंग में भंग डालना, तो हमने जो मुहावरे बताए हैं, हमारे श्रोता कौन कौन से मुहावरों का प्रयोग करते हैं और आज के दौर में मुहावरों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं?
1: बिल्कुल।
0: और
1: जो कि ममता जी, जब लंच का टाइम होता है तो कहते ही घर में कि भाई जल्दी परोसो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इस तरह की बातें होती है ना। और ये भी होता है कि घोड़े बेचकर सोना, मतलब अब सोते ही रहोगे, क्या कुछ करोगे नहीं, इस तरह की बातें मुहावरों में।
0: बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद खाने के लिए।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे कौन कौन से मुहावरे हैं जो हमारे श्रोता याद रख सकते हैं और मुहावरों का प्रयोग करते हैं किन मुद्दों पर, तो वो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर लिखें। और साथ में ये बताएं कि जो हमारा एक विषय है, बेटियों को सिर्फ संस्कार नहीं आत्मविश्वास से निडर बनाएं। और अगर छोटे छोटे डर उसमें रोपते रहेंगे या संस्कारों के बोझ से आप दबा देंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा। संस्कार सिखाएं जरूर, लेकिन आत्मविश्वास की शर्त पर नहीं। आत्मविश्वास उनके अंदर झकझोरे पैदा करें।
1: सही बात है, क्योंकि आगे चलकर वो जो भी काम करे तो उसमें उन्हें संकोच ना हो अपनी बात कहने में। कई बार होता है ममता जी, अक्सर लड़कियां मतलब संकोच करती, मन की बात कहना था, कुछ करना चाहती तो 10 बार सोचती कहे कि ना कहे, कोई मना तो नहीं कर देगा, डांट तो नहीं पड़ेगी। तो ये बच्चों के मन, लड़कियों के मन से निकाल दें कि भाई डरो मत, जो भी कहना कहो, खुले दिल से कहो।
0: आप भी अपना सवाल अपने मन से अब निकाल दीजिए और अब जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। हम पूछ रहे हैं कि ये जो पहला वाहन वाला विषय हमने रखा है, तो आप बताइए कि बचपन में पहला वाहन साइकिल था, बाइक, स्कूटी थी, क्या था?
1: साइकिल ही थी हमारी तो। और हम साइकिल जो थे, हम और मेरी जो बहन थी, हम लोग पत्थर पर खड़े हो जाते थे, फिर साइकिल पर बैठते थे, चलाते थे,
0: क्योंकि हाइट उतनी नहीं पहुंचती तो साइकिल, क्योंकि बच्चों के नाम से साइकिल खरीदी नहीं जाती थी, वो बड़े भाई बहनों की साइकिल होती थी, इसलिए।
1: बिल्कुल वही हाल था, लेकिन उसमें क्या होता था, हम लोग सीधे सीधे तो चलाते चले जाते थे, अब मोड़ना तो आता नहीं था, तो उधर ही गिर पड़ते थे, फिर वहाँ कोई पत्थर ढूंढते थे, उस पे चढ़ते थे।
0: क्या बात
1: फिर
0: है।
1: वापस
0: और साइकिल एक कोई चलाता था और एक साइकिल पीछे एक जो कैरियर होता था उस पे बैठता था, और वो नहीं तो आगे जो साइकिल का डंडा होता है उस पे बैठता था।
1: लेकिन कैंची, जो लड़के कैंची चलाते ना, वो मुझे कभी नहीं, कोशिश भी करी तो कई बार गिरी गया, चोट भी लगी, लेकिन
0: खैर ये हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि उनका जो पहला वाहन था क्या था, और अपने अनुभव साझा करें।
1: बिल्कुल।
0: क्या हुआ जब पहली बार आपने साइकिल चलाई या कोई और वाहन, दो पहिए का रिक्शा भी हुआ करता था ना, बहुत छोटे, जब हाथ पैर साइकिल तक पहुंचने लायक नहीं होते, मतलब 5-6 साल की उम्र में 3 पहिए वाला वो साइकिल रिक्शा दे दिया जाता था
1: बच्चों को जो साइकिल होती थी।
0: हाँ, तो वो भी अगर आपको याद हो, आपके जहन में हो, वो याद ताजा हो, तो जरूर साझा करें। फिलहाल गाना सुनवाते हैं।

0: मंजरी जी कहाँ खो गई आप, हमें लगता है श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई हैं, लेकिन टिप्पणियां तो पढ़ेंगे लेकिन जरा कुछ चर्चा भी तो कर ली जाए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बेटियां जब घर में आती हैं, मतलब एक बेटी पैदा होती है तो जश्न नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज जमाना बदल गया है, अब बेटी पैदा होती है तो लोग बहुत खुश होते हैं और आज जश्न मनाने का चलन शुरू हो गया, तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है। और जहां पर ये चलन नहीं है वहां पर अपनाया जाएगा। और बेटी, कहा जाता है ना कि बेटियां परिवार की मुस्कान ही नहीं होती बल्कि बड़े नाज से बच्चों की परवरिश भी की जाती है बेटियों के लिए। बात जब उनकी आती है तो बहुत सारे रीति रिवाज का ज्ञान, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब लोग समझाने लगते हैं, समझाइश की पोटली लेकर खड़े हो जाते हैं।
1: और कहा भी जाता है कि जब, हमें याद है ममता जी जब छोटे थे तो यही कहते थे कि नहीं ये सारे काम कर लो, चाहे टोकरी से प्याज ही ले आओ, लहसुन ले आओ, छील दो, तो ये छोटे छोटे कटोरी ले आओ, ग्लास,
0: घरेलू काम,
1: घरेलू काम से शुरुआत ही कर देते थे कि ये करना है, अच्छा अंधेरा होने से पहले घर के अंदर ही आ जाना है, बाहर नहीं जाना। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें माँ अक्सर सिखाया करती है अपने बच्चों को। और हम अक्सर बेटियों को संस्कार, मर्यादा और जिम्मेदारियां सिखाने पर जोर देते हैं, लेकिन आज के समय में इतना ही काफी नहीं है। उन्हें संस्कारों के साथ आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और अपने लिए आवाज उठाने का साहस देना भी उतना ही जरूरी है।
0: आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है।

0: साथ में जो संस्कार की पोटली थमाई जाती है तो उसमें साथ में ये भी बताया जाता है कि क्या गलत है, क्या नहीं, क्या सही है। तो ये संस्कार देना जरूरी है, लेकिन इस संस्कार के साथ लड़कियों को दब्बू बनाना ठीक नहीं होता है,
1: बिल्कुल
0: कि कुछ लड़कियां बहुत अंदर से बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, प्रतिभाशाली होने के बावजूद, क्लास में एक दब्बू लड़की बन के रह जाती है, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता। उनके मन में भरा होता है कि अरे बाप रे, अभी कहीं कोई मेरी बात का बुरा ना मान जाए। तो
1: बिल्कुल
0: इससे लड़कियों को हर निकालना चाहिए, और अगर ये बात उनके मन से निकल गई तो जो उनके भीतर सपने पल रहे हैं उन सपनों को पंख देने में आसानी होगी।
1: बिल्कुल। और हर माँ को अपनी बेटी को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा करना सिखाना चाहिए। उसे ये एहसास कराना जरूरी है कि बाहरी दिखावे से अधिक उसका आत्मविश्वास और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: और ये भी कि
1: जी
0: हर कदम पर उन्हें ये कहें, अरे लोग क्या कहेंगे, जरा झुक के चलो, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, जरा ठीक से चलना, वहां जाना तो देखना, ज्यादा लड़कों से बात मत करना, नहीं तो लोग देखेंगे तो शिकायतें आएंगी। इन सब से मुक्त कर देना चाहिए। अब
1: बिल्कुल
0: उनके करियर के बारे में बात करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में, कि आप आज दिन भर में क्या किया, कौन से अखबार पढ़े, कौन सी किताबें पढ़ी, और आज जो तकनीक का जमाना है, तकनीक में कौन सी नई तकनीक सीखी। हमें नहीं लगता हम अपने इर्द गिर्द कोई माँ घर में अपनी बेटी से अमूमन दिन भर में ये सवाल पूछती है, बेटे से ये सवाल पूछा जाता है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन
1: और
0: बेटियों से नहीं।
1: पहले देखिए ये ऐसा होता भी था कि जैसे कि कोई चीज दिलानी है तो नहीं भाई अभी तुम्हें नहीं दिलाएंगे, बाद में दिलाने, या सिखाने की बात होती है, जैसे साइकिल की बात है, वाहन ही सिखाने की बात है, तो उसमें भी 10 तरीके की बातें की जाती थी बेटियों से कि अगर चलाओगी तो गिर जाओगी, हाथ पैर टूट जाएंगे तो शादी कौन करेगा, इस तरह की बातें अक्सर ही हुआ करती थी। तो जैसे आपने कहा है कि ना कहना, तो ये चीज बहुत जरूरी कि अगर आपका मन नहीं है, आप उसको समझ नहीं, अच्छा तो ना ही कर दीजिए उस चीज को।
0: ना
1: और
0: करने का एक फायदा भी होता है
1: जी
0: कि बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारे दुर्व्यवहार से आप बाहर आ जाते
1: बाहर
0: हैं।
1: आ जाते हैं।
0: बचपन में बड़े ये सिखाते हैं कि लड़कियों को नम्र होना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए, आदर करना चाहिए, और झिझक, मतलब एक तरह का झिझक रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि घर के ही लोग, घर के ही नाते रिश्तेदार, हमें भी बहुत कुछ मन में रह जाता है जब हम बोलने लगते हैं, लगता है
1: जी
0: कि अभी ये तो रह गया, थोड़ा सा और रह जाने देते हैं, एक
1: बिल्कुल
0: विराम यहां पर लेते हैं।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: और देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि गुड टच बैड टच वाला, कि घर में भी ऐसे माहौल होते हैं कि इस तरह से बच्चों को सामना करना पड़ता है और मन पर उनके गहरी छाप पड़ जाती है बड़े होने तक, तो इस चीज को ही कहना चाहिए कि उस समय भी बच्चों को अपने सिखा के रखे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कोई ऐसा कर रहा है तो तुरंत आकर के हमको बताओ, अपने अंदर वो डरो मत, उस बात को दबा के मत रखो, अभी
0: वो तो तभी होगा जब आत्मविश्वास पैदा होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो क्योंकि अगर हम संस्कारों के बोझ तले उन्हें दबा देंगे तो उन्हें कभी निडर वो हो ही नहीं सकती,
1: नहीं हर चीज को। इसीलिए तो है कि आप तुरंत ही बच्चों को बोलो, तुरंत ही आके बताओ, तो तब आप इस चीज से बच सकते हैं। और ममता जी देखिए, हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश इस विषय पर लिखकर भेजे हैं। एक लिखते हैं कि बेटी को सिर्फ संस्कारों की डोर में बांध देना काफी नहीं है, उसे वो पंख भी देने होंगे जिससे वो बिना डरे अपनी उड़ान भर सके। संस्कार उसे सही गलत का फर्क सिखाते हैं, पर आत्मविश्वास और निडरता उसे दुनिया का सामना करना सिखाती है, और ये दोनों उसे अपना रास्ता खुद बनाने का हौसला देती है। जब सिर्फ संभल कर रहो कहना छोड़कर तुम कर सकती हो कहना शुरू करते हैं, जब गिरने पर हाथ पकड़कर उठाने के साथ उसे खुद

0: संभलना भी सिखाते हैं, तभी वो बेटी किसी के मोहताज नहीं रहती। वो चूल्हा भी संभालेगी और सपना भी, रिश्ते भी निभाएगी और दुनिया में अपना नाम भी बनाएगी, क्योंकि हमने उसे सिर्फ संस्कारी नहीं मजबूत बनाया है।
1: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संस्कार जीवन का आधार होता है और आत्मविश्वास उनकी सुरक्षा का कवच है, और जब इसमें निडरता का संयोग बन जाए तो वो सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। बेटियां केवल लाज की मूर्तियां नहीं है, आंधियों से लड़ती हुई दुर्गा है। बेटियों में संस्कारों की छाव तो जरूरी है, लेकिन उड़ान भरने के लिए हौसलों का खुला आसमान देना भी जरूरी है। तो अब क्या, अब सुनते हैं ये गाना।

0: करने और अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास दीजिए। ऐसी शिक्षा दीजिए कि वे सम्मान करना भी जाने और अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना भी, क्योंकि संस्कारी बेटी परिवार की पहचान होती है और आत्मनिर्भर बेटी समाज की ताकत होती है।
1: और साथ में ये भी कहना है कि बेटियों के भीतर समानता के विचार को भी रोपें, समानता की समझ हो और उन्हें सिखाएं कि वे किसी से कम नहीं है। घर के काम से लेकर बाहर के फैसलों तक, बाहर के काम तक उन्हें बराबरी का हक दें और यही सोच उनमें विकसित करें कि अमूमन होता क्या है कि घरेलू कामकाज में तो महिलाओं को सिखाया जाता है, उन्हें पारंगत किया जाता है, लेकिन जो बाहर के काम है, बैंकिंग के काम है और पोस्ट ऑफिस जाना है या बाहर का जो भी काम है,
0: काम होता है,
1: तो वो उनसे उनको वंचित रखा जाता है। तो इसके लिए जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए, उनके फिटनेस का ख्याल रखा जाए, जूडो कराटे सिखाया जाए,
0: मार्शल आर्ट
1: और बैडमिंटन, मतलब खेल की ओर उन्हें उन्मुख किया जाए, तो अपने आप शारीरिक फिटनेस आ जाती है। और अगर शारीरिक फिटनेस है तो मन अपने आप स्वस्थ रहता है। अगर मन में कोई उनके
0: खुलकर सोच सकती है,
1: मन में अगर कोई उनके दुविधा चल रही है तो खुलकर उनसे पूछें, बात करें और उन्हें समझाएं कि हम सब परिवार वाले आपके साथ हैं। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या से जूझ रही है आपकी लड़की जिसे वो बताने में संकोच कर रही, क्योंकि आपने संस्कारों के बोझ तले उसे दबा डाला है, तो उसे बैठे घर वाले और ये नहीं कि कोने में ले जाके चुपके से बात करें, उसे सबके सामने बोलने की, बतियाने की, अपनी बात कहने की आदत डालें, तभी वो स्कूल में बोलेगी, क्लास में बोलेगी, तभी अपने दोस्तों मित्रों के सामने अपना मुंह।
0: एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सही बात है, आपने अपनी बच्ची को इतना अच्छा मौका दिया है कि वो जा रही है और बाहर जाके पढ़ के आएगी।
1: हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो बातें हैं बेटियों के लिए एक समझदार माँ ही कर सकती है। मैंने अपने तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है जो आज उन्हें काम आ रहा है। बड़े की नौकरी जॉब में चला गया है, बहुत टूट चुका था, साथ के कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, पर उसे मेरी सिखाई बातें याद आ रही थी कि जीवन में कितने भी संग्राम खड़े हो जाए, जान की नहीं सोचना, उसे बचा लेना और लड़ने की ताकत मन में रखना। ये दिन कुछ ही समय के लिए होते हैं, बाद में अपना वक्त आ जाता है। ये तो बहुत जरूरी बात इन्होंने लिखी है, थोड़ा असमंजस वाली स्थिति में इन्होंने लिखा है, लेकिन बात अपनी बात कह गए हैं ये
0: जी।
1: इनके कहने का तात्पर्य ये है कि हम कई बार संस्कारों के बोझ तले, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, इतना लाद देते हैं कि उनके अंदर ये बात ही, कोई मान लीजिए कि कोई ऐसी नौबत आती है जहां पर वो दो राहे पर हैं, चौराहे पर खड़े हैं, तो अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं कि उन्हें बड़ों का अदब करो, बड़े संस्कारी बनो, बड़ों से जबान मत लड़ाओ, बड़े अगर कुछ कहें तो खड़े हो जाओ उनको देखते। ये सब संस्कार सिखाना ठीक है, लेकिन उनसे आजकल जो जमाना है उनसे मित्रवत बर्ताव करें।
0: सही बात है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बेटियों के साथ भी अपना दोस्ताना व्यवहार रखें। और हमारे एक साथी लिखते हैं, निडर और संस्कारी बेटियों की परवरिश ही देश की तरक्की का मूल है। और साथी हमारे लिखते हैं कि जब बेटियां मानसिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं तो वे जीवन के हर कठिन निर्णय को खुद लेने में सक्षम बनती हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जरूरी है, बेटियां खुद अपने भविष्य और करियर के बारे में सही फैसले ले सकें, उन्हें पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में अपनी खुद की रक्षा और आवाज उठाना सीखें।
1: हमारी एक सखी, घरों में अभी भी ऐसी परंपरा चली आ रही है। और हमारे एक श्रोता ने और लिखा है कि हमारे घर में तो बेटी बेटे समान हैं और हम बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं करते हैं, आज जमाना बदल गया है। जी, आप कुछ कह रही थी मंजरी जी?
0: नहीं, हम आपकी बात सुन रहे थे। तो एक हमारी साथी कह रही हैं, लिखती हैं कि बच्ची किशोरी,
1: और हमारे एक श्रोता ने और लिखा है कि हमारे घर में तो बेटी बेटे समान हैं और हम बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं करते हैं, आज जमाना बदल गया है। जी, आप कुछ कह रही थी मंजरी जी?
0: नहीं, हम आपकी बात सुन रहे थे। तो एक हमारी साथी कह रही हैं, लिखती हैं कि बच्ची किशोरी कुमारी ये बेटियों की अवस्था।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 FM। हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे और स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:30 हो रहे हैं।

तो देखिए बेटियों को जो है ना ममता जी, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि पॉकेट मनी से लेकर सेविंग तक बेटियों को पैसों का महत्व और मैनेजमेंट करना उन्हें सिखाना बहुत जरूरी है, और उन्हें यह एहसास कराएं कि आर्थिक रूप से मजबूत होना भी असली स्वतंत्रता है। और इसके साथ साथ बेटियों को योग, मेडिटेशन और फिटनेस की भी आदत डालें, साथ ही उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी बताएं, समझाएं, ताकि वे तनाव या दबाव से आसानी से उबर सके। और हमारे साथी भी संदेश में लिख रहे हैं कि उन्हें अच्छे संस्कार के साथ अपने फैसले लेने, कठिन परिस्थितियों का सामना

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषी, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: NR प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
3: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
3: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आँखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है, आता है ना?
3: जी।
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
3: श्रोताओं आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
2: जी।
3: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
2: जी।
3: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
2: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
3: जी।
2: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
2: जी।
3: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित

0: से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
1: जी।
0: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना
1: जी।
0: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
1: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
0: जी।
1: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है, या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
1: जी।
0: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
1: जी।
0: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
1: इसका संबंध खान पान से है।
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
0: इसका संबंध खान पान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-44-0559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT Book PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: आशुतोष, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, पंडित बिरजू महाराज।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
0: पंडित बिरजू

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहाँ तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहाँ तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था।
2: क्या बात?
3: पांवों में बिजली है।
4: वाह,
3: भंगिमा तो
4: अद्भुत, प्रतिभा, अद्भुत, प्रभावशाली।

0: सुन
1: बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
2: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था, इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
1: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
2: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
3: प्रणाम पिताजी।
4: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है, आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
3: लेकिन क्या पिताजी?
4: बेटा कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
3: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
4: तो अपनी कला को

0: परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
1: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
2: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं।

0: विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और खासकर आपके घराने के बारे में, कैसे शुरुआत हुई?
1: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाइज अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो बहुत खील बताशा जेब में पड़ा और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ, फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था, तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
0: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
1: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज खत्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटी होगी खाऊंगा, पर मैं रियाज करूंगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज कहा था, अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा, तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूंगा घर की विद्या। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया, और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिरद कर लो, अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए, और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है, मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में, तुम्हारे क्यों

0: दूंगा ये मेरा नजराना है।
1: मैं
0: बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में, तुम्हारे क्यों।
2: तो सब्जी 3 मात्रा, पूरी 2 मात्रा, सब्जी पूरी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह वाह वाह, सब्जी पूरी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
3: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
4: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए। उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
5: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
4: जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
6: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
7: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
8: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
7: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
9: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
6: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
10: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
6: भगत सिंह
11: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
12: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।

0: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
1: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
2: कौन है?
3: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
2: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
3: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
2: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
3: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
2: ये इस शीशी में क्या है?
3: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
2: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
3: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन,

0: हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
1: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
2: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
0: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
3: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
0: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
1: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानंद सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
2: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
4: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार। उमंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4 बज रहे हैं और हाथ में चाय का कप लेकर, और बाहर मौसम तो ऐसा है कि अगर साथ में पकौड़ियां हो जाए तो क्या ही बात है। और फिलहाल इन खुशनुमा माहौल में शुरू करते हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4 बज रहे हैं और हाथ में चाय का कप लेकर, और बाहर मौसम तो ऐसा है कि अगर साथ में पकौड़ियां हो जाए तो क्या ही बात है। और फिलहाल इन खुशनुमा माहौल में शुरू करते हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और श्रोताओं स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं शाम के ठीक 4। लेकर हाजिर हैं हम प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हर दिन हम हाजिर होते हैं एक ऐसे विषय के साथ जो हम सबके जीवन से जुड़ा होता है। इसी कड़ी में आज का हमारा विषय है, विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। विषय है मुसीबत चिल्लाकर नहीं आती है, या मुसीबत चिल्लाकर नहीं बताती है। क्या आपके जीवन में भी अचानक कोई दुर्घटना हुई है? इन सब विषयों पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश ये कि अभी उत्तर भारत में मॉनसून सक्रिय है और भी पूरे देश में जहां तहां बारिश हो रही है, तो बारिश के जल का संरक्षण कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। एक पौधा अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर लगाइए। याद रखिए, जो धरती है, प्रकृति है, पृथ्वी है, वो संकट में है। ऐसी जगहों पर ऐसी ऐसी गर्मी पड़ रही है जहां कभी गर्मी नहीं पड़ा करती थी, ऐसी जगहों पर इतनी बारिश हो रही है जहां सूखा पड़ता था, और ऐसी जगहों पर बारिश पड़ी नहीं रही है जहां खूब बारिश होती थी, और कुछ जगहों पर ऐसी सर्दी पड़ रही है जहां सर्दी का नामो निशान नहीं था। यानी कि पूरी तरीके से मौसम के चक्र में परिवर्तन, ये परिवर्तन हम लोगों की ही करतूत है, हम लोगों की ही देन है। शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं कुछ कुछ स्टेप लेके, जिसमें सबसे प्रमुख स्टेप है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका आज से ही बहिष्कार करें। कसम खा लें जिस भी धर्म को, जिस भी देवता को आप मानते हैं, कि आज के बाद हम सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, या फिर रीयूज करेंगे। जैसे कि कुछ चीजों को लाने के लिए हमको जरूर उसकी जरूरत लग सकती है। ऐसा नहीं है कि पॉलिथिन नहीं थी तो हम लोगों का जीवन नहीं चलता था, बिल्कुल चलता था। और तब हम लोग झोले लेके जाया करते थे, कपड़े के थैले ले जाया करते थे, तेल लाना हो या लिक्विड लाना हो तो घर से कंटेनर साथ में लेके जाते थे। लेकिन अब जीवन को इतना ज़्यादा सरल बना दिया है कि सब कुछ पैकिंग में लेने की आदत हो गई है हमें, और जहाँ तहाँ फेंकने की आदत है। सोच के देखिए हमारे इस सभ्य समाज के बारे में, जहाँ हमें ये बताना पड़े, लिखना पड़े दीवारों पर कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है। अगर हमें ये लिखना पड़े तो हमारी इस समाज की पढ़ाई लिखाई और सेंस, जिसको कि सिविक सेंस कहते हैं, उसका क्या फायदा? इतना सेंस हम लोगों को स्वयं होना चाहिए कि जब हम अपने घर के टॉयलेट्स को साफ रख सकते हैं तो हम बाहर पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करते समय उन्हें साफ क्यों नहीं रखते? तो इन सारी चीजों का प्रण लीजिए। यही आकाशवाणी बरेली के समय समय पर प्रसारित संदेश है कि हम अपने समाज में एक स्वच्छता की अलख जगाएं, एक सिविक सेंस डेवलप करें, और कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है। खैर, ये सब हुई अब हमारे दिल की बात, जो निश्चित रूप से आपके दिलों तक जरूर

0: पहुंचेगी और पहुंच रही होगी, तो एक पौधे का संकल्प लेके आगे बढ़ें इस मॉनसून में। और अब और ज्यादा समय न लेते हुए आज के विषय पर बात करने के लिए देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कौन से श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता हैं और कहां से आपने हमें फोन किया है?
1: जी, मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी, हैदराबाद तेलंगाना से।
0: आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: सर जी, तेलंगाना में बारिश नहीं हो रही है सर।
0: अच्छा, नहीं हो रही है
1: जी सर। अब की बार बहुत परेशान है किसान, जानवर, पशु पक्षी। अच्छा। बारिश ही नहीं हुई है सर। हर साल काफी अच्छी बारिश होती थी, धान की फसल भी सूख रही है सर।
0: देखिए, अभी कार्यक्रम के शुरुआती दौर में हमने यही जो है बात की अपने श्रोताओं से, कि अपने मन की बात, कि भाई मौसम बदल रहा है, प्रकृति अपना जो है रूप बदल रही है, तो अब जरूरत है हमें वापस से अपनी मूल जड़ों की ओर लौटने का। तो प्लीज अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखें और प्रकृति के संरक्षण का एक एक आदमी संकल्प लेगा ना, एक एक आदमी, तब जाकर कहीं वर्षों में वो वापस लौटेगी। क्योंकि ये एक दिन में ऐसी नहीं हो गई है, एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है। ये हमारे वर्षों के प्रकृति का किए गए शोषण का ही नतीजा है।
1: जी सर।
0: ठीक है, तो आसिफ जी क्या करते हैं आप?
1: जी, सिलाई का काम करते हैं सर।
0: अच्छा, सिलाई का। तो आप बुनियादी तौर पे तेलंगाना के ही रहने वाले हैं, या आपकी हिंदी सुन के ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी हिंदी पट्टी क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति हैं?
1: जी सर, आपको बताना चाहता हूँ कि हम बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव राजा कटरा अहमदपुर के रहने वाले हैं सर
0: जी।
1: और यहाँ 5 साल से रह रहे हैं तेलंगाना में।
0: ओके।
1: पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब नहीं मिली, फिर इधर आके सिलाई किए, सीखने के बाद सिलाई करना स्टार्ट किए।
0: वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है अपने आत्मनिर्भर होना, अपने कौशल को निखारना और अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना। तो आसिफ जी, आज हमारे कार्यक्रम का जो मुद्दा है वो ये है कि मुसीबत चिल्लाकर नहीं आती, और क्या कभी आपके जीवन में अचानक से कोई दुर्घटना घटी है, तो अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर आज हमसे बात कीजिए।
1: सर, मेरे जीवन में एक घटना घटी है अभी पिछले साल में। 10 जून को घर को जा रहा था, अपने उत्तर प्रदेश बाराबंकी जा रहा था, तो मेरे रास्ते में बैग चोरी हो गया, उसमें फोन भी था। फिर बहुत प्रॉब्लम हुआ सर। सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ।
0: अच्छा, तो जब ऐसी घटना घटित हुई जो आपने सोचा ही नहीं, उस समय वो जो उपजी परिस्थितियां हैं उससे क्या आभास हुआ आपको? मतलब क्या, कितनी और समस्याएं आई? फोन चोरी हुआ, तो आजकल हम लोग कैश रखना कम कर देते हैं, तो कई बार टिकट्स भी आजकल ऑनलाइन बुक कर लेते हैं तो फोन में वो भी चली जाती हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं एक साथ अगर ऐसा हो जाए तो।
1: जी, वो बात तो आपकी सही है, टिकट भी ऑनलाइन बुक किया था और ऑनलाइन पेमेंट भी यूज करते हैं ना, तो वो तो फिर फोन करके दूसरे उससे फोन लेके मैं पूरा कंप्लेन किया सर। उसके बाद पूरा फोन लॉक करा के फिर मेरे को 1 महीने के बाद फोन तो मिल गया था सर, क्योंकि पुलिस वाले अच्छे थे, कंप्लेन किया तो उन्होंने मेरे को दे दिया, लेकिन बैग का और सामान नहीं मिला और कैश भी नहीं मिला।
0: देखिए, ये भी एक प्रगति है, ये बात बिल्कुल सही कि आज के दौर में चाहे कोई सा भी फोन हो, अगर खो जाता है, स्मार्टफोन हो और आपके पास उसके सारे रिसीप्ट्स और सारी चीजें हैं, तो वो रिकवर तो हो जाता है। तो बस यही है, सामान का अफसोस होता है, और आपने भी बहुत अच्छा काम किया कि तुरंत उसको लॉक करा दिया और आपने अपनी चीजों को, अपनी आपको फाइनेंशियली जो है वो सुरक्षित रखा उसका लॉस।
1: जी सर, तुरंत जीआरपी वालों को बोला मैं। हाँ, तो उन लोग हाँ कंप्लेन दर्ज किया, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके।
0: बहुत बहुत बहुत
1: सुंदर, मेरा फोन दिला दिया, 1 महीने के बाद मेरे को फोन मिला।
0: आप के द्वारा अगर वो लोग कहीं सुन रहे हो हमें आकाशवाणी बरेली को, तो आपकी जो है शुभकामनाएं वहां तक जरूर पहुंचे, ऐसी आशा। तो आप जब तेलंगाना रह गए तो यूपी तो आपके अंदर से नहीं गया, लेकिन क्या तेलंगाना आपके अंदर आ पाया है, मतलब चाहे भाषा में या वैसे?
1: जी, थोड़ा बहुत तो लैंग्वेज तो आता है तेलंगाना। अच्छा, का
0: तो
1: पर इधर का कल्चर बहुत सिंपल है, बहुत साधारण,
0: तो हम लोग
1: अच्छा भी हमको लगता है।
0: तो तेलंगाना में अगर हम लोग, मतलब आप वहाँ तमिल बोली जाती है या तेलुगु?
1: तेलुगु।
0: तो तेलुगु में अब जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, किसी से नमस्कार करते हैं, तो कुछ हो जाए जरा दो लाइनें?
1: जी सर, नमस्कार बोलो। एकड़ा उन्नारू। आप कैसे हो?
0: अच्छा,
1: मतलब चाला बाउंडी, आप अच्छे हैं, ऐसे बोलते हैं।
0: और उसके
1: जो संस्कृत के मॉडल जैसा रहता।
0: अच्छा, लगभग लगभग संस्कृत का कुछ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आसिफ जी, वैसे हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा,

0: और उम्मीद करते हैं कि अब आप जो है हमारे कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनते रहेंगे। और तो आज आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी सर, एक सॉन्ग है बॉर्डर मूवी का, संदेशे आते हैं, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: मुझे देश से बहुत प्रेम है।
0: बहुत
1: कल्चर अलग अलग हो सकता है स्टेट का, लेकिन
0: बिल्कुल
1: खूबसूरती जो इंडिया की है वो अदर कंट्री में नहीं है, क्योंकि हम अदर कंट्री भी गए, जो खूबसूरती इंडिया में है वो अदर कंट्री में मेरे को नहीं मिली सर।
0: बिल्कुल सही बात कही आसिफ जी। भारत जो है वो विविधता में एकता का देश है,
1: जी सर,
0: और विविध रंगों को सजाए हुए गुलदस्ता है, जहाँ खान पान, पहनावा ओढ़ावा, बोली चाली सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जो देश प्रेम की भावना है, जो सबको एक सूत्र में पिरो के रखने की भावना है, वो एक है कि एक यूपी के साधारण से गांव के रहने वाले व्यक्ति को तेलंगाना में इतना अपनापन मिलता है, कहते हैं कितने साधारण, तो ये एक सुंदर सी बात है, ये हमारे देश की खूबी है, खूबसूरती है,
1: जी,
0: जिसको
1: यही खूबी मेरे को आपके माध्यम से बयां किए।
0: बहुत सुंदर, आपने जो आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आज कार्यक्रम में कि मुसीबत चिल्लाकर नहीं आती। और क्या कभी आपके भी जीवन में अचानक से कोई दुर्घटना घटी है? तो आज देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कौन जुड़ रहे हैं इस विषय पे बात करने के लिए। हेलो
1: हेलो,
0: जी, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: मैं राम प्रसाद सर बोल रहा हूँ, वार्ड मेंबर सबका सोनी साहब जी।
0: राम प्रसाद जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया साहब है, कृपा मालिक के साहब बढ़िया है साहब।
0: तो बारिश का आनंद ले रहे हैं?
1: हाँ साहब, हाँ बारिश, रिमा जिम बारिश हो रही है साहब।
0: तो राम प्रसाद जी, आज कार्यक्रम में हमारा मुद्दा है कि मुसीबत चिल्लाकर नहीं आती,
1: हाँ
0: और
1: साहब, मुसीबत
0: क्या
1: मुसीबत चिल्ला के
0: आपके
1: नहीं आती।
0: जीवन में
1: हाँ साहब,
0: कभी कोई दुर्घटना अचानक से घटित हुई?
1: हाँ साहब, दुर्घटना अचानक से घट गई साहब। क्योंकि
0: जी
1: हम 8 बजे अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, 9 बजे तभी हमारी लड़की का अचानक तबियत खराब हो गई साहब, एकदम। हाँ,
0: हाँ
1: बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई साहब, काम धंधा सारा हमारा खत्म हो गया। हम उसके लिए प्रैक्टिस के लेकर के अपने अस्पताल के लिए आगे, वहाँ हमने उसको एडमिट कराया, मुसीबत एकदम ऐसी। और पास पैसा भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से साहब वहाँ पहुँच करके वहाँ अपने बातचीत करी, वहाँ लड़की को एडमिट करा के और उसके बाद पैसे का इंतजाम करके तब हम वहाँ अस्पताल पहुँचे साहब।
0: तो कुल मिलाकर के उस मुसीबत के पलों से आप धीमे धीमे ही सही बाहर निकले।
1: हाँ साहब, हाँ जब लड़की अपने फिर वक्त चल जाता है तो मगर
0: जी
1: खुद मुसीबत चिल्लाकर कभी नहीं कहते नहीं आती साहब।
0: बिल्कुल। तो बस ये है कि हमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि
1: सावधान रहना चाहिए।
0: है ना,
1: हाँ
0: अपनी
1: साहब,
0: बुरी परिस्थितियों के लिए, विकट परिस्थितियों के लिए थोड़ी बहुत जमा पूंजी, थोड़ा बहुत तैयार रहना चाहिए। और आजकल तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर ले सकते हैं तो लीजिए। वैसे सरकार की एक स्कीम भी है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना के तहत बोलते हैं इसको। तो जो लोग इसके लिए योग्य हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं, जो इस योजना के तहत नहीं आते हैं वो अपना जो है वो हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य बीमा भी करा सकते हैं। तक क्योंकि कभी किसी का कोई भरोसा नहीं, कभी कभी भी तबीयत खराब हो सकती है, कभी दुर्घटना हो
1: हाँ
0: सकती है।
1: साहब, हाँ
0: तो हमें
1: नहीं
0: थोड़ा
1: तबीयत
0: उस
1: खराब हो सकती
0: है
1: साहब,
0: ना
1: वहाँ तक कोई पता नहीं
0: कोई
1: साहब।
0: तो अपने तैयार रहना हमारी जिम्मेदारी है, तो इसको।
1: जिम्मेदारी है साहब, हाँ।
0: तो आज राम प्रसाद जी, आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गिरफ्तार का फिल्म गाना है, जो कि जाएगा सुख आएगा साहब।
0: हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और श्रोताओं, आपको बताते चलें कि आज का हमारा जो मुद्दा है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि आपके जीवन में क्या कभी कोई दुर्घटना अचानक से घटित हुई है, यानी कि मुसीबत चिल्लाकर नहीं आती, ये उसका लबोलुआब है। और आइए देखते हैं इस विषय पर बात करने के लिए कौन से श्रोता हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से आपने हमें फोन किया है?
1: मास्टर राधेश्याम बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से।
0: मां साहब नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: तो राधेश्याम जी, बारिश हो रही है अब आपके यहाँ?
1: बारिश रात में हुई थी, अभी तो धूप निकली हुई है।
0: ओके, तो इस दिनों हमने बात की बारिश की, बदलते मौसम चक्र की और सारी प्राकृतिक असंतुलन की। आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो यही है कि मुसीबत चिल्लाकर नहीं आती, और क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटी है अचानक से?
1: जी सर, मुसीबत मुझे तो है, कभी चिल्लाकर नहीं आती। एक बार क्या हुआ था
0: जी,
1: मैं बाइक पर जा रहा था अचानक ही
0: जी।
1: मैं जब भी निकलता हूँ हेलमेट लेके निकलता हूँ, लेकिन उस दिन मुझ पर हेलमेट नहीं था। तो क्या हुआ, गाड़ी भी काफी स्लो थी, तो उसमें एक सुअर ने टक्कर मार दी आगे से।
0: अरे
1: हाँ, तो मैं वहाँ पर गिर पड़ा और मुझे उठाने गया, चाचा लोगों ने मुझे उठाया। तब मैं काफी दिनों में, 10-15 दिनों में मैंने आराम किया, तब सही हो पाया। तो जी सर, मुसीबत कभी चिल्ला के नहीं आती, अकस्मात ही आ जाती है। तो फिर भी हम जो है बाइक स्लो चलाए टाइम फायदा है, ये स्लो चल रही थी गाड़ी हमारी, वैसे
0: तो थोड़ी कम चोट लगी। और वैसे भी
1: कम चोट लगी जी सर,
0: वैसे भी ये बात हमेशा से कहा जाता है
1: सर, बहुत शुक्र रहा कि सिर में चोट नहीं आई बिल्कुल।
0: तो यानी
1: हाथ हमारे टिक गए, तो हाथ सिर हमारा बच गया बिल्कुल।
0: तो
1: कैसी कर लिए हम बच गए।
0: इस बात से यही शिक्षा मिलती है कि भाई, हम आने वाली घटनाओं को नहीं देख सकते, आने वाले समय को नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, पूर्व तैयारी से उससे होने वाले नुकसान को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, है ना?
1: हाँ, जी सर, जी सर, ये तो है, जरूरी है।
0: तो पूर्व तैयारी कई तरीके की हो सकती है, जैसे ये कि भाई बाइक चलाती है जी,
1: मैं जब भी निकलता हूँ हेलमेट लेके निकलता हूँ, लेकिन उस दिन मुझ पे हेलमेट नहीं था। तो क्या हुआ, गाड़ी चल रही थी गाड़ी हमारी, वैसे
0: तो थोड़ी कम चोट लगी। और वैसे
1: कम चोट लगी।

0: वैसे भी ये बात हमेशा से कहा जाता है
1: जी सर, बहुत शुक्र रहा कि सिर में चोट नहीं आई बिल्कुल।
0: तो यानी
1: हाथ हमारे टिक गए तो भात सिर हमारा बच गया बिल्कुल।
0: तो
1: देख लिया कैसी कर लिया, हम बच गए।
0: तो इस बात से यही शिक्षा मिलती है कि भाई हम आने वाली घटनाओं को नहीं देख सकते, आने वाले समय को नहीं जान सकते, लेकिन हाँ पूर्व तैयारी से उससे होने वाले नुकसान को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, है ना?
1: हाँ, जी सर, जी सर, ये तो है, जरूरी है।
0: तो पूर्व तैयारी कई तरीके की हो सकती है, जैसे जैसे ये कि भाई बाइक चलाएं तो हेलमेट और सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें, यातायात के नियमों का पालन करें। अगर ये तो हुई मतलब ड्राइविंग और यातायात संबंधी बातें, हम अपनी कठिन समय के लिए अपनी कमाई से एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा बचत करते चलें, जो हमारे खराब समय में हमारे काम आएगा।
1: हाँ, या फिर ये तो बचत तो जरूरी है
0: ना, और मुश्किल वक्त में हमारे काम आता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी पूर्व तैयारियों से हम जो है वो
1: मुसीबत बच सकते हैं।
0: इन इन मुसीबत, अगर आती भी है कोई मुसीबत, तो उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तो माँ साहब, आज आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है सर प्यार मोहब्बत गोविंदा, और मंदाकिनी वाली फिल्म है सर वो, जिनकी कलम से हम तुम लिखेंगे।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, जिसमें आज का हमारा विषय है कि मुसीबत चिल्लाकर नहीं आती, क्या आपके जीवन में भी कोई दुर्घटना अचानक से घटी है। और इन सब विषयों पर बात करने के लिए आइए देखते हैं हमारे साथ कौन से श्रोता है फोन लाइन पर। हेलो
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से?
1: सर, टेकचंद अग्रवाल बोल रहा हूं, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: अग्रवाल साहब कैसे हैं?
1: सर हम बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: सब बढ़िया है। मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
1: मौसम तो सर बहुत सुहाना है, यहाँ पे तो 5-6 दिन से सर लगातार बारिश हो रही है।
0: अच्छा,
1: अभी रुक जाती है लेकिन बारिश लगातार हो ही रही है।
0: चलिए भाई, मानसून में बारिश का बहुत बेसब्री से इंतजार है, खास तौर से किसानों को।
1: जी
0: तो, अग्रवाल साहब क्या करते हैं आप?
1: सर मैं एक कहना चाहिए कि सीनियर सिटीजन हूँ और 6 साल हो गए सर मुझे अपने कार्य से मुक्त हुए।
0: अच्छा, किस सेवा में थे आप?
1: सर पहले मैं कोल इंडिया में था।
0: अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो टेकचंद अग्रवाल जी, आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो विषय ये है कि क्या आपके जीवन में भी अचानक से कोई दुर्घटना घटी है और जिसका लब्बोलुआब है कि मुसीबत चिल्लाकर नहीं आती।
1: जी सर, ये तो ऐसा हादसा सर कई बार होता है
0: जी,
1: और ये जो चीजें कही गई है कि भाई मुसीबत बोल करके नहीं आती, तो कई बार सर हम लोग देखते हैं कि जानते बूझते हुए भी हम लोग कई बार गलती करते हैं और ये गलती हमारे साथ कई बार हुई है। सर क्या हुआ है कि हम लोग जब माइंस में काम करते थे तो हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, तो उस ग्रुप में क्या हुआ सर कि एक बार हम लोग, हमारा जो एक SDL करके एक साइड टंप लोड करके एक मशीन होती है जो कोयले को भरती है और उसके बाद उसको टंप में डालती है, तो सर उसका ब्रेक डाउन था, उसको ठीक कर रहे थे
0: जी,
1: और उसके ऊपर का जो सर सपोर्ट था वो कहना चाहिए, मतलब सपोर्ट तो था लेकिन कहना चाहिए विश्वसनीय नहीं था।
0: भरोसा,
1: ये सपोर्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट है करके, लेकिन उसके बावजूद भी सर हम लोग उस पर काम कर रहे थे और करते समय सर वो सेफ्टी का तो पूरा ध्यान रखा गया था और उम्मीद भी नहीं थी इससे सर वो मतलब एकदम से जो है वो सपोर्ट बैठ जाएगा करके, तो वो क्या हुआ कि सर सपोर्ट मतलब अचानक बैठने लगा तो वो एक संकेत देता है, कोई भी दुर्घटना होती तो पहले एक संकेत आता है, कई चीजों में नहीं होता लेकिन माइंसों में अक्सर होता है। ऊपर से सर कुछ जो है वो बारीक बारीक कोयले के टुकड़े गिरने लगते हैं, तो उस समय सर हमको छोड़ छाड़ के अपना जो है सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, तो हम लोग कुछ लोग तो अलग हो सके सर लेकिन कुछ लोगों को मौका नहीं मिल पाया।
0: अच्छा,
1: तो हमारे दो साथी सर उसमें दब गए थे।
0: ओहो।
1: तो ईश्वर की इतना मातकाली की इतनी कृपा रही कि उनको थोड़ा सा लगा तो जरूर, चोट सपाट तो लगी लेकिन वो सुरक्षित फिर हम लोगों ने उनको बाद में निकाल लिए। तो ये सर हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी कहना चाहिए दुर्घटना थी जो जिसमें हमारी जान भी जा सकती थी, और ये सर कहना चाहिए एक तरह से हम लोग जानबूझ के ही वहाँ पर कार्य कर रहे थे क्योंकि वो मशीन को हम वहाँ से हटा नहीं पा रहे थे, ब्रेकडाउन ऐसा था
0: तो मतलब।
1: और
0: जी
1: जी
0: जी जी,
1: और सर कई बार ऐसा होता ना सर, जानते बूझते कि हमें मोटरसाइकिल चलाना है और हेलमेट पहनना जरूरी है, उसके बावजूद हम लोग नहीं पहनते।
0: तो कहने का मतलब यही है कि कई बार हम लोग मानवीय भूल यानी कि

0: अपनी गलतियों से चीजों को नजरअंदाज करते हैं, जिसके
1: जी
0: फलस्वरूप बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और
1: बिल्कुल
0: कुछ तो
1: बिल्कुल
0: समझिए, मान लीजिए ऐसी दैवीय आपदाएं हैं जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आज की डेट में हम देखें तो तकनीक ने, विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि
1: बिल्कुल सर
0: पूरी हद तक तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक कहीं बिजली गिरने की अगर संभावना है तो वहाँ पहले से अलर्ट आ जा रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है तो भी अलर्ट आ जा रहा है। तो
1: जी
0: मानसून कैसा रहेगा इस बारे में पहले से ही भविष्यवाणियाँ की जाने लगी हैं। समुद्र में हाई
1: जी
0: टाइड आने वाला है तो पहले से बता देते हैं। दैवीय आपदाएं, अब जैसे भूकंप, भूकंप की भी कई बार अब अलर्ट पहले से मिलने लगे हैं।
1: बिल्कुल सर
0: तो
1: बिल्कुल
0: बहुत सारी चीज़ें तो प्रगति की हैं हमने, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों पे अभी ओवरकम नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिलाकर के मुसीबत, दुर्घटना, इन सबसे बचने का अगर हम कहें, इनके प्रभाव को कम करने की बात जहाँ तक की है, तो पूर्व तैयारी एक ऐसी योजना है जिससे हम इनके होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं।
1: काम कर सकते हैं सर बिल्कुल।
0: तो अग्रवाल जी, आज आपने हमें फ़ोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सर मुझे सुनवाइए फिल्म है कुंवारा भाव,
0: कौन सा गीत?
1: वो गाने के बोले ये है घोड़ा मैं हूं गाड़ी।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो कार्यक्रम में आज का विषय है मुसीबत चिल्लाकर नहीं आती। और क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना अचानक घटित हुई है?
1: जी हाँ, हो सकी है इसमें।
0: जी बताइए।
1: जी हाँ सर, ऐसा है कि मैं एक बार नदी पार कर रहा था, तो नदी में मैं डूब के से बचिया। जब वहाँ कुछ ग्वालिया जानवर चरा रहे थे तो उनको मैंने आवाज दी, वो भाग कर आ गए, तो उन्होंने मुझे बचा लिया। वो ना होते तो मैं नदी में बह जाता।
0: अच्छा, तो वो नदी आप कैसे पार कर रहे थे?
1: नदी मेरे थैले में आम पड़े हुए थे, आम लाया था मैं बीच लिए और पैदल ही पार कर रहा था चल करके।
0: मतलब उसमें पानी कम रहता है?
1: पानी कम उस समय, यही समय चल रहा था। मैंने अपना पैंट उठाकर सिर से बांध लिया था, कच्चा पहनी हुआ था, बनियानी भीग गई। अब बह जा रहा था मैं, हाँ सीने तक जल आ गया था। अब पीछे को हटने के लिए आगे बढ़ गए, तेज जल चल रहा था, तो मैंने ग्वालियों को आवाज दी तो वो भाग कर दिया आए, तो उन्होंने झंडा पकड़ाया मुझे और मुझे निकाल दिया।
0: हाँ, तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भाई मुसीबत जो है वो चिल्ला के नहीं आती। तो इस तरीके की गंभीर जब परिस्थितियां हो या अनुकूल परिस्थितियां ना हो, तो जो है वो हमें इस तरीके के रिस्क नहीं लेने चाहिए, जोखिम नहीं लेना चाहिए। और सुरक्षित पुल के द्वारा या सड़क के द्वारा जहाँ से प्रॉपर मार्ग हो वहाँ से रास्तों को पार करें, है ना भाई? ये तो ठीक वैसी बात हो गई कि तैरना आता नहीं नदी में उतर गए, है ना?
1: तैरना नहीं जानते थे।
0: तो मुन्ना सिंह जी फोन किया आपने हमें, कौन सा गीत सुनेंगे? जी हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो सोता हूँ। आज का विषय है मुसीबत चिल्ला के नहीं आती। क्या आपके भी जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घटी है जो अचानक से घटी हो? तो देखते हैं इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कौन से श्रोता है। हेलो,
1: हाँ जी सर, अशफाक बोल रहे हैं।
0: तो अशफाक जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कनाडा से, साउथ कैंट से।
0: तो अशफाक जी क्या करते हैं?
1: मैं साउंड लाइट का काम करता हूँ।
0: अच्छा, लाइट मतलब बिजली।
1: अचानक साहब अभी थोड़े दिन, काफी दिन पहले
0: जी,
1: 1-1.5 साल हुआ तो करंट लग गया था अचानक मुझे।
0: अच्छा, कैसे?
1: हाँ ऐसा था साहब, दूसरे मकान से सप्लाई आ रही थी, मैं इधर काम कर रहा था। तो मेरा इधर से कानून दूसरे मकान से आर्थिंग आ गई थी।
0: अच्छा,
1: तो अचानक सर करंट लग गया था।
0: अच्छा,
1: तो ऐसी घटना घट गई।
0: अच्छा, तो अचानक। तो आप जो है वो बिजली का मतलब वायरिंग का काम करते हैं?
1: हाँ, वायरिंग का ही करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो उस जब आपको करंट लगा तो उस समय आपने करंट से बचने के या फिर मतलब जो उसके बचने के उपकरण होते हैं वो आपके पास नहीं थे?
1: सब थे सर। अब वो अचानक एक हाथ लग गया था, वो आदत पड़ जाती सर अपनी।
0: अच्छा,
1: थोड़ा बहुत तो करंट तो साफ शरीर में झेलना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: 30-40 साल हो गए, 60 साल की तो उम्र है सर।
0: हाँ, तो 30-40 साल मान लीजिए अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और इतने
1: 30 वर्ष हो गए सर।
0: तो एक बात बताइए कि ऐसा भी कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि भाई ऐसा लगा होगा कि हमने सप्लाई काट दी है, इस तार में लाइट नहीं आ रही और आ रही हो और आपने पकड़ लिया हो, छू लिया हो।
1: ऐसा उन्होंने मुझसे कहा कि सप्लाई का नाम पड़ोस से ले रखी थी उन्होंने, उधर की सप्लाई बंद नहीं करी थी। मैंने अपनी सप्लाई मेन बंद कर ली।
0: तो आपको लगा
1: बैकफीडिंग आ गई सर?
0: बिल्कुल सही बात है।
1: ऊपर वाला मालिक है।
0: तो इस जो है इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप भी इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हैं और अगर वहाँ थोड़ा बहुत भी इस तरीके का रिस्क है तो डबल चेक कर लें जरूर अपने टेस्टर से, अपनी चीजों
1: से। सर पूरा टेस्टर वगैरह मैं होल्डर बत्ती रखता हूँ साहब। अगर वो अचानक वाली बात थी सर, हो गई।
0: चलिए, करम है ऊपर वाले का कि कुछ ज्यादा विशेष क्षति नहीं हुई। तो अशफाक जी कौन सा गीत सुनेंगे?
1: अरे सर आप सुनवा दो जी, कलम दादा फिल्म का, अल्लाह करम करना, मौला पे करम करना।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो श्रोताओं, ट्यून किया आपने 100.4 FM, सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, जिसमें आज का विषय है मुसीबत चिल्ला के नहीं आती। क्या आपके भी जीवन में कभी कोई ऐसी दुर्घटना अचानक से घटी है? और देखते हैं इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कौन से श्रोता है। हेलो
1: जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता है और कहाँ से आपने हमें फोन किया?
1: सुल्तान से बात कर रहा हूँ, सब्जी मंडी बरेली से।
0: सुल्तान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: अंधेरों में सफर तय किया, उजाले नहीं देखे। अंधेरों में सफर तय किया, उजाले नहीं देखे। वो दिन भी गुजारे के निवाले नहीं देखे। तब देखते हैं सर पे मेरे ताज की रौनक, तब देखते हैं सर पे मेरे ताज की रौनक, लेकिन किसी ने मेरे पाँव में छाले नहीं देखे।
0: सुंदर, बिल्कुल सुंदर आपने बात कही और बड़ी ही रिलेवेंट बात कही कि भाई ऊंचाइयों पे पहुंचने पर सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उन ऊंचाइयों के पीछे की मेहनत को बहुत कम लोग ही देखते हैं या समझते हैं। तो सुल्तान जी,
1: बहुत सही गल है, क्योंकि अरे मुसीबत पता के नहीं आती है, और जब मुसीबत आती है तो एकदम आदमी को दिखता भी नहीं है, चाहे वो एक्सीडेंट के मामले में आए या बहुत सारी ऐसी अचानक भूकंप वगैरह आ जाता है, उसमें किसी को पता नहीं रहता।
0: सुल्तान जी, आपके जीवन में अभी या कभी भी ऐसा कोई घटना हो अचानक से आपने सोचा ही ना हो कि और घटित हो गई हो?
1: मेरे साथ सर ऐसी घटना होती है एक बार
0: जी,
1: जब मैं खेत पे था और मेरे पीछे एक जंगली जानवर पीछे पड़ा था, तो शायद उस दिन ऐसा लगा था कि जिंदगी ये बस यहीं तक थी।
0: अच्छा,
1: इसके बाद जो है जिंदगी खत्म हुई, लेकिन खैर मालिक का शुक्र हुआ कि आवाज लगाई, चाची लोग आए, तो खैर वो उसने मेरा पीछा थोड़ा सा कम किया।
0: अच्छा।
1: और दिन से हमला उस दिन बोल देता ना, तो शायद आज हम आपसे बात नहीं करते होते।
0: चलिए, खैर ऊपर वाले का कर्म है कि ऐसा नहीं हुआ। तो सुल्तान जी, आज आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सर आज माधुरी झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा।

श्रोताओं, आज के विषय के साथ हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया है और विषय तो आपको पता ही है कि मुसीबत चिल्ला कर नहीं आती। और आइए देखते हैं हमारे कौन कौन से श्रोताओं ने कमेंट किया है। आप हैं विष्णु मिस्किन, रितिका आरोही वाणी और आपके सभी साथी सोलापुर महाराष्ट्र से, आपने अपनी बात कही है। देखिए श्रोताओं, हम आपकी बात जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बात हम कहेंगे, आप चाहे दो लाइन लिखिए उस विषय के संबंध में, बोल के, लिख के, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आपको लिखना है, लेकिन वो बात अपने मन की लिखिए। AI से, गूगल से मजा नहीं आता, क्योंकि जो आपकी बात दिल से निकलेगी ना, वो निश्चित रूप से दिलों तक पहुंचेगी। और ये इस तरीके से AI से लिखने से आप लिख तो देंगे बहुत सारा, 10-20 लाइन, एक एक पन्ने भर देंगे, लेकिन वो मजा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। फिलहाल विष्णु जी कहते हैं, मुसीबत दरवाजा खटखटा के नहीं आती, एक साधारण से पल को अचानक से दुर्घटना में बदल देती है। इसी तरह दुर्घटना होती है और भाई हमें सतर्क रहना चाहिए और ये सारी चीज़ें अपने आप को उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए। और जो है वाक्तरिया, भेरूलाल वाक्तरिया जी का मैसेज है उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश से, और आप कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, मुसीबत अचानक आती है जिसका हमें पहले से ज्ञान नहीं होता। कहा जाता है कि मुसीबत घोड़े की चाल से आती है और धीरे धीरे कछुए की चाल से जाती है। 2018 में भैंस का इलाज करवाने के लिए मैं भैंस की रस्सी पकड़कर खड़ा था, तभी अचानक से भैंस पलट गई और एक पेड़ के बीच में मुझे दबोच लिया, जिससे मेरी पसलियां टूट गई। अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और 2-3 महीने बाद मैं ठीक हो पाया। तो भेरूलाल जी, आपने इतनी सुंदर तरीके से अपनी बात को लिखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही चाहते हैं कि अपने जीवन से जुड़ी बातें आप हमसे साझा कीजिए, ना कि उसको गूगल से कॉपी पेस्ट करके। तो आप उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, हम ये बात हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। और बिल्कुल सही बात है, मुसीबत जो है वो घोड़े की चाल से आती है और कछुए की चाल से। भैरव पाल और आपके सभी साथी, आप कहते हैं मुसीबत दरवाज़ा कभी खटखटाकर नहीं आती, सब कुछ सामान्य होता और अचानक मुसीबत का दरवाज़ा खुल जाता है, ज़रा हमें सोचने का भी मौका नहीं मिलता। तो क्या आपने सोचा है कभी कि सड़क पर चलते समय हमारी एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है? भाई मोबाइल का प्रयोग ना करें, हेलमेट का प्रयोग करें। ये सारी बातों के साथ अपने अपनी बातें हम तक लिख भेजी हैं, धन्यवाद। शारुन अंसारी कहते हैं हररपुर मटकली से कि मुसीबत चिल्ला कर नहीं आती और हमें जो है वो तैयार रहना चाहिए अचानक से सामान्य हालत हमें किसी भी माध्यम से। तो बिल्कुल सही बात है। फिलहाल आप सभी के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को सुनवाते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ अब यहीं संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको बेहतर लगा होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला bareilly@gmail.com और हमारा पता तो आपको पता ही है, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 243001। और श्रोताओं, अब प्रोग्राम से मुझे यानी ब्रजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण के तहत आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, आपसे कुछ देर बाद यानी शाम को 5:05 पर सुनेंगे भजन संध्या। कार्यक्रम नारी संसार आप सुनेंगे नूर फातिमा के साथ शाम को 5:30 पर, जिसमें होगी चर्चा घरेलू कचरे का स्मार्ट प्रबंधन और प्लास्टिक कम करने की छोटी शुरुआत करें। साथ ही होंगी किचन टिप्स और होगा सेगमेंट इनसे मिलिए। शाम को 6:00 प्रज्ञा पाठक के साथ सुनिएगा युववाणी, जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है आज और आपकी पसंद सेगमेंट। 6:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज की बात के अंतर्गत आज होगी चर्चा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर, होगा सेगमेंट हेलो किसान और होगा आज का मौसम, आज की नसीहत, कृषि समाचार और आज का बाजार भाव। ये कार्यक्रम सुनेंगे आप रविंद्र कुमार और शमा सक्सेना के साथ। शाम को 7:00 कार्यक्रम ग्राम जगत में होगी चर्चा फसल अवशेष प्रबंधन पर और होगी वार्ता पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी, और वार्ताकार हैं प्रियंका तिवारी। श्रोताओं, शाम को 7:31 पर सुन सकेंगे आप प्रोग्राम रेडियो हेल्पलाइन, जिसमें आज हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। विषय है क्या करें जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु न रोए, शंकाएं और समाधान। और रात्रि 8:00 से रिले करेंगे आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो श्रोताओं, ये तो था विवरण हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का। अब विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। श्रोताओं, सुबह 8:15 पर सुनना ना भूलिएगा प्रोग्राम यंग बरेली। 8:45 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम लोकगीतों का। सुबह 9:00 रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। लेकर हाजिर होंगे आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद सुबह 10:00। 11:00 समय रहेगा सब रंग का। एफएम रेनबो के प्रोग्राम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 11:30 पर। आपका अपना फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का प्रोग्राम अनुरोध

गीत लेकर हाजिर होंगे दोपहर 1 बजे। कार्यक्रम रसरंग का समय रहेगा दोपहर 2 बजे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन सकेंगे 3:30 पर। कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ लेकर हाजिर होंगे शाम को 4 बजे। भजन संध्या का आनंद लीजिएगा शाम को 5:05 पर। कार्यक्रम नारी संसार में शिप्रा श्रीवास्तव के साथ आप सुनेंगे चर्चा फोटोग्राफी दिवस पर, और होगी चर्चा एआई और नई स्किल्स विषय पर। साथ ही होंगी पेरेंटिंग टिप्स और होगा सेगमेंट इनसे मिलिए। ये कार्यक्रम सुनिएगा आप शाम को 5:30 पर। शाम को 6 बजे लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम युवाणी, जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है, आज प्यार की धुन, और होगा सेगमेंट चक्रव्यूह। कार्यक्रम ग्राम जगत में होगी चर्चा खेती के साथ मछली पालन, और होंगे लोकगीत, और ये कार्यक्रम सुनेंगे आप शाम को 6:30 पर। और शाम को 7:31 पर लेकर हाजिर होंगे प्रोग्राम रेडियो हेल्पलाइन, विषय है हार्ट अटैक के मरीज में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कब और क्यों, शंकाएं व समाधान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष संखदार, और ये कार्यक्रम सुनिए आप शाम को 7:31 पर। रात्रि 8 बजे से सुन सकेंगे आप आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो श्रोताओं, ये तो था विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भजन संध्या।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 FM पर, और स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो गए हैं। स्टूडियो में दाखिल हो गई हैं नूर फातिमा, कार्यक्रम नारी संसार लेके। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम नारी संसार।

सा सलाम उन तमाम सखियों को जो इस वक्त अपने अपने घरों में अपने काम के बीच अपनी चाय की प्याली के साथ या शायद रास्ते में सुन रही हैं। ये नारी संसार यानी आपका अपना संसार जहां आपकी आवाज़ आपकी राय बहुत मायने रखती है। सखियों होता क्या है, सुबह आपने चाय बनाई, सब्जियां काटी, नाश्ता तैयार किया, बच्चों के टिफिन बनाए, घर की सफाई की और देखते ही देखते एक कोने में सब्जियों के छिलके, दूसरे में कागज, कहीं प्लास्टिक की पैकिंग, कहीं बोतलें और तमाम तरह की चीजें इधर उधर बिखरी मिल जाती हैं। समझ ही नहीं आता आखिर इसका करें तो क्या करें। हम अक्सर सोचते हैं अरे कचरा ही तो है, घर से बाहर चला गया, बात खत्म। लेकिन सखियों कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमारा घर साफ होने के बाद जो कचरा बाहर जाता है वो गायब नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी ही धरती, हमारी ही हवा, हमारे ही पानी और आखिरकार हमारी ही जिंदगी का हिस्सा बनता है। इसलिए सखियों हमेशा घरेलू कचरे का स्मार्ट प्रबंधन करें, कम कचरा करें, सही कचरा अलग करें जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है उसे इस्तेमाल करें, और जो रिसाइकल हो सकता है उसे रिसाइकल तक पहुँचाएँ, क्योंकि स्मार्ट घर वही होता है और स्मार्ट सखी वही होती है जो कचरे को समझदारी से संभालती है और अपने घर को स्मार्ट बनाती है और अपने प्रोग्राम को भी थोड़ा और स्मार्ट बनाते हैं। और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत जिसे सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारस मनी, पुष्पेंद्र मनी और नोखे लाल की तरफ से। इसी गीत को सुनना चाहा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और मेरा जहानी। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

रोज सुबह की पहली किरण के साथ जैसे ही हमारी आंख खुलती है, शुरू हो जाती है एक नई दौड़। दफ्तर पहुंचना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर के काम निपटाने हैं, और कोशिश बस यही रहती है कि घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में हम किसी तरह पूरा कर लें। हमारी जिंदगी में स्पीड इतनी बढ़ गई है कि अब हर चीज में हमें आसानी चाहिए, कुछ ऐसा जिसे इस्तेमाल करें और बस फेंक दें। चाय कॉफी के लिए डिस्पोजेबल कप, खाने के लिए डिस्पोजेबल प्लेट, शॉपिंग के लिए प्लास्टिक बैग, और तो और अगर घर में मेहमान आ जाएं तो कई बार अपनी क्रॉकरी निकालने और उसे धोने की मेहनत से बचने के लिए हम डिस्पोजेबल बर्तनों का सहारा ले लेते हैं। यानी हमारी छोटी सी सहूलियत के पीछे कहीं ना कहीं प्लास्टिक का एक बड़ा हिस्सा जुड़ता जा रहा है। लेकिन सखियों जरा सोचिए, जिस चीज को हम इस्तेमाल करके अपनी जिम्मेदारी से बाहर समझ लेते हैं, क्या वाकई उसका सफर वहीं खत्म हो जाता है? नहीं, वो प्लास्टिक हमारे घर से निकलकर कूड़े के ढेर तक पहुंचता है, वहां से हमारी मिट्टी, पानी और हवा पर इसका असर पड़ता है, और धीरे धीरे हमारी उसी खूबसूरत दुनिया को नुकसान पहुंचता है जिसे हम आने वाली नस्लों के लिए महफूज छोड़ना चाहते हैं। सही सवाल प्लास्टिक का होना नहीं है, सवाल है हमारी उस आदत का जिसने अपनी आसानी के लिए हम अपने पूरे ही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

0: सखियो, आपको पता है कि हम इनसे मिलिए सेगमेंट में पहुंचते हैं अपनी सखियों के बीच और उनसे बात करते हैं। और आज हमारी मुलाकात हुई काजल खान जी से, जो घर परिवार की जिम्मेदारियां तो निभाती ही हैं, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही हैं, और वो समाज के मुद्दों को गहराई से देखती हैं और उसे समझने की कोशिश भी करती हैं। आदाब काजल जी, कैसी
1: आदाब मैम, आप
0: हैं?
1: जी? मैं बहुत ठीक हूँ।
0: तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज हमारी लाइफ में प्लास्टिक इतना कॉमन हो चुका है कि हर जगह नजर आता है, क्या आपको लगता है कि हम अपनी सहूलियत के लिए और टाइम बचाने के चक्कर में हमने प्लास्टिक को अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया?
1: जी हाँ, मुझे लगता है कि हमने सुविधा के हिसाब से और टाइम सेविंग के हिसाब से हमने प्लास्टिक को अपनी जरूरत से ज्यादा, कहीं ज्यादा, अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है। एक छोटा सा छोटा काम भी प्लास्टिक के यूज के बिना अधूरा है।
0: ना बड़ी आसानी से बोल देते हैं, अरे एक प्लास्टिक बैग ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर यही सोच करोड़ों लोगों की हो जाए तो क्या इसका इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा नहीं हो जाता है?
1: अगर हम यही सोचें कि अगर एक प्लास्टिक ही तो है, इससे क्या ही हो जाएगा, इस चीज का इम्पैक्ट हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि भारत की जनसंख्या अगर देखी जाए तो 140 करोड़ है। अगर सिर्फ एक दिन के लिए ही देखा जाए, अगर एक व्यक्ति एक प्लास्टिक बैग ही एक दिन यूज करता है, तब भी हम 140 करोड़ बैग एक दिन में यूज करते हैं, जो हम वापस से पानी में डाल देते हैं, या वो एक बिना रीयूज किए या बिना रिड्यूस किए हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो काफी हमारे एनवायरनमेंट को असर डालता है। जैसे माइक्रोप्लास्टिक के रूप में हो, या चाहे साथ उसे कोई एक जानवर खा ले, या वो एक गलने के लिए भी उसे 500 साल चाहिए होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपनी ही जमीन या अपने ही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं अपनी ही कन्वीनियंस के लिए।
0: काजल जी, आप घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छी तरह निभाती हैं, साथ ही आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही हैं, तो आपकी रूटीन काफी बिजी रहती होगी। ऐसे में अगर कोई कहे कि प्लास्टिक कम करना अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगी?
1: प्लास्टिक कम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं, केवल सिर्फ प्लानिंग एंड मोटिव चाहिए होगा। प्लानिंग ऐसी कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिर हमें एक अपने पास स्टेनलेस स्टील की बॉटल या रीयूजेबल बॉटल रख लेनी चाहिए, जिससे हम वन टाइम यूज वाली बॉटल को ना खरीदें। हमें पानी अपना अच्छा सही मिल जाता है, बट हम उस प्लास्टिक को उतना यूज ना करें जितना हम कर रहे हैं इस समय तक। तो अगर हम कपड़े का थैला अगर अपने पास रखते हैं तो हम इससे काफी हद तक प्लास्टिक से बच सकते हैं।
0: प्लास्टिक का इस्तेमाल अक्सर इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो सबसे इजी होता है, बहुत ही आसान ऑप्शन लगता है। कौन सी ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिन्हें हम चेंज करके अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक को कम कर सकते हैं?
1: बाहर किसी भी कैफे या किसी भी कैंटीन में गए, हमें वहां पर स्ट्रॉ मिल रही है, प्लास्टिक की है। एक उसका रैपर भी प्लास्टिक का है, ऊपर से स्ट्रॉ भी प्लास्टिक की है। तो हमें देखना चाहिए कि हम अपने पास एक मेटल की स्ट्रॉ रखें या सिलिकॉन की स्ट्रॉ रखें, जो काफी कन्वीनियंट भी रहती है और हाइजीन भी रखती है। बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज होने वाली जगह किचन होती है हमारी, तो हमें देखना चाहिए कि हम जो है प्लास्टिक को रिप्लेस करें। जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे करें। जैसे हम ग्लास के जार्स को यूज करें, हम स्टेनलेस स्टील को यूज करें, ताकि हम फूड को ज्यादा टाइम खराब होने से बचा सकें। रिड्यूस, रियूज एंड रिसाइकल पाथ पर हमें प्लास्टिक को यूज करना चाहिए।
0: काजल जी, हमारी सखिया जो इस वक्त सुन रही हैं, तो अगर वो चाहती हैं कि वो आज से ही फैसला करें कि वो प्लास्टिक को अपने इस्तेमाल में बहुत कम लाएंगी, तो आपके हिसाब से शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? किचन से, शॉपिंग से, या अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी हैबिट्स से?
1: एक तरीके से डेली हैबिट्स और शॉपिंग से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक घर में लाएंगे नहीं तो फिर वो किचन तक नहीं जाएगी। तो मेरा कहना है कि अगर हम डेली यूज से ही स्टार्ट करें तभी ज्यादा बेहतर है।
0: कभी कभी हमारी क्या ये भी एक सवाल करती हैं कि हमारे अकेले के प्लास्टिक कम करने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या उनकी ये सोच सही है या उनका ये

0: सोचना सही है।
1: जी, मुझे लगता है कि अगर हम किसी चीज की मुहिम उठाते हैं, अगर हम अकेले भी होते हैं तो कारवां बनता जाता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, इंडिविजुअली अगर हम कोई चीज शुरू करेंगे तो उससे काफी फर्क पड़ेगा।
0: क्या आपके लाइफ में कोई ऐसी हैबिट रही है, यानी प्लास्टिक हैबिट ने अगर कोशिश की है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
1: जैसे अगर मैं घर से बाहर जाऊं तो मेरे पास एक बैग होना चाहिए ताकि मैं अगर कोई चीज लेती हूँ तो मैं प्लास्टिक को वहां पर मना कर सकूं अगर उनके पास कॉटन या कपड़े का बैग नहीं है। जैसे कि मैं शॉपिंग के लिए गई, मुझे वहां पर वो प्लास्टिक का बैग दे रहे हैं ताकि मैं शॉपिंग में मैंने जो भी सामान लिया वो प्लास्टिक के बैग में दे रहे हैं तो मैं उन्हें ना कर सकूं।
0: काजल जी, अगर आपको सखियों से सिर्फ एक बात कहना हो कि आज से प्लास्टिक कम करने के लिए बस ये काम शुरू कर दीजिए, तो आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं ये कहना चाहूंगी कि एक प्लानिंग एंड मोटिव के साथ में प्लास्टिक को कम यूज कीजिए। एक प्लान कीजिए, एक मोटिव बनाइए कि नहीं, हमें प्लास्टिक कम करना है। जो आने वाला कल है वो सभी के लिए हम बेहतरीन बना सकें। तो आज से ही छोटे छोटे कदम लेना शुरू कीजिए। बड़ा कदम एक साथ लेंगे वो ठीक नहीं है, छोटे छोटे कदम लीजिए ताकि हम कल अच्छा कर सकें अपने फैमिली के लिए, अपनी नई जनरेशन के लिए, ताकि हम उन्हें वो गिफ्ट दे सकें जो हमें मिले हैं अपनी जनरेशन से। आप जो भी प्लास्टिक आपको मिले वो आप गीले कचरे में ना डालें, जी नहीं, उसको रिसाइकल करना और डिकम्पोज करना दोनों ही मुश्किल हो जाती है। जी नहीं, आप उस बॉटल को साफ कचरे में डालें ताकि वो रीयूज हो सके या रिड्यूज हो सके या रिसाइकल हो सके। हमें 3 R's पर बिलीव करना चाहिए कि हम कोई भी चीज रिड्यूस भी की जा सकती है। अगर हम देखें तो प्लास्टिक डिकम्पोज होने में काफी टाइम लगता है और अगर औसतन देखा जाए तो 500 से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल एक पर्सन यूज करता है। तो हमें इस चीज पर भी कमी करनी चाहिए। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करने लगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जो कि जैसे बैम्बू के बने हुए टूथ ब्रश आते हैं वो अगर हम इस्तेमाल करें, एक छोटा सा कदम बट हमारे लिए, हमारे आने वाले कल के लिए एक बेहतरीन साबित होगा।
0: काजल जी से हमारी बातचीत हुई, आपने भी सुनी, और उन्होंने कितनी अच्छी तरह से हमें प्लास्टिक का यूज ना करने के बारे में समझाया। प्लास्टिक हमारी जिंदगी का हिस्सा जरूर बन गई है, लेकिन उसे अपनी मजबूरी बनाना जरूरी नहीं है। हम शॉपिंग पर जाते हैं, एक रीयूजेबल बैग साथ रख सकते हैं। बाजार में अगर जाते हैं तो डिस्पोजेबल के बजाय रीयूजेबल चीजों को हम प्रिफरेंस दे सकते हैं, और आने वाली पीढ़ियों को हम सिर्फ अच्छी बातें और खूबसूरत तस्वीरें ही नहीं देना चाहते, हम उन्हें एक ऐसी दुनिया भी देना चाहते हैं जहाँ हवा साफ हो, पानी महफूज हो और वहाँ की मिट्टी भी जिंदा हो। इसलिए आज से हम एक छोटी सी आदत बदलते हैं, यूज लेस रीयूज मोर, और प्लास्टिक को कहें थोड़ा सा नो, क्योंकि हमारी छोटी सी कोशिश किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है और हमारी आज की समझदारी आने वाले कल की हिफाजत है। तो सखियो, प्लास्टिक से बचाव को सिर्फ एक कैंपेन नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की अपनी एक अच्छी आदत बनाएं। और काजल खान जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारी सखियों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते चलते हम आपसे पूछना चाहेंगे आपकी पसंद का एक गीत।
1: किसी की मुस्कुराहट

सखियों, बरसात का मौसम है और ऐसे में सर्दी खांसी जुकाम, जिससे देखो कोई ना कोई इससे पीड़ित है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और जाना है अपने किचन में और पीना है गर्मा गर्म चाय। तो करना क्या है कि अगर गले में खराश हो तो अदरक वाली गर्म चाय आपको सुकून दे सकती है। अगर हल्की खांसी या गले में हल्की तकलीफ हो तो अदरक और शहद का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं। तो सखियो, आप आजमाइए इन टोटकों को और साथ ही हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का एक गीत, जिसे सुनने की फरमाइश हमें भेजी है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा स्वामी ने, कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर, बरेली से। अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति मौर्या ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

सखियो, हमने आपसे पूछा था एक सवाल कि भारत की पहली महिला कौन थी जिन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हमारी बहनों ने और साथ ही हमारे श्रोता भाइयों ने इसके जवाब भेजे हैं। विष्णु टेलर जी लिखते हैं कि सही जवाब है नीरजा भनोट। नीरजा भनोट को 1987 में मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। वो अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला थी और उस समय इनकी सब ये सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता भी थी। उन्होंने 5 सितंबर 1986 को पैन एम फ्लाइट 73 के अपहरण के दौरान यात्रियों की जान बचाने में असाधारण साहस दिखाया और इसी दौरान उनका निधन हुआ था। और साथ ही हमारे पास जवाब आया है, इनके और भी साथी हैं जिनके नाम है विष्णु मिस्कीन, रीतिका आरोही, वाणी मिस्कीन और इनका पूरा परिवार।

0: चार डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से सही जवाब हमारे पास भेजा है श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्रानी माया साहू ने, राजवीर सिंह भनोट ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा जी ने, दंतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा ने, और इसी सवाल का सही जवाब भेजा है प्रवीण चौहान जी ने, अनोखे लाल जी ने, मारहरा एटा दरवाज़ा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवेज सुहेल और सुहेल हसन अब्बासी ने।
1: सबसे बड़ा सच

आज के नारी संसार का सफर बस यहीं तक। उम्मीद है हमारी सखियों को हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर आप उसमें कुछ बदलाव चाहती हैं, कुछ चेंज चाहती हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट कर सकती हैं, और आप हमारे प्रोग्राम को न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकती हैं, और आप अपने पत्रों के माध्यम से भी अपनी फरमाइश और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकती हैं। अब कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। हम चाहते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम नारी संसार। स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 6 बज रहे हैं और युवा साथी अब उत्साहित होंगे अपना प्रोग्राम युवाणी सुनने के लिए, क्योंकि स्टूडियो में दाखिल हो गई हैं अब प्रज्ञा पाठक कार्यक्रम युवाणी लेकर। आइए सुनते हैं प्रोग्राम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी दोस्त प्रज्ञा पाठक के साथ। दोस्तों, आज इस खूबसूरत शाम में आप सभी का दिल से स्वागत है। ज़रा बाहर देखिए, क्या सुहाना मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कुदरत ने आज खुद मुस्कुराने की वजह दी है। ऐसे सुहानी मौसम में दिल के जज्बात जाग जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि हवाओं में एक अजीब सा नशा छाया है, लगता है कुदरत ने खुशियों का पैगाम भेजा है। ऐ जिंदगी, थोड़ा ठहर जा, मुस्कुरा तो सही, आज मौसम ने दोस्तों से मिलने का बहाना भेजा है। लेकिन दोस्तों, सुहाना मौसम सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम थोड़ा ठहर जाएं तो ज़िंदगी कितनी हसीन है। दोस्तों, बरसात सिर्फ पानी की बूंदें नहीं, ये आसमान से धरती का मिलन है। ये हर एक युवा के दिल में यादें जगा देती है। ये बारिश की बूंदें, ये मिट्टी की खुशबू, दिल को एक अनजाना सा सुकून दे जाती है। लगता है धुल गई सारी फीकी यादें, नई यादों की एक दास्तां दे जाती है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: वेलकम बैक दोस्तों, ये बरसात हमें सिर्फ शायराना होने के लिए नहीं, ये बरसात हमें सिखाती है कि चाहे आसमान कितने भी काले बादल क्यों ना हो, उनके पीछे एक खूबसूरत बहार छुपी होती है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही है दोस्तों। आज का युवा यानी आप और मैं, हमें हमारे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, करियर की चिंता है और सबसे आगे निकलने की हो, पर याद रखिए मेहनत और कोशिश ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आसमान में बादल आते जाते रहेंगे पर आपको रुकना नहीं है, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। आपकी पहचान इस बात से नहीं कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस बात से है आप गिरने के बाद कितनी तेज खड़े हुए।
5: चलिए युवा साथियों, आपके बीच में ऐसे ही किसी न किसी खास व्यक्तित्व को आपके बीच में लेकर आते हैं। आज हमारे बीच में जुड़े हैं बहुत ही खास, आप हमारे श्रोताओं को अपना नाम बता दीजिए।
6: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोनी कश्यप है, मैं MBBS MD स्किन किया हुआ है मैंने, जिसमें बोलते हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ।
5: कार्यक्रम में आपका स्वागत है मोनी जी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे बीच डॉक्टर ही हैं। बहुत सारे युवाओं के मन में ये, कई सारे लोग इस लाइन में जाना चाहते हैं पर कई बार हायर स्टडी की तरफ नहीं मुड़ पाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, आपको पता है, फाइनेंशियली भी उन्हें सोचना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है उनके पास, क्योंकि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। आज हमारे बीच में आप जुड़ी हैं, मैं आपसे बस यही जानना चाहती हूँ कि हमारा जितना भी यूथ है वो अगर इस लाइन में जाना चाहता है वो कैसे शुरुआत कर सकता है अपनी। बहुत छोटे छोटे लोगों का सपना होता है, अब बच्चों से पूछिए वो कहेंगे हाँ क्या बनना है, किसी को इंजीनियर बनना होता है तो किसी को डॉक्टर बनना होता है।
6: देखिए, इसकी शुरुआत तो हम बचपन से ही, मतलब किसी ना किसी बच्चे का सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है बड़े होकर, कोई बोलता है मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो मेरा भी

0: सपना यही था कि मुझे डॉक्टर बनना था, क्योंकि मेरे पापा हमेशा से ही पॉलिटिक्स में रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, तो उनको हमेशा से देखा है कि उन्होंने लोगों की सेवा करी है, वो हमेशा आगे रहे हैं। तो मेरा एक सपना था कि मुझे भी लोगों की सेवा करनी है। तो मेरा
1: जी
0: एक मोटिव था कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा है कि आप लोगों के दुख को समझते हैं। जब आपके पास एक मरीज आता है तो वो जब बोलता है, जब आपको ठीक उसको बीमारी जब आप बताता है और जब आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है कि हाँ, हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। तो फिर
1: जी
0: डॉक्टरी अगर किसी को करनी है तो इसके लिए आपको कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो 10th से ही, जैसे 10th बोर्ड दिया आपने, 10th
1: जी
0: बोर्ड के बाद आपको 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। उसके बाद कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो 11th से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या ड्यूरिंग 11th 12th स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको एक नीट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है
1: जी
0: जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है। उसको जब आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, और आपका जब मेरिट आता है तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आपको
1: जी
0: कॉलेज सेलेक्ट। और प्रिपरेशन का ये है कि एक्चुअली कंपटीशन तो बहुत हाई है आजकल के लेवल पे, लेकिन
1: जी
0: इसमें डरने की कोई बात होती
1: जी
0: नहीं है। अगर किसी आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर एक जज्बा है कि आपको ये करना है, तो आप कोई भी कंपटीशन कम नहीं होता है। कोई भी बच्चा अगर पूरे मन से और पूरी ईमानदारी से ये काम करे तो वो निकाल सकते। तो
1: जी
0: मेरा मतलब ये है कि अगर आपके अंदर एक जुनून है कि आपको डॉक्टरी करनी है, आपको जिस भी क्षेत्र में जाना है, और आपको अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि आप कर सकते हैं, तो कोई भी पढ़ाई या कंपटीशन टफ नहीं है।
1: अच्छा डॉक्टर मोनी जी, जैसा आपने बताया कि जो भी बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो उनको पहले नीट का एग्जाम देना पड़ता।
0: देखिए, अगर हम नीट, पहले हमें नीट का एग्जाम देना होता है। अगर
1: जी
0: हम नीट में हमारा मेरिट लिस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट हमें कॉलेजेस सेलेक्ट होते हैं। जैसे अगर आपकी हायर मेरिट है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे।
1: जी
0: अगर आप थोड़ा सा मिडिल में हैं तो आपको जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप उनमें भी जा सकते हैं जिनकी फीस कम है। जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, अगर उनको
1: जी
0: लगता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, हमारा बच्चे का हम साल नहीं बर्बाद करना चाहते हैं दोबारा, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भी रुख ले सकते हैं जिनकी फीस कम है। इस पहले हमें एमबीबीएस जो करनी होती है, जैसे हमें मान लीजिए नीट हमने क्वालिफाई किया और हमें एक कॉलेज मिल गया, या तो गवर्नमेंट मिल जाता है या फिर प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो अगर
1: जी
0: हमें गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी कॉलेज मिलता है तो हमारा 5.5 साल का ये कोर्स होता है। उसके बाद जब हमारा 5.5 साल का ये एमबीबीएस की डिग्री खत्म हो जाती है, फिर
1: जी
0: हमको एक नीट पीजी का एग्जाम देना पड़ता है। नीट पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो
1: जी
0: जैसे हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में करते हैं, जैसे किसी को जनरल मेडिसिन में करना होता है, किसी को जनरल सर्जरी में करना होता है, किसी को स्किन में करना होता है। जैसे कि मैं एक त्वचा रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैंने अपना जो फील्ड चुना वो मैंने त्वचा रोग विशेषज्ञ चुना। तो इस वजह से हमको एक नीट क्वालिफाई करना होता है, नीट पीजी का। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आपको पीजी की डिग्री करनी होती है, जो कि 3 साल की होती है। तो टोटल आप 8 to 9 years देने होते हैं इन मेडिकल।
1: यही बहुत सारा यूथ है जो घबरा जाता है जब ये सुनता है कि 8-9 साल अपने इसमें लगाने हैं।
0: हाँ, उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, लोग आपको जानते भी हैं, और
1: जी
0: एक आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि आप जब किसी मरीज का दुख देखते हैं और जब आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो आपके अंदर एक खुशी भी होती है कि आपकी वजह से कोई सही होके जा रहा है, वो आपको दुआएं देते हैं। हम लोग क्या होते हैं, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन
1: जी
0: भगवान
1: बिल्कुल
0: होते नहीं है। लेकिन वही है ना कि आपको एक अगर एक सेटिस्फेक्शन, अगर एक एक जॉब है, ये सेटिस्फेक्टरी जॉब है, मतलब इसमें आपको एक इमोशनली भी आपको एक बहुत अच्छा फील होता है कि आपने किसी की हेल्प करी।
1: मतलब ऐसी जगह पर डॉक्टर्स को मतलब आके खड़े हो जाते हैं कि लाइफ का सवाल होता है, और पेशेंट मतलब उनका लाइफ लॉन्ग उनका धन्यवाद देता है, थैंक्स बोलता है कि उनकी मतलब एक उनकी वजह से ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाया है या उसकी लाइफ बच पाई है। तो डॉक्टर्स तो बहुत
0: अब
1: बड़ा
0: आप खुद ही देख लीजिए कोरोना के टाइम पे
1: जी
0: कितना, मतलब
1: जी
0: कितना डॉक्टरों ने सब किया है लोगों के लिए।
1: जी
0: कुछ डॉक्टरों ने तो अपनी जान तक गंवाई है। मतलब हम आप टीवी पे देख सकते हैं कि दूर से वो अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, वो घर तक नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनके 18 18 20 24 आवर्स वो पीपी जो किट पहनते हैं, जिसमें पसीना,
1: जी
0: जिसमें हवा तक नहीं जाती थी अंदर, वो पहन के उन्होंने 24 24 घंटे काम किया है लोगों के लिए, लोगों की जाने बचाई हैं, अपनी खुद की जाने गंवाई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो फील्ड है ये कितना इसका योगदान रहा है मानव सेवा में। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इस फील्ड में हूँ

0: अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, बस आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन या कोई भी लक्ष्य अगर आपने तय किया है वो टफ नहीं है, अगर आपके अंदर जज्बा या जुनून है उस बात को। तो मैं यही कहूंगी, कहना चाहूंगी आज के युवाओं से कि अगर आपके अंदर लक्ष्य, एक आप अपना लक्ष्य ठान लीजिए, अगर आप उस लक्ष्य के प्रति अपना काम करते रहेंगे तो आपको जरूर सफलता हासिल होगी। कोई भी कंपटीशन या कोई भी एग्जाम टफ नहीं है अगर आपने उसको ठान लिया कि हाँ हमें ये करना है।
1: तो मोनी जी, आपने हमें इतनी सारी बातें बताई और हमारा जितना भी यूथ है आपको सुनकर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, उसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर यूथ ने ठान लिया है अगर कुछ करना है तो देखिए मुश्किलें तो आती ही है रास्ते में, अगर मुश्किलों से हम
0: जी
1: डर के भागेंगे तो किसी भी तरीके से हम कुछ नहीं बन पाएंगे।
0: वही
1: हमेशा अपने प्रोफेशन को, अपने काम को हमेशा अपने दिल से लगाकर रखिए, अगर आपका मन करेगा, आपका दिल लगेगा तो जरूर वो काम अच्छा ही होगा। और मोनी जी, आज आपसे बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने कार्यक्रम में आई, आपने हमें बताया, और जिस जिस तरीके से आपने हमें बताया, और आप खुद एक MBBS करे हुए हैं और इस वक्त आप MD कर रही हैं, आज आपने
0: जी
1: हमें कार्यक्रम में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। आपका कार्यक्रम में आने के लिए मोनिका कश्यप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए, और लोगों को मेरी, अगर मेरी तरफ से लोगों को प्रेरणा मिलेगी तो उसके लिए
1: जी
0: मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।

स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों। आज चलते हैं सबसे अहम सवाल पर जो हर एक युवा के सामने खड़ा हो गया है उसके जीवन में आकर, कि युवा जीवन में सुकून कहाँ। हम दिन रात रील स्क्रॉल कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज देख रहे हैं, दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, पर रात को जब सोने जाते हैं तो दिल में एक बेचैनी होती है, एक अजीब सा खालीपन, क्योंकि हम सुकून स्क्रीन में ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर नहीं। सुकून किसी एक्सपेंसिव कैफे में बैठना या फ़ोन में नोटिफिकेशन चेक करने से नहीं मिलता दोस्तों, सुकून मिलता है खुद को थोड़ा वक्त देने से। जैसे क्या कर सकते हैं आप अपने लिए? आप अपना डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, रोज़ आधा एक घंटा अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप थोड़ा साइड करके, बंद करके खुद से खुद को जानना, खुद से बातें करना। और अब आप माइंड जंपिंग करें, कैसे? जैसे कई बार क्या होता है कि इतनी सारी मन में चिंताएं चल रही हैं, आजकल ओवरथिंकिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, ज़रा ज़रा सी चीज़ों को लेकर, ज़रा ज़रा सी बातों को लेकर ओवर थॉट्स हो जाते हैं, ओवरथिंकिंग हो जाती है और इतने सारे ख्याल मन में एक साथ चलते हैं, उस वक्त इतना स्ट्रेस फील होता है। तो उस वक्त आप क्या करें, एक डायरी लें और उसमें अपने जो ख्याल हैं वो उसमें उतारें, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसको लिखें। इससे क्या होता है, आपका दिल हल्का होगा और नेचर के साथ ज़रूर कनेक्ट करिए। दोस्तों, हम नेचर के साथ जैसे ही जुड़ते हैं हमारा स्ट्रेस अपने आप गायब हो जाता है। जैसे प्यारा प्यारा म्यूज़िक सुनने से ही मन में सुकून भर आता है, तो आपके सुकून के लिए लेकर आए हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

चलते हैं दोस्तों आज के सवाल पर, जहां हमने आपसे पूछा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसका सही उत्तर है 14 अगस्त 1862 में हुई थी। हमें सही उत्तर मिला है आर्यनगर कोइका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल का, राजस्थान से धर्मेंद्र झिम्पा का, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो का, दतरंगी बाटापर से हीरामणि वर्मा का, हल्द्वानी उत्तराखंड से गंगा सिंह रावत जी का, राजवीर सिंह यादव बाटापरा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू जी, रंगीनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु रेलर, अनवर अंसारी छत्तीसगढ़ से गुलाब दास, मानिकपुरी से मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, पाड़िम्बे राज से बमलेश पंवार, राजेश वर्मा, प्रवीण चौहान कीर्तनपुरी और गोस्वामी बरेली से अनोखेलाल मौर्य। आइए चलते हैं एक और प्यारे से सॉन्ग की तरफ।

hors shoot en haut. और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसानवाणी। स्टूडियो में दाखिल हो गए हैं रघु भैया और क्षमा बहन। सुनते हैं कार्यक्रम किसानवाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे हैं?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: कार्यक्रम किसानवाणी सुनवारे सब भैया बहनन को आपके भैया रघु
5: और आपके बहन क्षमा की
4: राम राम।
5: और बताओ रघु भैया, क्या हालचाल है, खेतीबाड़ी सब कैसी चल रही है?
4: क्षमा बहन देखो, हालचाल की बात करो तो हालचाल भी ठीक है, और अब हमने स्वतंत्रता दिवस मनाओ, और खेती की बात करें तो धान की देखभाल चल रही है, धान में जो खरपतवार वगैरह है उनको हमने नराई करके दूर करा दो खेतन से।
5: हाँ।
4: और हल्की हल्की बारिश भी हुई जाती है एक दो दिन छोड़ के, तो बासे जाएगी, फसल अच्छी चल रही है। आप सुनाओ।
5: बस रघु भैया, हमारे भी जाई काम चल रहा है, और धान की देखभाल कर रहे हैं, और गन्ना लगा हुआ है, बाकी देखभाल करते रहते हैं।
4: हाँ देखो क्षमा बहन, अब तो यही काम है, धान और गन्ना। और जब बताओ कि आज सवाल का है अपनो।
5: रघु भैया, आज हम अपने साथियों के लेकर आए एक सवाल, सफेद चूड़ किस रोग के लक्षण है, और जा सवाल को जवाब हम कार्यक्रम के आखिर में बताएंगे। तब तक हमारे किसान साथी सुने हमारा कार्यक्रम
4: किसान वाणी। और देखो क्षमा बहन, अब बात करें कि हमारी जो सरकार है बहुत सी योजनाएं चलाती है किसान भैयन के लिए, इसी तरीका की एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
5: तो रघु भैया, आखिर जा योजना का है और इससे किसानों को क्या फायदा मिलता है, जा बता दो हमारे किसान साथियों को।
4: देखो क्षमा बहन, जा योजना को मुख्य उद्देश्य है हर खेत को पानी पहुंचानो और पानी की एक एक बूंद को अच्छे से इस्तेमाल करनो।
5: बिल्कुल रघु भैया, लेकिन किसान भाइयों, केवल पानी उपलब्ध होना ही काफी ना है, पानी का सही और किफायती इस्तेमाल भी जरूरी है, जाय वजह से ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी

0: सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दियो जा रहा।
1: बिल्कुल, और जैसे कहा है कि जैसे जब प्रणाली में क्षमा बहन ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई है ना, तो ड्रिप सिंचाई में पानी बूंद बूंद करके पौधा की जड़ तक पहुंचते हैं और स्प्रिंकलर में फुहार के रूप में खेत में पहुंचाओ जाते हैं। तो जैसे कहा है जितनी आवश्यकता है हमारी फसल को उतनो ही पानी हम दे सकते हैं, और जो खेत में फालतू पानी इंजन के माध्यम से ट्यूबवेल के माध्यम से लग जाता है तो बाकी हम बचत कर सकते हैं।
0: बिल्कुल भैया। और देखो रघु भैया, आज दिन है मंगलवार और मंगलवार के दिन हम अपने साथियों के लिए सुनवाते हैं उनको पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। तो भैया आज हेलो किसान को विषय है कुक्कुट पालन हेतु सरकारी सुविधाएं, और जाय विषय पर हमारे किसान साथियों की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शार्दुल विक्रम लाल, और आपसे बातचीत कर रहे हैं भैया मिथिलेश श्रीवास्तव। तो आओ रघु भैया, देख लेते हैं हमारे डॉक्टर साहब का बातचीत कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, श्रोताओं नमस्कार, किसान बहनों भाइयों बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और मैं हूँ मिथिलेश योगेंद्र। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है कुक्कुट पालन। जी हाँ, कुछ लोग मुर्गी पालन भी कहते हैं, और इसके लिए जो सरकार सुविधाएं दे रही है उसी पे आज हम बात करने वाले हैं, और इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो देने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर शार्दुल विक्रम लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत नमस्कार आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
2: जी, हम बता दें तमाम श्रोताओं को कि आप एनिमल साइंस के विषय विशेषज्ञ हैं और बहुत सिद्धहस्त हैं, खास तौर पे जो पशुओं से जुड़ी चीजें हैं, और आईवीआरआई में कार्यरत हैं। तो सर, सबसे पहले जो हम जानना चाहेंगे हमारे किसान बहनों भाइयों की तरफ से, कुक्कुट पालन इसके लिए सरकार क्या क्या सुविधाएं अभी तक तो जो देती आ रही है वो तमाम हमारे साथियों को पता होगा, इस समय इस साल क्या क्या सुविधाएं नई शुरू हुई हैं या फिर कुछ अपडेट किया गया हो?
3: देखिए, सरकार का बहुत ही ज्यादा जोर है कुक्कुट पालन को एक लघु उद्योग की तरह से बढ़ावा देने के लिए। और इसके लिए सरकार की काफी सारी स्कीम्स भी हैं, जैसा आपको पता होगा, हमारे किसान भाइयों को भी पता होगा कि कुक्कुट पालन के विकास योजना के अंतर्गत दो स्पेसिफिकली जो योजनाएं चल रही हैं, वो एक है बॉयलर पेरेंट फार्म की स्थापना के लिए,
2: अच्छा,
3: और दूसरा है लेयर फार्म की स्थापना के लिए।
2: अच्छा, अच्छा।
3: क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में खासकर प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ जो अंडे हैं उनका उपभोग होता है, मतलब उसका यूटिलिटी है,
2: यूटिलाइजेशन
3: यूज होते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में अभी केवल 1.6 करोड़ जो अंडे हैं उनका ही उत्पादन हो पाता है प्रतिदिन।
2: अच्छा।
3: तो मतलब लगभग आप देखें तो 0.9 करोड़ का जो है डिफिशिएंसी हमारे प्रदेश में वो है, और ये सब जो आता है वो बाहर के दूसरे प्रदेशों से फिर हमारे यहाँ आता है और फिर वो यूज होता है। तो इसके लिए हमारे जो प्रदेश की सरकार है उसने ये 5 साल का जो रखा है अपना टारगेट, इसमें जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है हमारे प्रदेश का वो फुल करने के अलावा हम इतना उत्पादन करें कि हम उसे थोड़ा निर्यात भी कर सकें। तो इसको देखते हुए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें 10,000 पक्षियों का यदि लेयर फार्म यदि हमारे फार्मर बनाना चाहते हैं, 30,000 का या 60,000 के पक्षियों का लेयर फार्म बनाना चाहते हैं, तो पशुपालन विभाग द्वारा उसमें कुछ सुविधाएं दी जाती है।
2: अच्छा, अच्छा।
3: उसमें सबसे पहला तो है कि यदि बैंक से उन्होंने ऋण लिया है, जैसे कोई भी ऋण लेते हैं उसका स्कीम के अंदर है, उसके हिसाब से लगभग जो भी ऋण का जैसे 30% है उसमें जो किसान को अपने आप से देना पड़ेगा,
2: अपने आप से देना पड़ेगा,
3: 70% का वो ऋण ले सकता है।
2: अच्छा, अच्छा।
3: तो उस 70% के ऋण में क्या है, 7% का जो उसका इंटरेस्ट होता है वो सरकार के द्वारा 5 साल तक दे होगा।
2: अच्छा,
3: उस स्कीम में इसके साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी इसमें मिलती हैं। एक तो पहला कि जिस भी जमीन का रजिस्ट्री करवाया जा रहा है उस कार्य के लिए उसका स्टैंप निःशुल्क दिया जाएगा सरकार की तरफ से। दूसरा है कि 10 साल तक बिजली का जो भी बिल होता है वो भी फ्री होगा। तो ये सारी जो सुविधाएं वो सरकार इसीलिए दे रही है किसान भाइयों को, ताकि मतलब वो इस व्यवसाय को एक बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर सके, में लाभ भी कमा सके। क्योंकि आप देखिए कि लागत यदि कम होगी तो नेचुरल है कि किसान का जो भी वो लगेगा वो फायदा ही होगा,
2: फायदा
3: कम होगा। इसमें सरकार के जैसे बहुत सारी चीजों में विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, तो सरकार द्वारा अच्छे संस्थान जैसे आईवीआरआई से जुड़कर इसमें पशुपालन विभाग द्वारा भी हमसे जुड़कर उनको जो भी मार्गदर्शन है वो भी दिया जाता है, साथ साथ कौन कौन से इक्विपमेंट्स जैसे उसमें, जैसे आप देखेंगे पोल्ट्री में ड्रिंकर की, फीडर की, आपका ब्रूडर की, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी हमारे जो किसान भाई हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो हमसे ले सकते हैं।
2: अब संपर्क करने की बात आई तो आप, मैं देख रहा हूँ कि आप एक पेपर भी लाए हैं, दस्तावेज है, उसमें लिखा है टोल फ्री नंबर, तो हमारे साथी

0: को एक बार बता दें और प्रोग्राम के आखिर में भी ये नंबर बताया जाएगा।
1: खासकर ये जो है ये पशुपालन विभाग की जो स्कीम चल रही है इसके बारे में, जो कुक्कुट पालन से संबंधित स्कीम है इसके
0: जी जी
1: बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो किसान भाई हैं इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं,
0: जी
1: 1800-1805141,
0: जी
1: या फिर एक वेबसाइट है poultrynivesh.in, तो उसके माध्यम से भी ऑनलाइन इस कार्यक्रम के बारे में और इस स्कीम के बारे में जान सकते हैं और इसमें जो भी आवेदन के लिए जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी, तो हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें, जो टोल फ्री नंबर है, आपको किसी भी तरह की इसमें हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए कुक्कुट पालन संबंधित, तो आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री मतलब फ्री है, आप कॉल करिए तो उसका पैसा भी नहीं लगेगा। तो 1800-1805141, यही है 1800-181-5141, यही नंबर है। और अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, poultrynivesh.in करके है, नोट कर सकते हैं आप, Poultrynivesh.in। तो ये वेबसाइट है। और एक जो ऑनलाइन अगर आपको अप्लाई करना हो, जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका फायदा उठाने के लिए कुक्कुट पालन से संबंधित, तो ये ऑनलाइन आवेदन करने की भी एक वेबसाइट है, निवेश मित्र.in करके है, NIVESHMITRA.IN। तो ये तो हुई कि कभी भी हम जो है संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये है कि क्या ख्याल रखा जाए। जी, तो इसमें हमने जो पोस्ट डाली थी उसमें भी एक श्रोता ने पूछा है, विनोद नारायण कुशवाहा है और ये लिख रहे हैं जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से। तो जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर से। तो ये लिख रहे हैं कि कुक्कुट पालन में हितग्राही को कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है। तो सर ने बताया ही, आप तो जो भी है सुविधाएं उसका फायदा उठा सकते हैं और हमने टोल फ्री नंबर भी बता दिया है। इसके अलावा सर, जैसे कुक्कुट पालन में सरकारी सुविधाएं तो मिलती हैं, सबसे बड़ी चीज आती है किसी को भी शुरुआत करने के लिए, जो एकदम कम पढ़े लिखे कोई किसान है और वो धान उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, चाहते हैं कि हम कुछ और भी काम कर लें जिससे थोड़ी सी और आय बढ़ जाए, और उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, ऐसे में शुरुआत कैसे करें, जमीन भी उतनी ज्यादा नहीं है।
1: तो ये देखिए कुक्कुट पालन एक ऐसा व्यवसाय है, कुक्कुट पालन है चाहे बकरी पालन आप ले लें,
0: जी
1: जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है वो इस तरह की व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। खासकर क्योंकि आप जानते हैं कि मुर्गियों का जो रेट है वो ज्यादा नहीं होता, आप देखेंगे तो गाय डेयरी के एनिमल हैं वो 1 लाख से कम में आजकल आ नहीं रहा छोटे मोटे एनिमल देखें तो। यही मुर्गियां हैं, आप 100 मुर्गियां यदि आप लाना चाहें तो मेरे को लगता है कि 2000-3000 रुपये में 100 मुर्गियों के बच्चे मिल जाएंगे, 40-50 रुपये के हिसाब से आते हैं आप देखें तो 4000 रुपये यदि वैसे भी करते तो 4000-5000 रुपये में आपको मुर्गी की जो इनपुट है वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ घर का खर्चा आप समझ लिए 10000 रुपये भी हिसाब से आप लगाते हैं यदि आपके पास 100 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया है या सॉरी, तो उसमें भी आप अच्छे से शुरू कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले तो किसी कुशल विशेषज्ञ के साथ, जैसे आप हमारे यहाँ केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी
0: जी
1: है
0: जी
1: ना, या IVRI में भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो यहाँ पे आके आप पहले विशेषज्ञ से उनसे अच्छे से संपर्क कीजिए, प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए यहाँ से, और उसके बाद ही कोई काम शुरू कीजिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि तभी आपको उसके बारे में नॉलेज रहेगा, आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे,
0: तैयार रहेंगे।
1: और कोई उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है तब आप विशेषज्ञ से भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में क्या है, आप जो भी चीज शुरू कर रहे हैं उसमें विफलता के जो संभावनाएं बहुत ही कम हो
0: कम
1: जाएंगी।
0: हो जाएंगी, सही बात है। और अब इसमें ये है कि कई सारे जो हमारे साथी हैं उनके दिमाग में आता है कि आपके यहाँ तो जाए, मान लीजिए दूर दराज के गांव में रह रहे हैं, IVRI नहीं जा पाते हैं, तो सोचते हैं आस पड़ोस में कोई दे दे तो अच्छा रहेगा, तो वो सोचते हैं कि कौन सी नस्ल अच्छी है।
1: देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा
0: जी
1: इस
0: जी
1: माध्यम से, क्योंकि देखिए एक तो पहला ये कुछ कुछ नस्लें देखिए आजकल गांव के परिवेश में देखें हम तो सबसे बेहतर यही रहता है कि हम लोग घर आंगन में जो मुर्गी पालन करते हैं उसको शुरू करें, और हमारा जो यहाँ हमारे यहाँ आप देखें हमारे डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है तो वो भी इसी चीज पे काम कर रहा है, उसके द्वारा भी काफी सारे संस्थान के द्वारा भी काफी अच्छी अच्छी नस्लें हैं जो लो इनपुट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मतलब आप वो जो भी यहाँ के रिसोर्सेज हैं उनको खा के भी वो अपना काम चला सकती हैं, अच्छे से उत्पादन भी कर सकती हैं। आप देखेंगे देसी मुर्गियां जहाँ पे 1 साल में लगभग 60 से 80 अंडे देती हैं, वही

0: आपकी ये जो इम्प्रूव्ड एलआईटी बर्ड्स है, जैसे कैरी देवेंद्रा की हम लोग बात कर लें, चाहे कैरी निर्भीक की बात कर लें या कैरी श्यामा की बात कर लें, तो ये जो है बहुत अच्छे नस्ल की है, इम्प्रूव की हुई नस्लें हैं। ये लगभग 140 से 160 अंडे जो है प्रतिवर्ष आपको देने की क्षमता रखती हैं। और जबकि इनको आप सेम बाहर की तरह का जो भी आपका रिसोर्स है वही खिला रहे हैं, उसके बावजूद मतलब डबल का है आपका,
1: डबल का
0: तो ये चीज। और आप जानते हैं कि जो देसी मुर्गी के अंडे होते हैं इनका कलर भी जो है, आप देखेंगे जो मुर्गियों के अंडे का जो कलर होता है वो भी ब्राउन कलर का होता है,
1: ब्राउन होता
0: जो
1: है।
0: कि देसी मुर्गियों के जैसा ही देखने में लगता है। तो उसका रेट भी आप देखेंगे तो जो लेयर मुर्गियां होती हैं उनसे ज्यादा अच्छा मिलता है। हम देखेंगे तो बरेली में 15 रुपए के हिसाब से, इवन आपको मैं बताऊं तो 20 रुपए के हिसाब से भी बरेली सिटी में जो देसी मुर्गी के अंडे ठंडी के टाइम में बिके हैं। तो ये यदि ये काम शुरू करें, प्लांट वे में तरीके से काम शुरू करें, जैसे कि आप देखें तो इस जून जुलाई में हमारे बहुत सारे किसानों ने जून जुलाई में मुर्गियां, एक दिन की मुर्गियां रख के उन्होंने काम शुरू किया है,
1: अच्छा।
0: ताकि आप देखें तो दिसंबर के टाइम पे उनके पास मुर्गियां अंडे देने वाली तैयार है, जिससे कि वो एकदम टाइम के हिसाब से प्रोडक्शन शुरू करें और अच्छे से मतलब फायदा उठा पाए
1: फायदा
0: उस।
1: उठा पाए।
0: तो हम लोग को जो भी काम करना है वो थोड़ा प्लानिंग के साथ करना है, देख के करना है कि किस वक्त उसका डिमांड अच्छा रहेगा, किस वक्त उसको ज्यादा हम लोग उसमें से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम कोई भी चीज एंटरप्राइज रख रहे हैं वो इसलिए रख रहे हैं ताकि हम उसमें से ज्यादा से ज्यादा
1: मुनाफा
0: मुनाफा
1: कमा
0: कमा
1: सके।
0: सकें
1: जी जी जी
0: और हमारा जो श्रम है वो भी कम हो,
1: कम लगे।
0: है ना। तो
1: हाँ
0: उसी को देखते हुए हमको अपना काम करना चाहिए। अब जो दूर दराज में इलाके लोग हमारे किसान रहते हैं तो उनके लिए खासकर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखें तो यदि 40 किलोमीटर दूर कोई हमारा किसान रह रहा है वो यहाँ से बरेली आ रहा है फिर सामान लेके जा रहा हो, कितने बार क्या होता है कि हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है तो हम लोग भी तुरंत से सप्लाई नहीं कर पाते, थोड़ा डिले भी हो जाता है कभी
1: जी
0: कभी।
1: जी जी
0: तो
1: एक कॉल आ रही है सर, हम देखते हैं। जी नमस्कार।
2: नमस्कार
1: हाँ, आपने किसानवाणी में कॉल किया है, आज कुक्कुट पालन पे चर्चा हो रही है।
2: जी, कुक्कुट पालन से संबंधित साफ प्रश्न है हमारा।
1: हाँ, अपना नाम तो बताइए, कौन से गांव से बोल
2: हमारा
1: रहे।
2: नाम है साहब, बरेली से ही बोल रहे हैं हम।
1: अच्छा। हाँ प्रमोद जी, पूछिए।
2: जी, ऐसा है कि हमने पहले कुछ समय पहले 2-3 साल पहले कुछ पाली थी मुर्गी है, तो
1: अच्छा
2: इसमें तो हमारा बहुत नुकसान हो गया था, काफी
1: अच्छा।
2: बच्चे रखे थे, कुछ मर गए थे, फिर कुछ फटाफट बेच दिए थे। अब हम लेकिन उसको बढ़िया तरीके से करना चाह रहे हैं काम,
1: अच्छा।
2: तो उसमें हमें क्या कोई सरकारी मदद कैसे मिल सकती है या कैसे उसको लाभ ले सकते हैं, इसमें इस संबंध में आपसे जानना चाहते।
0: अब देखिए तो हमारे पशुपालन विभाग के द्वारा कुछ योजनाएं चल रही हैं, खासकर पशुपालन विभाग के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि जो लेयर फार्म है उसके कमर्शियल लेयर फार्म के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और इसके साथ साथ आपका जो ब्रॉयलर के पेरेंट फार्म होते हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनको आप हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं कार्यरत हैं उनसे संपर्क करके इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करके आप उस स्कीम में जब भी ये शुरू होती है, विंडो इसका ओपन होता है, तब अप्लाई कर सकते हैं उनसे संपर्क
2: करके। क्या मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए?
1: डॉक्यूमेंट क्या चाहिए?
0: डॉक्यूमेंट इसमें देखिए आपका जमीन होना चाहिए, जैसे आप जैसे 10,000 का पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री ये लेयर फार्म एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी आप यदि सब्सिडी में आपको चाहिए तो फिर आपको उस स्कीम के अंदर जितना भी एरिया चाहिए होगा, है ना, उतना एरिया आपका या फिर अपना जमीन का हो या फिर लीज में लिया हुआ लैंड हो, ठीक है। दूसरा, जितने अमाउंट के लिए आप लोन ले रहे हैं, है ना, तो उस अमाउंट का अप्रूवल भी होना चाहिए बैंक के साथ, क्योंकि जब तक आपको बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं रहेगा तब तक उस फाइल को तो आप आगे नहीं बढ़ा सकते ना। तीसरा चीज है कि आपका प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक है, जैसे आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो मतलब आपके पास कुछ नॉलेज तो होना चाहिए, तभी तो आप शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो भी आपके नजदीक में, जैसे हमारे यहाँ IVRA है, आपका CERA है ना, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, कृषि विज्ञान केंद्र के भी उसी के अंदर आता है, तो आप वहाँ पे भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद कार्य शुरू कर सकते हैं। ऐसे क्या है, आपको टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता रहेगा वहाँ से, और इसके साथ साथ आपको पशुपालन विभाग के साथ भी संपर्क में रहना है ताकि स्कीम्स। हाँ बात कीजिए, नहीं तो फिर आप यहाँ से ट्रेनिंग करवाते हैं हम लोग जब कृषि विज्ञान केंद्र में, तभी भी हम लोग पशुपालन विभाग के साथ ही मिलके ही सारे काम करते हैं, तो आप लोग का वहाँ पे भी संपर्क हो जाएगा, हमारे यहाँ ट्रेनिंग करवाएंगे तभी भी आपका संपर्क हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पशु चिकित्सा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से समन्वय बना के ही हम लोग सभी सारे डिवीजन के साथ समन्वय बना के ही काम चलता है, तो इवन पशुपालन विभाग भी हमारे साथ बहुत सहयोग करते हैं, हम लोग भी उनके कामों में सहयोग करते हैं और सभी मिलके ही किसान के हित में काम कर पाते हैं
1: जी।
2: और अच्छा, इसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह का भी कोई व्यवस्था है? क्या सर?
0: हाँ हाँ ट्रेनिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में भी ट्रेनिंग होती है समय समय पे, और आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है IVRA के कैंपस में भी।

0: वहां पे भी हर एक दो महीने में ट्रेनिंग होती रहती है। मैं आपको थोड़ा सा और एक और चीज थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगा, खासकर क्योंकि आपने कहा कि आपने पहले भी शुरू किया था और नुकसान हो रहा है, क्योंकि फीडिंग भी बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित आहार उनको देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, खासकर स्टेज के हिसाब से। जैसे बच्चे हैं तब उनका आहार अलग होता है, जब अंडे दे रहे होते तब आहार अलग होता है, जब आप मीट के लिए करें तब आहार अलग होता है ना। इसके साथ साथ क्या है, टीका
1: हम चाहते कि आप ट्रेनिंग करके प्रॉपर तरीके से ही उसको किया जाए।
0: हाँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर पोल्ट्री के केस में। आप देखें मुर्गी पालन के क्षेत्र में, यदि आप ब्रॉयलर मुर्गी पालन या लेयर का फार्म खोलना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बिना ट्रेनिंग के ये काम शुरू ही ना करें, ठीक है। दूसरा, टीकाकरण भी बहुत ज्यादा जरूरी है, टीकाकरण भी समय समय पे देना पड़ेगा। तीसरा चीज है उसका जो घर के आवास की व्यवस्था है वो भी इस तरीके से बनानी है कि वो उसमें अच्छे से उत्पादन कर सके, उसको किसी भी तरह की बीमारी ना आए, है ना। और समय मतलब आपका जैसे जैसे, क्योंकि देखिए हर मौसम में तापमान बदलता रहता है, सूर्य की रोशनी भी बदलती रहती है, और आप आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे हर एक चीज तो इस छोटे से कार्यक्रम में बताना वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे देखिए कि अंडे का अधिकतम उत्पादन के लिए कम से कम मुर्गी को 15 से 16 घंटे का आपको रोशनी चाहिए होता है, ठीक है। अब 15 से 16 घंटे का रोशनी चाहिए होता है, और आप देखें तो मुर्गी के अंडे का जो रेट है वो सबसे ज्यादा ठंडियों में होता है, है ना, होता है कि नहीं। और ठंडियों में आप देखें तो कितना रोशनी होता है, 5 से 6 घंटे मुश्किल से आपको रोशनी मिलती है, उसके बाद तो अंधेरा ही हो जाता है, ठीक है। तो यदि आपको ये चीज का ज्ञान नहीं होगा तो आप मुर्गियों को 15 से 16 घंटे की रोशनी देंगे ही नहीं, और क्या है, आपकी मुर्गियां ठंडे में भी ठीक से उत्पादन करेगी नहीं, है ना।
2: सही बात है।
0: तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ज्ञान होना, ज्ञान होगा तब आप उसके हिसाब से जैसे जैसे मौसम में बदलाव आते हैं आप उसके हिसाब से जो भी जैसे चेंजेस आते हैं आप अपने जो पद्धति है उसमें बदलाव कर सकते हैं, ताकि जो आपकी मुर्गियां है वो अच्छे से उत्पादन भी कर सके, आपको फायदा भी मिल सके, और जो हमारे मेन कंज्यूमर हैं उनको भी डिमांड के हिसाब से आप सप्लाई कर सके, ठीक है
2: जी। और कुछ और जानकारी चाहिए आपको विस्तार में तो poultrynivesh.in करके वेबसाइट है, वहां जाके आप देख भी सकते हैं। और कभी भी कॉल करने के लिए आप, हमने नंबर भी बताया है, टोल फ्री नंबर है 1800-180-5141, ये टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।
0: एक और चीज मैं थोड़ा इसमें से ऐड करना चाहूंगा।
2: जी जी, आपका जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसमें खासकर जैसे देखिए आपको जो भी हमारे किसान, खासकर सर बता रहे थे हमें कि ग्रामीण इलाकों में जो हमारे किसान रहते हैं उनके लिए क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बहुत बार क्या होता है यहाँ पे आते हैं फिर उनका क्या है, समय भी चला जाता है, पैसे भी लगते हैं, और फिर बाद में वापस बिना कभी कभी खाली हाथ भी जाना पड़ जाता है क्योंकि डिमांड सप्लाई नहीं कभी कभी हो पाती है उनको। तो वैसे में क्या कर सकते हैं, कुछ हमारे किसान क्या कर सकते हैं, आजकल देसी जो मुर्गियां हैं है ना, उसका मीट और उसका एग का भी बहुत अच्छा वैल्यू है ना। तो वो कंट्री चिकन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उनको इनपुट के लिए भी संस्थान पे नहीं डिपेंडेंट रहना है, वो एक छोटा सा एग इनक्यूबेटर है, मशीन जो है वो परचेज कर सकते हैं, जिसका मुश्किल से 10 से 15 हजार रुपए के करीब वो आता है। तो एक बार वो परचेज कर लें, और वो 100-200 की कैपेसिटी का होता है। तो यदि आपकी देसी मुर्गियां ही अंडे दे रही हैं, ठीक है, तो उनको ही खुद से हैच करवा के उसकी ट्रेनिंग आप लोग हमसे ले लीजिए, है ना, हम लोग प्रोवाइड करने के लिए तैयार है एकदम, हर वक्त 24/7 आवर्स तैयार है, आप हमसे ट्रेनिंग ले लीजिए, और उसके बाद वो घर पे ही, आप यदि दूर दराज के इलाके हैं तो आप घर पे ही उन्हीं मशीन में से अंडोस में से आप चूजे अपने आप से उत्पादन कर लीजिए और उन्हीं को फिर बढ़ा के अपना जो भी आपके लोकल रिसोर्स है, क्योंकि देसी मुर्गियां तो सब चीज खा के वो अपना काम कर
2: ग्रो कर लेती हैं।
0: इसके साथ साथ दूसरा है कि उसमें बीमारियां भी कम आती हैं, है ना, तो आपको टीकाकरण के लिए भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ऐसे क्या है कि आप अच्छे से मुर्गी का उत्पादन भी कर पाएंगे, आपको
2: और लागत भी कम होगी
0: क्योंकि हर एक देखिए चिक हम आप यहाँ पे खरीदने के लिए आएंगे तो कम से कम 50 रुपए हर एक चिक का लगेगा, आपका आने जाने का पूरा दिन का गया, इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट हुआ वो भी गया, है ना। तो ऐसे आपका इनपुट कॉस्ट कम से कम 20-25% रिड्यूस हो रहा है ना। और दूसरा चीज है कि वैल्यू आपका जो भी प्रोड्यूस आप तैयार करें देसी मुर्गियों का, उसमें प्रीमियम मिलेगा कॉस्ट में, क्योंकि देसी मुर्गियों आजकल मार्केट में आप देखें बरेली के मार्केट में तो ब्रॉयलर मुर्गियां ही आती हैं, देसी मुर्गियों को कहां मीट मिल पाता है लोगों को, तो वो और उसका टेस्ट भी अलग होता है। तो आप उसको जहां, मेरे को लगता है कि यदि आप एकदम प्योर है, आप अपनी जो भी पद्धति है उसको प्रूफ कर पा रहे हैं, आपको सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, तो आप अपनी देसी मुर्गी का जो मीट है वो 500 से 600 रुपए केजी, यदि आपका BIS या FSSAI या फिर आपका एगमार्क से सर्टिफाइड है, तो आप उसको 500 से 600 रुपए केजी तक बेचने के लिए सक्षम है, और आजकल के टाइम में सरकार इन सब जो भी ऑर्गेनिक यदि पोल्ट्री प्रोडक्शन का भी काम कर रहे हैं, तो सरकार इन सब चीजों के लिए इसमें सर्टिफिकेशन देने के लिए बहुत अच्छे

0: काम कर रही है, और ताकि हमारे किसान भाइयों को कम से कम पैसे में, क्योंकि सर्टिफिकेशन के भी चार्जेस लगते हैं, तो आप लोग यदि समूह में आए और अपने प्रोडक्ट का, जैसे पोल्ट्री, ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्म्स का जो अपना सर्टिफिकेशन करवा लें, तो आपको ग्रुप में एक, आपको अच्छा पूरे ग्रुप का यदि मार्केटिंग एक साथ हो पाएगा एक उसके चैनल के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छे से फायदा मिलेगा, और आप ही नहीं, आपके साथ जो भी समूह में जुड़े हैं सभी लोगों को फायदा मिलेगा इसका।
1: जी, हम उम्मीद करते